0: बेबी को बेस पसंद है।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: सुप्रभात श्रोताओं, सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

नमस्कार। 6 बजे के समाचार रूम में स्वागत है आप सभी का। आज मंगलवार को राज्यसभा की बैठक लगेगी। प्रधानमंत्री से कुल 22 सवाल पूछे जाएंगे। सार्वजनिक कर्ज, स्वास्थ्य सेक्टर, कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और सिल्वर बैंक जैसे अहम मुद्दे आज की कार्यवाही के केंद्र में रहेंगे। वहीं देश की 5 नगर पालिकाओं में नए मेयर और डिप्टी मेयर ने जिम्मेदारी संभाल ली है। पोटली में पहली बार राजधानी की कमान 2 महिलाओं के हाथों में सौंपी गई है। क्रिस्टल पोंटो नई मेयर चुनी गई है, जबकि महजबीन करमताली उनकी डिप्टी होंगी। वाकवा फिनिक्स में अली हुसैन अब्दुल कादिर नए मेयर बने हैं, जबकि क्यूपिप में तशयाना लक्ष्माना पीले को मेयर चुना गया है। काठरबोन में सुबिराज गंगा पिसुन नए मेयर होंगे और इंदिरा देवी कायाला डिप्टी मेयर का पद संभालेंगी। उधर बजट पेश किए जाने से पहले कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस ने बढ़ती महंगाई, सार्वजनिक

0: लेकर चिंता जताई है। यूनियन ने ज्यादा सामाजिक और न्याय संगत बजट की मांग की है। और हज से जुड़ी बड़ी खबर, आज योम अराफात मनाया जा रहा है। हज से सबसे अहम दिनों में से एक माने जाने वाले इस दिन लाखों हाजी अराफात के मैदान में इबादत और दुआ में मशगूल रहेंगे। माना जाता है कि इसी मुकाम पर हजरत मोहम्मद ने अपनी उम्मत को आखिरी पैगाम दिया था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमरीकी सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी ईरान में नए हमले किए हैं। और अब बढ़ते हैं मौसम के समाचारों की ओर। मस्कारीन्स के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटी साइक्लोन पाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर तेज हवाओं का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान केवल ऊंचाइयों पर रह कर बरसात हो सकती है, अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। रात को मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा, ऊंचाइयों पर बरसात हो सकती है। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके से ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समुद्र में नहीं निकली। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम साहली इलाकों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:36 पर, सूर्यास्त 5:38 पर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
3: इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:03:30, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नजर डालते चले। ये विज्ञप्ति है सेबास्तोपोल गांव के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, जिनमें है पेलघाई रोड, पेचिपा के ब्रांच रोड, कॉ बम्बाई रोड, रिवर साइड रोड और सेंट गुलेट रोड। इन इलाकों में रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 27 मई को यानी कल सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
4: L'habitude, ils avaient tout changé. Mouti time avec Formland.
5: Madame Sheila, mais petit déjeuner.
4: Asté, et nous céréales à boire Formland Family Céréales. Tac, tac, tac, le petit déjeuner ne paraît.
5: Ah, ben oui, Madame Sheila, ou toujours bien smot.
4: Mais normal. Et comme au son du travail, ben un pli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Formland.
5: Ou fais-moi faire.
4: Asté avec Formland Hot Chocolate, la vie en complice, ta mam.
5: Si à tout qui s'agose pour les goût, pas assez.
4: Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
5: Restez avec Formlen, nous gagnons encore beaucoup plus.
4: Formlen, ça même nous, Smart Choice.
6: Radio Mauritius.
7: 810 kHz, par ye hai Radio Mauritius.
6: Radio Mauritius.
7: Radio Mauritius.
3: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस AM2 प्रसारण है। मीडियम वेव 810 किलोहर्ट्ज़ पर हम आ पहुंचे हैं आपका साथ देने के लिए। माइक पर आपका साथ दे रही हैं रत्ना, हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। मंगलवार का दिन है, 26 तारीख है और इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:06 होने जा रहे हैं। आप सभी का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक हम रहेंगे आपका साथ देने के लिए, आपकी सेवा में उपस्थित। और आज का दिन बहुत ही स्फूर्ति से भरा रहे, ऊर्जाजनक रहे, यही शुभकामनाओं के साथ आपको बताते चले कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे पाक्षिक कार्यक्रम संतवाणी के साथ। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाएगा कबीर मंदिर द्वारा और आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं आचार्य श्यामदास जी। सदाबहार गीतों से सजाई हुई आज की सुबह को आगे बढ़ाएंगे। तुरंत उसके बाद 6:30 पुनः जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ और समाचारों की समाप्ति के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम जारी।

0: रखा जाएगा, जहां पुनः मैं आपका साथ दूंगी। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की एक बेहतरीन शुरुआत करते हैं आज के सकारात्मक विचार के साथ। काश को छोड़िए, प्रयास को अपनाइए। कई बार जिंदगी काश के शब्द में ही उलझ कर रह जाती कि काश मैंने ऐसा किया होता, काश ऐसा हो जाता। पर चलिए, आशावादी रहिए। और अंग्रेजी में एक कहावत है, where there is a will, there is a way। तो इसी को अपनाते हुए आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और आइए आचार्य श्यामदास जी का स्वागत करते हैं संत वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत।
1: आइए सुनिए आचार्य महंत डॉक्टर श्यामदास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संत वाणी।

परम श्रद्धालु श्रोतागण, यह कार्यक्रम कबीर मंदिर बोनतेर बाकवा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय है स्वरूप स्थिति एवं आत्म स्थिति की उच्चता, अर्थात हम पिछले वक्तव्य को ही आगे बढ़ा रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, गांव ऊंचे पहाड़ पर और मोटा की बाँह, कबीर अस ठाकुर से ये उबरिए जा की छाँह। अर्थात जीव की स्थिति उच्च चैतन्य शिखर पर है। हे मनुष्य, तुम उन श्रेष्ठ संत एवं सद्गुरु का सहारा लो और उनकी सेवा करो, जिनकी शरण से, जिनके सानिध्य से तुम्हारा संसार सागर से उद्धार हो सके, मुक्ति को प्राप्त हो सके। अपना गांव यदि ऊंचे पहाड़ पर हो तो कितना ही बाढ़ आवे कोई परवाह नहीं है। इसी प्रकार जीव का गांव, जीव की स्थिति दशा ऊंच चैतन्य शिखर पर है। जो अपने चैतन्य शिखर पर स्थित हो जाता है उसे संसारी चिंताएं छू नहीं सकती। जैसे ऊंच पर्वत पर चढ़ा हुआ आदमी जब वहां से ज़मीन की तरफ देखता है तब उसे गांव बच्चों के खिलौने जैसा तथा मनुष्य बहुत छोटे लगने लगते हैं। उसी प्रकार जो अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाता है उसे सारा संसार बौना लगता है। उसकी दृष्टि में धन, परिवार, समाज, मान बड़ाई, प्रभुता, ये सब तुच्छ लगने लगते हैं। स्वरूप स्थिति की गरिमा ऐसी होती है जिसको पा जाने के बाद सब कुछ फीका हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि यह स्थिति कैसे प्राप्त होगी। स्वयं परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, परंतु इसके लिए सच्चे सद्गुरु एवं संतों का आधार अति आवश्यक है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि मोटा की बाँह पकड़ो। मोटा गुजराती शब्द है, इसका अर्थ होता है बड़ा। यहाँ पर सद्गुरु कहना चाहते हैं कि जो उच्च स्थिति को प्राप्त है उसकी शरण लो, उसकी सेवा करो। ठाकुर बंगला भाषा में संत एवं सद्गुरु को कहते हैं। वे कहते हैं कि जो ज्ञान, आचरण तथा रहनी संपन्न संत सद्गुरु हैं उनकी शरण लेकर, उनकी सेवा कर और उनके आश्रय में रहकर तुम साधना करोगे तो विषयों के कीचड़ से उठकर स्वरूप स्थिति की उच्च चोटी पर पहुंच जाओगे। वकीलों की संगत से वकालत, डॉक्टरों की संगत से डॉक्टरी तथा विद्वानों की संगत से विद्वता आती है।

इसी प्रकार विवेक वैराग्य संपन्न संत एवं सद्गुरु की संगत से ही स्वरूप स्थिति के उच्च चोटी पर चढ़ा जा सकता है। ऊंचे काम के लिए सामने ऊंचे आदर्श बल होना चाहिए, क्योंकि आपका मार्ग अच्छा होना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जेहि मार्ग गए पंडिता तेई गई बहिर, ऊंची घाटी राम की तेई चढ़े रहे कबीर। ये कबीर तय उतरी रहो तेरो संभल परो न साथ, संभल घटे न पगु थके जीव बिराने हाथ। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिस रास्ते पर दुनिया चलती है उसी रास्ते पे भीड़ भी जाती है, किंतु कबीर साहब तो सबसे अलग एवं स्वतंत्र होकर स्वरूप स्थिति रूपी राम की ऊंची घाटी पर चढ़ जाता है, परंतु संसार के जीव अविवेकवश दूसरों के हाथों में पड़े हुए भटक रहे हैं। इसीलिए तुम उनके उद्धार के लिए राम की ऊंची घाटी एवं समाधि सुख छोड़कर लोगों के बीच में उतर जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास विवेक ज्ञान का संबल है, पाथे है और स्वालंबन भी है, तथा स्वश्रम का परोह है। वे तुम्हारे पास से घटने वाले नहीं हैं, इसीलिए ऐसा करने से तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, किंतु भूले हुए जीवों का उद्धार होगा। इस संसार में तथाकथित अपने आप को ज्ञानी कहने वालों ने रोचक भयानक शब्दों के ऐसे जाल बिछा रखे हैं कि आप जनता उनमें फंस सी गई है। इसीलिए जिधर ये लोग चलते हैं उधर ही सब चलते हैं, जैसे कहते हैं वैसे ही करते हैं, और उधर ही भीड़ चलती है। पंडित और भीड़, ये दोनों शब्दों का चयन बड़ा अद्भुत है। पंडित का अर्थ है केवल ब्राह्मण नामधारी पुरोहित से नहीं होता, किंतु संसार के नाना मतों में जो भी पुरोहित हैं, जो इसके जाल में अपने आसपास के समाज को गलत तरीके से फंसाते हैं, उन सब से इन भोले भाले मनुष्यों को पार पाना कठिन है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इनकी आवश्यकता नहीं है। समाज को बढ़ाने के लिए हमें पंडित पुरोहित पादरी सभी की आवश्यकता है, क्योंकि ये समाज के पथ प्रदर्शक हैं। जन्म विवाह मृत्यु संस्कार कराने के लिए इन सब की आवश्यकता पड़ती है। इन तीनों में विवाह संस्कार मुख्य है, क्योंकि इसमें वर कन्या के मन को दूसरे से बांधने के लिए कुछ संस्कार डालने की आवश्यकता पड़ती है। शेष जन्म संस्कार तथा मृत्यु संस्कार तो केवल औपचारिक, पैदा हुआ बालक शिशु कुछ नहीं जानता कि तुम उसके लिए कौन से मंत्र पढ़ रहे हो और क्या कर रहे हो। मर चुके मनुष्य के लिए भी कुछ करना व्यर्थ है, क्योंकि वे इस दुनिया में अब नहीं हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि शोषित परिवार है उसके लिए ज्ञान के ग्रंथों का पाठ सत्संग भजन तथा ज्ञान चर्चा ज़्यादा कल्याणकारी है, इससे उसके मन को शांति मिल जाती है। परंतु संस्कारों में अलग अलग भेद है, और इससे हटकर अन्य क्रियाओं में भी समाज उलझा रहता है। भूत प्रेत सगुन अपशगुन ग्रह लगन मुहूर्त आदि के नाना भय देकर सबको अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है। ईश्वर और मोक्ष भी अपनी आत्मा से अलग होकर इन सब में फंसा हुआ है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहुत गुरु है अस जग माही, हरे द्रव्य भव दुख को नाही। ऐसे लोगों के पीछे ही दुनिया चलती है। भीड़ का अर्थ ही है भोले भाले लोगों का समूह। सद्गुरु कबीर साहब ने जानबूझकर इस भीड़ के लिए बहिर शब्द का प्रयोग किया है। कबीर साहब कहते हैं कि मैं उन पुरोहितों के पीछे चल सकता हूँ और ना भीड़ के के साथ चल सकता हूँ। मेरा रास्ता इन सब से अलग है। यह तो राम की ऊंची घाटी है

0: यही मेरा रास्ता है। घाटी दो पर्वतों के बीच दर्रे को कहते हैं, जहाँ पहाड़ों की ढाल हो। दो पहाड़ों के बीच की नीची एवं समतल जमीन घाटी कहलाती है। परंतु इस घाटी के साथ ऊंची विशेषण लगाकर सद्गुरु ने इसे सामान्य रास्ते से श्रेष्ठ होने की व्यंजना की है। जहाँ घाटी का अर्थ पर्वत के पास, नीची जमीन का शाब्दिक अर्थ न लेकर व्यंजना अर्थ लेना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऊंची घाटी राम की, घाटी के साथ ऊंची विशेषण लगाकर राम के ऊंचे रास्ते की व्यंजना की है। राम का रास्ता ऊंचा है, उस रास्ते पर चलने वाले लोग से छुटकारा राम की ऊंची घाटी है। राम स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति है। यह जीव, यह आत्मा ही राम है और उसमें स्थित हो जाना ही राम की ऊंची घाटी में पहुंच जाना है। सहज समाधि ही ऊंची घाटी है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे कबीर, तुम देखो इस संसार को, संसार के लोग चाहे वो अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, भेड़ भीड़ की भीड़ बन गए हैं और उन्हें अंधविश्वासी लोग लुभावने कथन के डंडे से हाँक रहे हैं। संसार के लोग भीड़ बन गए हैं, अतएव तुम राम की घाटी से, समाधि के सुख से उतरकर संसार के बीच आ जाओ और इस भीड़ का उद्धार करो, क्योंकि तुम्हारे पास संबल और पुरोहन हैं। तुम विवेक बल तथा पुरुषार्थ परिश्रम से युक्त हो। जीवन भर तुम्हारा संबल घटने वाला नहीं है और न तुम्हारे श्रम के पैर थकने वाले हैं। तुम केवल समाधि लीन होकर न बैठो, किंतु जन कल्याण करते हुए सदैव सहज समाधि में रहने का विचार रखो। यहाँ समाधि में लीन होने का खंडन नहीं है, किंतु संसार पर अधिक करुणा का प्रकाश है। सद्गुरु कबीर साहब ने ध्यान, समाधि तथा स्वरूप स्थिति की लीनता पर अत्यंत प्रकाश डाला है। साधक को स्वरूप स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए साहेब कहते हैं, जहि मार्ग गए पंडिता, तेई गई बहिर, ऊंची घाटी राम की ते चढ़ रहे कबीर। आज के वक्तव्य इतना ही। बंदगी शाहे।
1: अभी आप सुन रहे थे आचार्य महंत डॉक्टर श्याम दास जी महाराज की प्रस्तुति में पाक्षिक कार्यक्रम संत वाणी।

6:25 भाई, जब अपनों का साथ छूटने लगे तो मन में बस एक विश्वास रखिएगा कि आपका हाथ ऊपर वाले ने पकड़ रखा है। फिल्म दर्पण का ये गीत लता जी की प्यारी सी आवाज में हमने अभी भी सुना। 1970s के दौर की ये फिल्म थी और बेशक हमारे असली जीवन में भी हमने भगवान के दर्शन जरूर किए हैं। ऊपर वाले को हमने अपनी आंखों से देखा है अपनी माँ के रूप में। मई का महीना माँ के नाम, पर हम तो कहेंगे ये जीवन माँ के नाम। माँ का कोई दिन नहीं होता भाई, माँ ना हो तो दिन ही नहीं होता।

भाई कहते हैं ना, घर में सभी लोग भले चले जाए, पर पहला सवाल जब बच्चे घर लौटते हैं तो यही पूछते हैं, माँ कहाँ है? है ना? चलिए इसी के साथ ही अगले गीत को हम डेडिकेट करेंगे सभी मम्मियों के नाम। माँ का आंचल फिल्म से लिया हुआ ये गीत मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, और यही गाना हमें जोड़ेगा सुबह के 6:30 बजे के समाचारों के साथ। अब हमारी और आपकी भेंट होगी समाचारों के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम में। तब तक के लिए

जो बच्चों के सुबह के ठीक 6:30 बज रही है। नमस्कार, 6:30 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज राष्ट्रसभा की बैठक लगेगी, प्रधानमंत्री से 22 सवाल पूछे जाएंगे। सार्वजनिक कर्ज, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा जैसे मुद्दे रहेंगे केंद्र में। देश की 5 नगर पालिकाओं में नए मेयर और डिप्टी मेयर ने संभाली जिम्मेदारी। पोटली में पहली बार 2 महिलाओं के हाथों में होगी राजधानी की कमान। बजट से पहले CITU ने बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य व्यवस्था और कृषि भूमि में कमी को लेकर चिंता जताई। ज्यादातर सामाजिक और न्याय संगत बजट की मांग की गई है। नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर ने आपदा राहत

0: उपकरणों का किया वितरण, उद्देश्य तूफान और बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने की तैयारी को मजबूत बनाना है। हज का सबसे अहम दिन आज मनाया जा रहा है यौमे अराफात। लाखों हाजी अराफात के मैदान में इबादत और दुआ में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमरीकी सेना का दावा है दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले, मिसाइल ठिकानों और नौकाओं को बनाया गया निशाना। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। आज मंगलवार को राष्ट्रीय सभा की बैठक फिर से लगेगी। प्रधानमंत्री से कुल 22 सवाल पूछे जाएंगे। सार्वजनिक कर्ज, स्वास्थ्य सेक्टर, सिल्वर बैंक, कानूनी व्यवस्था और सड़क सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे आज की बैठक के केंद्र में रहेंगे। करुणा लाली।
1: सांसद राम इटवारिया सत्र की शुरुआत सार्वजनिक कर्ज पर प्रधानमंत्री डॉक्टर बिनराम गुलाम को संबोधित एक सवाल के साथ करेंगे। वे जानना चाहते हैं कि क्या वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और महंगाई के बीच 2025-2026 वित्त वर्ष के लिए निर्धारित अनुमान से अधिक कर्ज हो चुका है। साथ ही वे ये भी पूछेंगे कि किन लेनदारों से उधार लिया गया और कितनी राशि उधार ली गई। इसके बाद सांसद ईसान जुमन मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी द्वारा जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 के बीच एकत्रित VAT की सटीक राशि के बारे में जानकारी मांगेंगे। सांसद आश्ले रामदास प्रधानमंत्री से बैंक ऑफ मॉरिशस की उस विज्ञप्ति पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें 83 बिलियन रुपए की कथित मुद्रा छपाई का उल्लेख किया गया था। सांसद रोशन झमन गंगा तालाब पर एक पर्यटक पर हुए हमले की जांच की प्रगति पर अपडेट चाहते हैं। वे ये भी जानना चाहते हैं कि क्या स्थल को स्पिरिचुअल सेंचुरी या फिर स्पिरिचुअल पार्क घोषित कर वहाँ की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रवेश सीमित करने संबंधी कोई अनुरोध किया गया है। इसके अलावा संसद के एजेंडे में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल भी शामिल है। इस विधेयक के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन गठित करने का प्रस्ताव है जिसका मकसद संविधान में व्यापक सुधारों की समीक्षा और सिफारिश करना होगा। इनमें मौलिक अधिकारों को मजबूत करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं का आधुनिकीकरण और सार्वजनिक प्रशासन में बेहतर सुशासन सुनिश्चित करना शामिल है।
0: हम आपको बता रहे थे बुलेटिन की शुरुआत में कि देश की पांचों नगर पालिकाओं में अब नए चेहरे और नई जिम्मेदारियां देखने को मिलेंगी। सोमवार 25 मई को यानी कल नगर पालिका चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई और इसके साथ ही नए मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल भी शुरू हो गया है। पोटली में इस बार एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। पहली बार राजधानी की कमान दो महिलाओं के हाथ में होंगी। लेबर पार्टी की क्रिस्टल पोंदो नई मेयर चुनी गई हैं जबकि MMM की महजबीन करामताली उनकी डिप्टी होंगी। नई लोड मेयर का कहना है कि वे नगर परिषद को लोगों के और करीब लाना चाहती हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे बुनियादी ढांचे, विरासत संरक्षण और पोटली के लोगों के कल्याण से जुड़ी कई परियोजनाओं पर ध्यान देंगी। उनको सुनते हैं।
2: Pour lui, c'est un ville culturel et économique. Et mon cousin Redonis Ovalère me connaît qui beaucoup de monde est là dans Pour lui. Par exemple, nous avons beaucoup de soucis par rapport avec bazar. Que nous avons infiltration de rats, de pigeons qui nous pouvons travailler ça même jour à venir. Nous pouvons assister travailler avec le ministre des Finances, le ministre de local government et trouver les moyens parce que il arrive 2 ans nous là nous pour besoin au moins faire quelque chose nous pas qu'à avoir dit nous peine alors on nous c'est zéro 2 ans.
0: वहीं डिप्टी लोड मेयर महजबीन करामताली ने निरंतरता, लोगों से जुड़ाव और प्रतिबद्धता को अपनी प्राथमिकता बताया। उनका कहना है कि वे ईमानदारी और सम्मान के साथ पोटली की सेवा करेंगी। उनको सुनते हैं।
3: C'est un suivi, c'est un travail continu qui nous peut faire. Le maire sortant, l'adjoint, nous commence le travail et nous sommes là pour nous continuer et qui nous faire les projets arriver. Moi avec la mairesse, nous finis, commence à établir mon plan de travail et nous pour là, nous pour l'écoute des citadins, pour là, pour les gens les plus vulnérables.
0: कल ही वाक्वा फिनिक्स नगर परिषद में भी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ। अली हुसैन अब्दुल कादिर वाक्वा फिनिक्स के नए मेयर चुने गए हैं। उन्होंने खेल सुविधाओं को बढ़ाने, सड़कों के निर्माण और सार्वजनिक लाइटिंग व्यवस्था में सुधार जैसे कई

0: योजनाओं को लागू करने की बात कही है, उनको सुनते हैं।
1: Nous voulons plutôt focus pour capable implément ça va un projet qui fait des ans mais des pipelines. Nous avons drain, du design une pipeline, nous avons une rénovation, nous avons une infrastructure sportif, nous avons mini soccer pitch, ban terrain, football, ban terrain football grand terrain qu'on disait aux 11. Puis nous avons aussi ban research aussi ban roads, ban construction de new roads aussi nous design, ban lighting système nous voulons améliorer. Tout ça, un projet fini, mettez la pipeline, mais faute de temps, pas venir réussir à implémenter. Mais nous pouvons mettre toute notre énergie, vous répétez ça, pour qu'ils soient capables, au moins, réaliser un projet.
0: वहीं मारी-कैथरीन क्रिस्टल लेग्रैंड नई डेप्यूटी मेयर बनी हैं वाक्वा फिनिक्स शहर की। उन्होंने अपने पूर्व नेता पॉल बेरोंशे के प्रति आभार प्रकट किया। उनका कहना है कि वे वाक्वा फिनिक्स शहर की पुरानी पहचान और गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करेंगी।
2: Moi, je tenais à remercier le Premier ministre. Je remercie aussi tous les dirigeants de l'Alliance du changement et dirigeants du MMM. Et aussi, j'ai une pensée spéciale pour mon ancien leader qui m'a appris beaucoup avec lui et qui m'a pas continué ce travail. Et comme mon camarade Aline dit, nous pouvons continuer le travail que nos camarades Saint-Gilles, Saint et tous les conseillers vont faire pendant l'année venue. Et parce qu'ils nous viendront à avoir quoi sur l'aide de noblesse.
0: क्यूपिम में भी कल सोमवार को आयोजित नगर परिषद बैठक के दौरान नई मेयर का चुनाव किया गया। तश्याना लक्ष्माना पीले शहर की नई मेयर चुनी गई हैं, जबकि डयाना आमी को डिप्टी मेयर नियुक्त किया गया है। इन नगर पालिका चुनाव के बाद ये दूसरा अवसर है जब किसी शहर की कमान पूरी तरह महिलाओं की टीम के हाथों सौंपी गई है। नई मेयर टीम अब क्यूपिप के विकास और शहर से जुड़े अहम मुद्दों पर काम करेगी। मेयर और डिप्टी मेयर को सुनते हैं।
3: Premièrement, un sentiment de fierté hein. En tant que femme, connaître une vie, le DPM, être DPM à l'île Maurice, c'était premièrement quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, nous trouvons cette madame, le 10, qui prend plus comme meilleure, députée meilleure, dans les 5 différentes villes. Donc, c'est un premier, parce qu'après, nous avons réalisé qu'après l'indépendance, les armées, ça finit arriver. Donc, ça montrait comment le PM, ensemble avec l'Alliance du changement, toi, le ministre, le fait, moi, j'ai franchement envie que même madame émancipée dans la politique.
0: सुबिराज गंगा बिसुन काट्रोबोन शहर के नए मेयर चुने गए हैं, जबकि इंदिरा देवी कायाला डिप्टी मेयर का पद संभालेंगी। नई मेयर टीम के सामने काट्रोबोन के विकास को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। नए मेयर को सुनते हैं। काट्रोबोन में नई टीम ने निरंतरता बनाए रखने की बात कही है। लक्ष्मी सुबिराज गंगा बिसुन को काट्रोबोन का नया मेयर चुना गया है, जबकि इंदिरा देवी कलाया डिप्टी मेयर होंगी। दोनों को सर्वसम्मति के साथ चुना गया। इस अवसर पर सरकार के कई सदस्य भी उपस्थित रहे। नव निर्वाचित प्रतिनिधियों का कहना है कि उनकी प्राथमिकता नगरवासियों की अपेक्षाओं को पूरा करना है। बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं और नगरपालिका सेवाओं में सुधार के अलावा नए मेयर ने कर्मचारियों और नगरवासियों के साथ संवाद और नजदीकी संबंध पर जोर दिया।
4: Il y a la foi à Belle-Rose qui est déjà enclenchée et il y a un problème de BLN, un terrain abandonné. Nous pouvons essayer de mettre un lot. C'est un nouveau concept, rencontre avec le maire là. Il y a une plateforme de dialogue entre le maire, député maire et aussi un conseiller qui nous capable, qui est un truc qui a une difficulté, je peux gagner le terrain, qui a quelque chose qui nous capable d'améliorer pour eux.
0: अपने नए वर्ष के कार्यकाल को सफल बनाने के लिए नए मेयर अपनी डिप्टी मेयर के सहयोग पर भरोसा करेंगी। इंदिरा देवी ने नगरपालिका परिषदों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया।
5: Nous remercier le gouvernement qui vient mettre, qui vient commencer, pense un peu aux dames parce que nous aussi nous besoin à nos places dans la société et c'est madame qui est le pilier. De la famille, partout. Donc voilà, on est là, on va faire notre preuve.
0: बजट पेश किए जाने से पहले कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस ने कई अहम मुद्दों को लेकर चिंता जताई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की मुश्किलें, बढ़ती महंगाई और कृषि भूमि में लगातार कमी, यूनियन का कहना है कि इन सभी मुद्दों पर अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सीआईटीयू ने ज्यादा सामाजिक और न्याय संगत

0: बजट की मांग की है। साथ ही मध्यम वर्ग को अधिक सहायता, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार और स्थानीय उत्पादन को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। राधा कृष्णा साजन से बात की हमारी सहयोगी शैली निर्बन ने, विवरण करुणा लालू का है।
1: हॉस्पिटल सेक्टर में कर्मचारियों की कमी, ओवरटाइम भुगतान में देरी, साथ ही चिकुनगुनिया और लेप्टोस्पिरोसिस से जुड़ी स्वास्थ्य चिंताओं को लेकर ट्रेड यूनियन ने खासतौर पर अपनी नाराजगी जताई। कांग्रेस और इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की भी आलोचना की। यूनियन का कहना है कि इस क्षेत्र में कई बिलियन रुपए की बर्बादी हो रही है और इसमें गहरी सुधार की आवश्यकता है। एक अन्य चिंता का विषय उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले उत्पादों की कीमत और गुणवत्ता नियंत्रण। यूनियन खाद्य सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं और ये भी कहती हैं कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटीज के कारण कृषि भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है। ट्रेड यूनियन ने मध्यम वर्ग के लिए अधिक अनुकूल कर नीति, प्रवासी श्रमिकों के बेहतर नियमन तथा मॉरिशस में बढ़ती सामाजिक समस्याओं के मद्देनजर शिक्षा और मनोरंजन में अधिक निवेश की मांग की है।
0: नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर द्वारा आपदा राहत उपकरणों का प्रतीकात्मक वितरण किया गया। ये पहल रेजिलियंस बिल्डिंग एंड डिजास्टर रिस्पांस मैनेजमेंट इंडिया इंडियन ओशन कार्यक्रम के तहत उठाई गई है। वितरित उपकरणों में पेड़ काटने वाली मशीनें, पानी निकालने वाला पंप और राहत दलों के लिए सुरक्षा सामान शामिल हैं। उद्देश्य है प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं से निपटने के लिए मॉरिशस को ज्यादा मजबूत बनाना। ऑफिसर इंचार्ज प्रेमानंद बदू को सुनते हैं।
2: इंडियन ओशन कमीशन और यूरोपियन यूनियन,
1: हिंद महासागर आयोग ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर मॉरिशस में जोखिम और संकट की संभावना को घटाने के लिए सहयोग मजबूत किया है। खासकर स्थानीय अधिकारियों को जो उपकरण मिले हैं, इनकी बदौलत वे ज्यादा आत्मनिर्भर होंगे। फर्स्ट रेस्पॉन्डर अन्य प्राथमिकताओं को भी देख पाएंगे। इन उपकरणों में ज्यादातर SMF को दिए गए हैं। ये सुनिश्चित करेंगे कि देश को जल्द से जल्द सभी सुविधाएं प्राप्त हो।
0: वहीं डिजास्टर रिस्पांस यूनिट के मेजर राजीव दबागी का कहना है कि तूफान, अचानक बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों में ये उपकरण बेहद अहम होंगे। उनसे बात की हमारी सहयोगी शैली निर्बन ने, विवरण करुणा लालू।
1: हमारी इकाई के लिए एक बहुत शुभ और प्रतीकात्मक दिन। इन उपकरणों का उपयोग खासकर आपदाओं के समय किया जाएगा, खासकर तूफान, बाढ़, मानव संकट के समय। इनमें वाटर पंप और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण भी शामिल हैं। इससे कर्मचारियों की सहायता होगी।
0: इस्लामी तकवीम यानी इस्लाम के कैलेंडर में आज एक बेहद पाक और अहम दिन माना जाता है, जिसे यौम अराफात कहा जाता है। हज की अदायगी के हिसाब से ये सबसे अहम मरहला होता है। सभी हाजी आज अराफात के मैदान में पहुंचेंगे, जहां वे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे और अल्लाह से रहमत, बरकत और माफ़ी की दुआ मांगेंगे। माना जाता है कि कोह ए अराफात पर ही इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद साहब ने अपनी उम्मत को आखिरी पैगाम दिया था। आज हाजी मस्जिद अल निमरा में भी नमाज अदा करेंगे। सुमेरा अकबर अली।
3: यौमी अराफा वो है जब हज की नियत से जुटे वो सारे मुसलमान सऊदी अरब के मैदानी अराफात में होते हैं। इस्लामी कैलेंडर के दुलहिज्जा महीने की 9वीं तारीख को ये रोज़ आता है जो रोज़े हज है। कोहे अरफा पर ही इस्लाम के आखिरी नबी सरकारी दोआलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए आखिरी खुतबा दिया था। 2 मिलियन से ज्यादा मुसलमान अपना फर्ज पूरा करने सऊदी अरब गए हैं। मैदानी अराफात में तपती धूप के बावजूद सभी हाजी हज अदा करेंगे। वो खुदा से दुआएं तलब करेंगे और रब जलील से मग़फ़िरत मांगेंगे। आज के दिन रोज़ा रखा जाता है और सभी मुसलमान ज्यादा से ज्यादा माफ़ी और खुदा से रहमतें तलब करते हैं। 1500 से ज्यादा मुर्शन मुस्लिमीन हज अदा करने के लिए इस मैदान में आज जुट गए हैं। सभी हाजियों को हज मबरूर।

विदेश स्तर पर अमरीकी सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान के मिसाइल ठिकानों और कुछ नौकाओं को निशाना बनाया गया। अमरीका का कहना है कि ये कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई ताकि क्षेत्र में मौजूद उसके सैनिकों की सुरक्षा की जा सकी। वहीं ईरान ने कहा कि अमरीका के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई लेकिन किसी समझौते तक पहुँचने में अभी समय लगेगा। हालांकि इन नए हमलों पर ईरान की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। चलिए जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। मस्करविंस के दक्षिण पूर्व में एक जोरदार एंटीसाइक्लोन पाया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे इलाके पर सामान्य हवा की लहरों का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान ऊंचाइयों पर रह रहकर बरसात हो सकती है, अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। रात के मौसम की बात करें तो ऊंचाइयों पर मौसम रह रहकर खराब ही रहेगा, अन्य जगहों पर मौसम सुहाना रहेगा। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 20 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 6:36 पर हो गया है, सूर्यास्त होगा शाम को 5:48 पर।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे यूसुफ, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। माधवलीन मोताबा में श्रीमती विद्वंती रघु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विद्या के नाम से अधिक जानते थे। पैदाइश नाम माधव, उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 1 बजे उनके बेटे संताराम रघु के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। खुद बासें कट्रोबोन में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की अनीता देवी दीपू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम आलोक, लोग उन्हें अनीता के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उन्हीं के मकान कट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेतो कट्रोबोन की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड खोंगुब में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड के रोशन कालूते की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें राम के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनकी बेटी के मकान घोंगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। रॉयल रोड ओयता वाक्वा में 81 ईयर्स ओल्ड की सती सावित्री संतू की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम कुसुल, लोग उन्हें सुरेशा के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 1 बजे उन्हीं के मकान वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो वाकुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। सेगन रोड मारी जानी रोजबेल में 42 ईयर्स ओल्ड के श्री अरुण रविन्द्र तोमाल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विकेश के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थ आज दिन की 11 बजे उनके पिता सुभाष तोमाल के मकान रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की ही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। पेरिस फ्रांस में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड की महेश दुकरन की मृत्यु हो गई है। वे पहली मोशस में मुसलमान कुंजू प्लेंदी पपाई के रहने वाले थे। उनके अर्थी गुरुवार 28 मई को दिन के मोशस के समयानुसार दिन के 1:30 बजे फ्रांस में ही उठाई जाएगी। ले ग्रांड ब्रांच रोड खोंबुआ में 62 साल की 62 ईयर्स ओल्ड की फुल

फुलवंती तपसी की मृत्यु हो गई है। फुलवंती तपसी की मृत्यु हो गई है। पैदाइश शमसु कहा, लोग उन्हें वीना के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थ आज सुबह के 10 बजे उनके पति कंदाया नाल के मकान खोंबुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खोंबुआ की ही शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टू डी एफ 10 AM। शमे रोलो बिलिया रिवियर सैश में, बिलिया रिवियर सैश में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की रमावती दाबू की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुभावती के नाम से अधिक जानती थी। उनके अर्थ आज दोपहर बाद 2 बजे उनकी बेटी विजय दाबू के मकान बिलिया रिवियर सैश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बूशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टू डी एट 2 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और ओएमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से प्रस्तुत बाटे नो थावाई नो लावेनिया। मैन्युफैक्चरिंग के सिक्तिया में स्टेटलर मॉरिशस लिमिटेड जन रॉयल रोड पीतो में पावल जाला 20 मेल हाई प्रेसिजन मैकेनिक्स खो जाता जिनकर फॉर्म 3 संगे इंडस्ट्रियल मैकेनिक मिल एक्सपीरियंस बाटे। साथ में खो जाता 20 मेल फैक्ट्री वर्कर्स जिनकर फॉर्म 3 बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे फैक्ट्री जाके माने की रॉयल रोड पीतो जाके अपन अर्जी सबमिट कर दिया न तो सकब टेलीफोने करे 264-13-48। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 14 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सिक्तिया में आइलैंड ब्रश कंपनी लिमिटेड जन बो प्लाटू रोड सेंट अंतोन गुडलैंड्स में पावल जाला एगो मेल और फीमेल असिस्टेंट लैबोरेटरी खोजता जो नेगो डिग्री होल्डर है। साथ में खोजता एगो मेल और फीमेल डेवलपर प्रोडवी इंडस्ट्रियल जो नेगो डिग्री होल्डर बा। एप्लीकेशन करे खातिर अपन सीवी मेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है oh@ibrush.mu admin@ibrush.mu। जे जस्ती जानकारी खोजबा त टेलीफोने करिया 209-31-72-52-52-39-48। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 17 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में मेटल प्रोसेसिंग लिमिटेड जन गामा सिविक भिरीबा माने की कोयराची में 5 मेल ग्रेड 2 स्मेल्टर खोजता जिनकर 2 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर सकबा टेलीफोने करे 57-52-32-97 नता अपन सीवी मेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है recyclingimpl@gmail.com। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 5 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के ही सेक्टर में बुलेट मॉरिशिया लिमिटेड जोन बेथ्रेस NHDC कालबास में पावल जाला 10 फीमेल फूड प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स खोजता जिनकर पढ़ाई से पे से फॉर्म दे लेक बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोने करिया 57-32-83-85। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 5 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में इनोजिस पोल्ट्री लिमिटेड जन सवान रोड बोकलीमा में पावल जाला 20 मेल फॉर्म वर्कर्स खोजता जिनकर सिपे बाटे 20 मेल फॉर्मेन जिनकर फॉर्म कार्ड बाटे और

20 मेल मेंटेनेंस ऑफिसर्स जिनकर इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 206-0800। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 15 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में बुलांजरी डोमेन डू मूलिन लिमिटेड जिन बो प्लाटो रोड गुडलैंड्स में पावल जाला, 3 मेल बेकरी ऑपरेटर्स खोजता जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 58-25-21-44। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 31 मई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में ASP सप्लाईज लिमिटेड जिन राजीव गांधी रोड गुडलैंड्स में पावल जाला, 4 मेल फैक्ट्री वर्कर्स खोजता जिन सीपीए से फॉर्म दिलेक पढ़ाई कर ले हवन। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 59-16-44-12। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 31 मई 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में नॉर्थ पॉइंट एल्यूमिनियम लिमिटेड जिन रॉयल रोड कालबास में पावल जाला, 2 मेल ग्रेड 2 कैबिनेट मेकर खोजता जिनकर ऐसे संगे 12 महीना के एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर हौजे पहुंच जाइया न तो अपन सीवी मेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है northpointaluminium@gmail.com। जस्ती जानकारी खोजब तो 2459-90-57-43-33-33 पर फोन करिया। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 12 जून 2026। मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आलप्ला पैकेजिंग मॉरिशस लिमिटेड जन फ्री पोर्ट जोन 5 मैरोज में पावल जला, 5 मेल पैकर्स मतलब कैजुअल वर्कर्स खोजता जिनकर मिनिमम फॉर्म 3 बाटे और एक्सपीरियंस चाहेला हो के मैन्युफैक्चरिंग में, साथ में खोजता 2 मेल और फीमेल क्लीनर्स कैजुअल वर्कर्स जिनकर मिनिमम फॉर्म 3 संगे क्लीनर नियन एक्सपीरियंस बाटे, और खोजता 2 मेल और फीमेल ट्रेनी क्वालिटी क्लर्क जिनकर मिनिमम HSC बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 215-81-64 न तो अपन सीवी ईमेल द्वारा ई पता पर विदा कर दी है varsha.bachu@alpla.com। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 मई 2026। कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में मोहम्मद रेजा तुराबाली जन JSS रोड गुडलैंड्स में पावल जाला, 2 मेल ग्रेड 2 मासों खोजता जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बाटे, 3 मेल मासों हेल्पर्स जिनकर 3 बार स्किल एक्सपीरियंस बाटे, और 2 मेल ग्रेड 2 कारपेंटर्स जिनकर 2 बार स्किल एक्सपीरियंस बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 57-83-96-96। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 12 जून 2026। प्रिंटिंग के सेक्टर में प्रेसीग्राफ लिमिटेड जोन एवेन्यू सेंट विंसेंट डी पर्ल पाई वेस्ट में पावल जाला, 5 मेल और फीमेल मशीन ऑपरेटर्स खोजता जिनकर फॉर्म 6 संगे मैकेनिक्स में जानकारी बाटे, साथ में 5 मेल और फीमेल प्रेस ऑपरेटर्स जिनकर 5 बरिस के एक्सपीरियंस बाटे, और एगो मेल और फीमेल प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटर खोजता जेकर डिप्लोमा बाटे। एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://www.presigraph.mu/en। जस्ती जानकारी खोजब तो टेलीफोनिक करिया 52-54-72 न तो सकबा होजे ऑफिस जाके अपन अर्जी भर दी है। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। एग्रीकल्चर के सेक्टर में फ्रेजियर डी क्यूएपिप लिमिटेड जोन 2 ब्रा रोड न्यू ग्रोव में पावल जाला, 4 मेल लॉरी ड्राइवर्स खोजता जिनकर फॉर्म 3 संगे एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बाटे, साथ में 4 मेल प्राइवेट कार ड्राइवर्स जिनकर फॉर्म 3 संगे एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस बाटे, 8 मेल हेल्पर्स और 6 मेल फील्ड क्रॉप लेबरर्स। एप्लीकेशन करे खातिर टेलीफोनिक करिया 665-60-60। एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख है 30 जून 2026। पारास्टेटल के सेक्टर में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट जिन महात्मा गांधी रोड मोका में पावल जाला, एगो मेल और फीमेल
क्लैरिटी

0: जनेगो मास्टर्स डिग्री होल्डर बा आपली कासोकारी खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://www.mgirti.ac.mu/ आपली कासोकारी की अंतिम तारीख 3 जून 2026। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सिक्तिया में कोमेसा कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन CCCC जन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड थर्ड फ्लोर फुक्स हाउस बोबो स्ट्रीट पोर्ट्रीस में पावल जाला एगो डायरेक्टर कॉर्पोरेट सर्विसेज खोजता एगो अराबिक ट्रांसलेटर और एगो फ्रेंच ट्रांसलेटर खोजता एप्लीकेशन करी खातिर मिनिस्ट्री के वेबसाइट मानी कि https://foreign.gov.mu.org/pages/vacancies.aspx नत कोमेसा सेक्रेटरिया के वेबसाइट विजिट करिया https://www.comesa.int/ नत कोमेसा कंपटीशन एंड कंज्यूमर कमीशन माने के सीसी के वेबसाइट https://comesacompetition.org/ जन कैंडिडेट इंटरेस्टेड होवन चाहेला उनकरा अपन एप्लीकेशन संगे उगो सॉफ्ट कॉपी विदा करे के सीसीसीसी ई वेबसाइट पर recruitment@comesacompetition.org और चाहेला एगो कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रीजनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड के ई वेबसाइट पर भी mofisa@govmu.org एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 17 जून 2026। जे पब्लिक सेक्टर में काम खोजत हो त ई भी सुनते चला कि लोकल गवर्नमेंट सर्विस कमीशन के तले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑफ रिविया जुरान पार्ट टाइम सैनिटरी अटेंडेंट खोजता और चाहेला एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करे के https://lgsc.gov.mu.org और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 28 मई 2026। साथ में म्युनिसिपल टाउन काउंसिल ऑफ वाकवा फिनिक्स एगो लाइब्रेरी ऑक्सिलियरी जोन फॉर्मली लाइब्रेरी अटेंडेंट रहल खोजता एप्लीकेशन करे खातिर ई वेबसाइट विजिट करिया https://lgsc.gov.mu.org और एप्लीकेशन करे के अंतिम तारीख 28 मई 2026। प्राइवेट हाउसहोल्ड के सेक्टर में यूनियन पर्क के रिज्यूमे एगो हाउसमेट खोजल जाता एप्लीकेशन करे खातिर EIC रोजबेल टेलीफोनिक करिया ई नंबर पर 627-48-33। कोंगोमा के रिज्यूम खातिर एगो हाउसमेट खोजल जाता जेकर 6 महीना के एक्सपीरियंस बाटे और एप्लीकेशन करे खातिर चाहेला फोन करे के EIC गुडलैंड्स के नंबर पर
1: 282-59-17 नत 282-59-18।
0: और पेटी राफ्रिक रिज्यूम में एगो हाउसहोल्ड एम्प्लॉई के खोज बाटे कैंडिडेट के चाहेला एगो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के होल्डर होई के और हैंडीमैन वर्क गार्डनिंग और सिक्योरिटी ड्यूटीज जन बाते इनकर बेसिक स्किल्स चाहेला होई के एप्लीकेशन करे खातिर EIC गुडलैंड्स टेलीफोनिक करिया 282-59-17 ई रहल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और MBC के मिलल जुलल सहयोग से नू ट्रावाय नू लावेनिया।
2: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़
3: नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्पेन के वर्ल्ड कप स्क्वाड में लामिन यमाल है पर पहली बार के लिए रियल मैड्रिड से एक भी खिलाड़ी लागोआ में नहीं है। रियल मैड्रिड के डिफेंडर दीन होइसन और दानी कावाहाल नहीं चुने गए। प्रीमियर लीग से 7 खिलाड़ी हैं दाविद राया जुबिमेंडी पेड्रो पोरो कुकुरेला रोड्री येरेमी पिनो और मेरिनो टीम में शामिल हैं। वर्ल्ड कप के दौरान ईरान की टीम मेक्सिको में रहेगी। USA उन्हें होस्ट नहीं करना चाहता पर मेक्सिको राजी है। ईरान का ट्रेनिंग

0: कैंप मेक्सिको में होगा और मैचों से पहले और मैचों से बाद मेक्सिको की टीम वहीं पर रहेगी, ईरान की टीम मेक्सिको में रहेगी। मैनचेस्टर सिटी के एक्स बॉस पेप गार्डियोला के फेयरवेल पार्टी में बास्केटबॉल का लेजेंड माइकल जॉर्डन और पूर्व कप्तान विंसेंट कंपनी मेहमान थे। 19,000 सपोर्टर पार्टी में थे। गार्डियोला का सेंड ऑफ यादगार रहा। लीग टू प्ले ऑफ में कल मैच खेला गया। नॉट्स काउंटी ने 3-0 से साल्फोर्ड को हराया। स्कॉटिश प्रीमियरशिप प्ले ऑफ में सेंट मिरन की जीत 1-0 से पार्टी टीम के खिलाफ। जर्मन बुंडेसलीगा प्ले ऑफ में पाडेरबोर्न ने 2-1 से वुल्फ्सबर्ग को हराया एक्स्ट्रा टाइम के बाद। कल कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल खेला जाएगा। क्रिस्टल पैलेस का मुकाबला रायो वालेकानो से है। टेनिस फ्रेंच ओपन जारी है। कल के मैचों में श्वातिक रिबाकीना, हुबर्ट गास्टन, रिंडेनच, विटोलिना, अनी सिमोवा, शेल्टन, पाओलिनी, दे योंग, कास्पर रूड, मुचोवा, फिर सेरुंडोलो, इन सभी खिलाड़ियों की जीत हुई। वावरिंका आउट हो गया। आज के मैचों में सबालेंका का मुकाबला होगा आज बुजास मानेरो से, फिर कोको गोफ खेलेगी थॉमसन के खिलाफ, यानिक सिना खेलेगा ताबू के खिलाफ, जबकि वाल्टन वर्सेस मेदवेदेव। और क्रिकेट में आईपीएल 2026 का क्वालिफायर 1 आज खेला जाएगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। जो जीतेगा सीधे फाइनल में, हारने वाली टीम एलिमिनेट नहीं होगी, इंतजार करेगी सेमीफाइनल में जाने के लिए। एलिमिनेटर में कल राजस्थान रॉयल्स खेलेगा सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, यहां जिसकी जीत होगी सेमीफाइनल में और जिसकी हार वो बाहर। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप सभी लोगों का विंग की ओर से शुभ दिन।
1: On the hour, every hour, Radio Marches.
2: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।

0: रेडियो मॉरिशस की लहरों पर पुनः आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मीडिया में बात 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम में। और आज मंगलवार का दिन है, 26 तारीख है, मई महीना 2026 का साल, और इसी के साथ जी हाँ तारीख 26/5/26 और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हो चुके हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ एक बार आपका साथ देने के लिए मनोरंजन के इस भरपूर कार्यक्रम के साथ और मज़ेदार गीतों का ये सफ़र अभी थोड़ी ही देर में हम जारी रखेंगे। सुबह का नजराना कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे चिंतन के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी जमन। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: दूसरों में दोष न निकालना दूसरों को उन दोषों से उतना नहीं बचाता जितना अपने को बचाता है।

चलिए रेडियो मॉरिशस पर झलकियों में बताते चलें आपको कि आज कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं आप सभी के लिए। जी हाँ, इस वक्त सुबह का नजराना कार्यक्रम जारी है और इसी के अंतर्गत 8 बजे हम जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों के साथ। 8:15 बजे आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे निर्देशक और दिग्दर्शक के साथ जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन उम्दा फिल्म्स दी हैं और जिनका जन्मदिन है, तो चलिए उन पर बात करेंगे ठीक 8:15 बजे। और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम में जुड़ेंगे किरण जानकी के साथ। भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए जुड़ेंगे 9 बजे के समाचारों के साथ और 9 बजे के समाचारों के बाद हमारा साथ देंगी सुमिता, जो आज की चर्चा कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी। और आपको ये भी याद दिलाते चले, इसका सीधा प्रसारण आप सुन पाएंगे रेडियो मॉरिशस पर और इसका सीधा प्रसारण देख पाएंगे रेडियो माफ कीजिएगा MBC के तीसरे चैनल पर। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पुनः आप इस कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट सुन पाएंगे 3:00 से 4:00 के बीच, जो होगा रेडियो मनोरंजन पर। और आज का ये कार्यक्रम पॉलिटेक्निक पर आधारित रहेगा और इस कार्यक्रम की अतिथि होंगी संजना तोताराम, जो एक्टिंग प्रोग्राम लीडर और साथ ही साथ आरती खेदनी, जो स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिसर हैं। तो जरूर जुड़िएगा आज के इस कार्यक्रम में। और आपको ये भी बता दें, ये कार्यक्रम 9:00 से 10:00 तक चलेगा, 1 घंटे का सफर होगा। 10:00 के समाचारों के बाद एक बार फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी भक्ति धारा कार्यक्रम में, जहां पर भक्तिमय भजनों के साथ इस कार्यक्रम को हम प्रस्तुत करेंगे और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत वेद सुधा का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी की प्रस्तुति में। ग्यारह बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। 11 बजे के समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे विविध भाषाओं के कार्यक्रम, जिसकी

शुरुआत होगी शम्मे फरोजा कार्यक्रम के साथ और ये उर्दू भाषा का कार्यक्रम जिसे पेश करेंगी सैयदा सुबाई, 12 बजे तेलुगु भाषा का कार्यक्रम जिसे लेकर आएंगी वर्षा, 12:30 बजे मराठी गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा सीताबाई दरमिया द्वारा, 1 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम लेकर आएंगी आरसी, 1:45 बजे अमिता का साथ होगा गुजराती गीतों के कार्यक्रम रंगारंग में, 2:00 बजे मैंडरीन का कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत करेंगे डेविड, 2:30 बजे दैनिक कार्यक्रम आपकी पसंद और इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी रोशनी जो चलेगा शाम के 4 बजे तक, 4 बजे तमिल भाषा का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे कलाईवानी वीरन की प्रस्तुति में, शाम 5 बजे भूले बिसरे गीत, 6 बजे तक ये कार्यक्रम जहां पर पुराने गीतों को आप एंजॉय कर पाएंगे, 6 बजे देश विदेश की खबरें समाचार बुलेटिन में, 6:30 बजे आप सुन पाएंगे मैंडरीन का कार्यक्रम और ये कार्यक्रम होगा हांगकांग की प्रस्तुति में, शाम 7 बजे युवरासन लेकर आएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम, 7:30 बजे कृतिका लेकर आएंगी तेलुगु भाषा का कार्यक्रम, 7:50 पर मराठी कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत करेंगे शिरीष रामा, 8:10 पर भक्तिमय कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाएगा देवना की ओर से, 8:40 पर महफिल शब उर्दू कार्यक्रम पेशकश रहेगी निसार अख्तर की, 9:00 से 11:00 के बीच भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत करेंगी उषा कौर और 11:00 से 12:00 के बीच पुराने गीतों का सफर सुनहरे पल नीतुषा की प्रस्तुति में और 12:00 से कल 6:00 तक आप सुन पाएंगे ओवरनाइट प्लेलिस्ट जिसे सजाया जाएगा हमारे प्रोडक्शन असिस्टेंट द्वारा। वैसे आपको ये भी याद दिला दें आज 2:00 से 3:00 के बीच मैं एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित रहूंगी रेडियो मनोरंजन पर और आज उड़ान की कहानी में हमारे साथ जुड़ेंगी एक लेखिका श्रीमती रूबी कपूर। आप जरूर जुड़िएगा इस कार्यक्रम के साथ, इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप सुन पाएंगे रेडियो मनोरंजन पर और फेसबुक पेज पर आप इसे फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ पुराने गीतों का ये सफर जारी रखते हैं और जुड़ते हैं इस अगले बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: तेल मालिश बूट पॉलिश का ये बहुत ही प्यारा सा गीत तलत महमूद और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में और इस फिल्म में नज़र आए थे शेख मुख्तर और कुमकुम। और ये फिल्म थी 1961 के दौर की ब्लैक एंड वाइट मूवी का ये प्यारा सा गीत हमने अभी भी सुना। आशा करते हैं कि आज का भी ये सिलेक्शन आप सभी को पसंद आएगा और पुराने गीतों के सफ़र में कुछ ऐसे हसीन गीतों के साथ, कुछ हसीन बातों के साथ, वही कहते हैं ना जिनके स्वभाव में प्यार बसा हो उनके दरवाजे पर खुशियाँ बस खुद चल कर आती हैं। तो मन साफ रखिएगा। कई बार कहते हैं ना कि चेहरे पर मुस्कुराहट और मिठास सब कोई रख लेता है, पर मन में क्या चल रहा है ना ये हम खुद जानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बस आप किसी से भी बात करें तो बहुत ही साफ मन के साथ। और चलिए इसी के साथ प्यार भरे गीतों का ये सफ़र जारी रखते हैं। 7:24 हो चुके हैं, तो चलिए अगला जो गाना है ये भी एक बहुत ही मशहूर सा गाना है और फिल्म है जाने अनजाने, मोहम्मद रफ़ी और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में रखा हुआ ये अगला गीत साथ मिलकर सुनते हैं। आइए।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना,

0: 7:35 हो चुके हैं और ये मज़ेदार बहुत ही प्यारा सा गीत दिल दे के देखो मोहम्मद रफ़ी और आशा जी के आवाज़ में बहुत ही मज़ेदार गीतों का ये सफ़र। और आज के इस कार्यक्रम को बिल्कुल कुछ ऐसे ही बेहतरीन गीतों से सजा रहे हैं हम। और चलिए समय हो चला है हमारे अगले सेगमेंट के साथ जुड़ने का, जो है छोटी सी बात।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना,

और बिल्कुल आज की छोटी सी बात। लगभग 10 साल का एक छोटा सा बालक राधा के गेट के बस पास आके खड़ा हो गया और दरवाजा खटखटाने लगा। राधा ने बाहर आकर पूछा,

क्या है, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो बच्चे? बोला, आंटी जी क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? राधा ने कहा, नहीं हमें साफ नहीं कराना। फिर हाथ जोड़कर वो बहुत ही दयनीय स्वर में बोलने लगा, आंटी प्लीज़ साफ करवा लीजिए, मैं बहुत अच्छे से आपका पूरा गार्डन साफ कर दूंगा। उसकी बात सुनकर राधा को उसके मन में दया आ गई और उस बच्चे को गार्डन साफ करने के लिए कहा कि भाई कितने पैसे लोगे? तो वो बच्चा कहने लगा, आंटी जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे बस थोड़ा सा खाना दे दीजिएगा। तो राधा को लगा कि बच्चा बहुत भूखा होगा इसलिए शायद खाना मांग रहा है। तो राधा ने कहा, अच्छा पहले सुनो, खाना खा लो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। और थोड़ी देर बाद राधा खाना लेकर आई तो बच्चे ने बोला, आंटी पहले मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं पहले काम करना चाहता हूँ। तो राधा ने कहा, नहीं बेटा पहले तू खाना खा ले, मुझे पता है तुझे बहुत भूख लगी है। तो वो बच्चा बोला, नहीं आंटी पहले मैं काम ख़त्म कर लूँ फिर आप मुझे खाना दीजिएगा। तो राधा ने कहा, ठीक है। ये कहकर राधा अपने काम में मशगूल हो गई। एक घंटे के बाद वो लड़का आया अपना काम निपटा कर और उसने कहा, आंटी जी मैंने सारा काम कर लिया, आप देखिए सफाई ठीक से हुई है ना। तो राधा उसके बढ़िया काम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। उसके काम से खुश होकर राधा तुरंत भीतर गई, खाना फिर गरम करके लेकर आई, लड़के को दिया। तो लड़के ने जेब में से एक थैली निकाली और खाने को वो थैली में भरने लगा। ये देखकर राधा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, तुम्हें तो भूख लगी थी ना बेटा, तो फिर खाना थैली में क्यों डाल रहे हो, तू खाना खाने नहीं वाला क्या? तो उसने ये कहा, नहीं आंटी मैं ये खाना घर ले जाऊंगा, मेरी माँ बहुत बीमार है और उसे मुझे अस्पताल के डॉक्टर जी ने कहा है कि उसे खाली पेट दवाई नहीं देनी है। राधा उस बालक की बात सुनकर बहुत ज्यादा भावुक हो गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने उस मासूम से बालक को खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और उसकी माँ के लिए ताजी गर्म रोटियां बनाकर उसके घर छोड़ने गई। और जाते ही उनकी माँ को मिलकर उन्होंने कहा कि बहन आप बहुत ज्यादा अमीर हो, जो दौलत आपने अपने बेटे को दी है, अपने बच्चों को दी है, ये बहुत कम लोग दे पाते हैं। आपका बच्चा बहुत ही बड़ा, बहुत ही दयालु है और आपकी बहुत ही ख्याल करता है। दोस्तों देखा जाए तो ये जो कहानी है आज के समय में बस कहानी, आपने देखा होगा YouTube पर कई सारी ऐसी रील्स बनाते हैं लोग क्योंकि मदर्स डे आ रहा है, पर ये केवल कहने के लिए या सुनने के लिए नहीं है या केवल फिर महसूस करके छोड़ देने के लिए भी नहीं है। ये कहानी से हमें एक चीज बहुत बड़ी हमें समझ में आती है कि आजकल कितने बच्चों के मन में अपने माँ बाप के लिए यही भावना है। मैं समझती हूँ बहुत सारे बच्चे तो ये भी नहीं जानते होंगे कि उनके माता पिता को अच्छा क्या लगता है, और मदर्स डे केवल एक दिन के लिए मनाने के लिए हम नहीं करते, क्योंकि देखा जाए तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि माँ का कोई दिन नहीं होता, अगर माँ ना हो तो भाई सच में हमारे दिन ही नहीं होते। और माँ एक ऐसी इंसान है जो हमारे ज़िंदगी को मायना देती है, जो हमारी ज़िंदगी को इम्पोर्टेंस देती है। पर हम जैसे ही समझदार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं और हम इतने ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं कि हम माँ को ही वो सम्मान देना भूल जाते हैं और बस सोचते हैं कि भाई महंगे से महंगी साड़ी खरीद कर दे देंगे मदर्स डे के दिन, या फिर महंगे से महंगा गिफ्ट खरीद कर दे देंगे। पर दोस्तों

माँ का एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। आज की ये कहानी उन सभी माताओं के नाम जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन संस्कार दिए हैं, और मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं अगर पढ़ लिख कर एक ऐसे स्तर पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद भी अगर वे अपने माता पिता को वही सम्मान वही आदर देते हैं, इससे बड़ी लॉटरी आपकी हो नहीं सकती। आशा करते हैं आज की ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी।

7:51 और आप सभी के नामों को जोड़ने का समय यहाँ पर बिल्कुल डेडिकेशन का समय हो चुका है। घोंघूप से हमेशा की तरह श्यामा जी हमारे साथ है। श्यामा रघुनंदन भैया, जयप्रकाश भाभी है, नम्रता केशव और युधीश, आपकी प्यारी सखियाँ विश्वानी जी और वीना रामफल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। क्यूपिप से गीता जी, माधुरी जी हमारा साथ दे रही हैं, फ्लोगयाल से काटुबोन से हैं माला सुमारू जी और उनके प्यारे पति सूर्यदेव, रोजबेल से नवीन लक्ष्मण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्यारी पत्नी चित्रा के साथ। थैंक यू सो मच आपके सभी के प्यार भरे मैसेजेस, प्यार भरे फ़ोन कॉल्स हमेशा से हमारे साथ हमारी तरफ आते रहे हैं। बस यूं ही अपना प्यार बरसाते रहिए, हमें तो बस कहते हैं ना कि इंसान प्यार का भूखा होता है। और यहाँ पर आपके सभी परिवार, निवेदिता और सच्चिदानंद जी हैं मेबग से, ललिता और धनराज चरण जी मोडालबिया से, प्यारी बेटी स्वीटी के साथ न्यू ग्रोव से है राज और अमृता ओबिलक, और घोंबुआ से रमेश और प्रीति जी हमेशा की तरह सुनते हैं, हमारा साथ देते हैं। थैंक यू।

अनीता लाल जी, गोगा परिवार, रितु परिवार, नागेश्वर परिवार और लालजी परिवार के साथ। गीता बाई हमारे साथ हैं नुवेल फ्रांस से, साथ है उनके प्यारे बेटे शिवाजी, बेटी हैं सुधा बाई, बहू है श्वेता बाई, साथ है बिजवी बाई, दिया बाई और मल्हार, और प्यारी सखी गायत्री जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बेटा अजय, मामी कल्याणी मोहन मेबक से, और भाभी है शकुंतला जो है मोताइलोंग से, ओ कुले से साथ दे रही है अमृता जी, गोंगोब से हैं सुनीता जी, प्यारी बहन विमला जो आज रोड्रिक्स जा रही हैं सीनियर सिटीजन के साथ, आपको कहेंगे बॉन वॉयज, और साथ ही साथ आपकी प्यारी बहनें अमृता और वीना जी भी हमेशा की तरह साथ देते हुए यहाँ पर गुश्तिया से जुड़ी हुई हैं कल्याणी जी, और आपके पति हैं आनंद, बेटी प्रिया, बेटी काजल को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हैं जिनका जन्मदिन था कल यानी 25 तारीख को। चलिए काजल, आपको बहुत बहुत प्यार आपके मम्मी पापा की ओर से। साथ ही साथ यहाँ पर पोफेया से जुड़ी हुई हैं गीता जी, आपके प्यारे पति रोहित और हमेशा की तरह आदित्य और आरव साथ दे रहे हैं, और साथ दे रहे हैं तानिश, आपकी प्यारी परी जैसी जानवी, तीन बेटे दो बहुओं के साथ, और यहाँ शीला जी भी, तबीयत कुछ नासाज है, आप बस अपना ख्याल रखिए, आप बस ऐसी तबीयत में भी आप हमारे साथ हमेशा फ़ोन करके बात करते हैं, बहुत हिम्मत चाहिए जब तबीयत अच्छी नहीं होती, पर आप इतनी हिम्मत करते हैं, ईश्वर आपको बहुत साहस दे, बहुत हिम्मत दे, और अपना ख्याल रखिए। वाकवा से जुड़े हुए हैं शोभा जी, साथ है अनुषा, शर्वीना और अवनीश और अर्णवी, और आपकी प्यारी बहन प्रेमिला जयमंगल, आपकी सखी राधा बाल गोबिन, और वीना जी है मोचिदा से, मानती जी जुड़ी हुई हैं अनवलफोंस से, अनंती, आरती और आपकी प्यारी कज़न चिंता के साथ, सेंट जूलिया विलाज से है नीता खेदनी, आपकी प्यारी सखी स्वाधिका और सभी खेदनी परिवार के साथ आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, थैंक यू। गोम्बुआ से लीलो जी भी जुड़ चुकी हैं, और यहाँ पर आपकी प्यारी सखी गीता जी भी साथ दे रही हैं खेत से, बस ठंड है, अपने आप को तोप ताप के रखिएगा, बिल्कुल ठंड में काम करना आसान नहीं होता। प्रेमिला से गुलाम जुड़ी हुई हैं कौरेमास से, और आज उनकी प्यारी बहनें भी हैं बेचू परिवार से, ग्रीष्मा फ्लाक से, रागिनी और साधना जी, त्रियोले से अनसुया राम केलावन भी जुड़ी हुई हैं, और आज आपकी प्यारी भगिनी रेखा का जन्मदिन है, आज नहीं पर 27 तारीख को यानी कल होगा बुधवार के दिन, जो रहती हैं वाकवा, रेखा लक्ष्मण, उनकी प्यारी बेटियां गीमा, दिशा और दिव्या की ओर से, और प्यारी मौसी प्रेमिला की ओर से आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। गौबुआ से यहां पर जुड़ी हुई हैं शिवरानी जी, साथ है आपके सभी बच्चे सुधीर शर्मा, सुनाही, आपकी प्यारी बहू रोशनी, साथ है आपके पोते शिरीष, साथ है बहू शिखा और शिवान, साथ दे रहे हैं आपके बेटे राज और आरती जो हैं गौबुआ से, और नाती हैं यश और कबीर, साथ है बहू अंजलि, आपकी प्यारी बेटी है काटोबोन से शर्मिला सीचन, नातीन है उर्वशी रघुबा, और आपकी प्यारी बहन जो यूके लौट चुकी हैं कृष्णा कुमारी गौरी शंकर जो हमेशा साथ देती हैं, कमला जी हैं कातकुकु से, रामन और सीपॉल परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, और सभी को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हैं, सुदेवी जी मौका से साथ दे रही हैं अपने पति और बच्चों के साथ, एक्वायोस से साथ दे रही हैं मून, और आज उनकी प्यारी बहू, बड़ी बहू नीलम का जन्मदिन है, तो नीलम आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ अपने सास ससुर मून और चांद की ओर से, सभी फोकिया चंद परिवार, खासकर आपके प्यारे पति अविनाश जो इस वक्त बिल्कुल शिप में है, डेफिनेटली आपको आज के दिन बहुत मिस करते होंगे, तो चलिए परिवार के साथ खुशियां मनाएं, और साथ है अभिषेक और अभिषा और दामाद जी है आश्ले, साथ है जिंसके, और निया और निक्षु की ओर से ममा नीलम को बहुत सारा प्यार, सुमिला ईरामन भी यहां पर जुड़ चुकी हैं, और 23 तारीख को यानी शनिवार को आपके प्यारे बेटे संजय का जन्मदिन था बहू वीना की ओर से, और साथ ही साथ ममा सुमिला की ओर से, पापा की ओर से, सभी बहन बहनों की ओर से, बेटियां है आशना, आंशी और अंकुश बेटा, उनकी ओर से भी आपको बहुत सारा प्यार। सूरज सजादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं त्रियोले से, थैंक यू सो मच। मालाजरी हमारे साथ है पेचितगत से, आप अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हैं, डेफिनेटली मदर्स डे का दिन बहुत भारी होता है उनके लिए जिनकी मम्मी दूर हो चुकी हैं। आशा जानू कॉटेज से जुड़ी हुई हैं ममा कुमारी, साथ है आरती, राज और शुभम ऋषभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी बाम्बू से जुड़ी हुई

हुई हैं अक्षय और आशनी के साथ काट्रबून से। बेटा युवान, बेटी शर्वना अपने पापा सत्यानंद को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ देते हैं और आपकी पत्नी नलिनी की ओर से ढेर सारा प्यार, ईश्वर परिवार की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद। लीला जी हैं बहुत शिगी से, शीला जी जुड़ी हुई हैं देपिने से, चमेली जी मौ डालबिया से, गौबुआ से हैं देवी जी। आज आपकी प्यारी बेटी पल्लवी का जन्मदिन है, साथ है उनके पति काविन, बेटा है कियान, भाई है भविष, गिरीश और वशीष। ढेर सारा प्यार मम्मी देवी और पापा की ओर से जाता है पल्लवी को। अमृता गंगू भी हमारा साथ दे रही हैं और बहुत सारा प्यार। यहाँ पर एक और प्यारा सा मैसेज आ चुका है शीला बेमाना का और साथ जुड़ी हुई हैं शांता पादू, मीला राम सामी जो है पादमा कात्रबोन से। और यहाँ पर विजय बंधन जी और उनका सब उनका पूरा परिवार भी हमेशा साथ देता है क्लावेट से, पत्नी रेखा, चंदनी, बिंदु, कुमारी, उनकी तीन प्यारी बहनें और सभी दोस्तों के साथ वे हमेशा साथ जुड़े रहते हैं। भाई अगर किसी का नाम छूट गया हो तो हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि लंबी लिस्ट है। और चलिए ये गाना हम छोड़ते हैं आप सभी के लिए और इसी गीत के साथ जन्मदिन की भी बधाइयाँ और आने वाले मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएँ मिलते हैं इस गीत के बाद भोजपुरी समाचारों के साथ। और समाचारों के बाद एक बार फिर साथ रहेगा हमारा और आपका एक छोटी सी मुलाकात में।

फजर के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार। नमस्ते, सुना भोजपुरी में समाचार। आज मंगल के राज्यसभा की बैठक फिर से लगी। प्रधानमंत्री 22 सवाल के जवाब दियन। सार्वजनिक कर्ज, सेहत सेवा, सिल्व बैंक, कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा, ये सब मुद्दा आज की बैठक में मुख्य रही। देश के 5 नगरपालिकन में अब नवा चेहरा और ये नया जिम्मेदारी देखे के मिली। काल सोमवार 25 मई के नगरपालिका चुनाव पूरा भइल और ये नवा मेयर और ये डिप्टी मेयर लोग अपन जिम्मेदारी संभाले लंजा। पोटली में पहला हला। राजनीति राजधानी के कमान 2 महिला के हाथ में गलबा। क्रिस्टल पोदो नया मेयर, नया लोर्ड मेयर हवन, जबकि महजबीन कहमताली उनकर डेप्यूटी। लोर्ड मेयर बोलन कि उ नगर परिषद सड़क, मूल ढांचा और विरासत संरक्षण और शहर के भलाई खातिर खास काम करियन। महजबीन कहमताली जनता के जुड़ाव, जिम्मेदारी और लगातार सेवा पर जोर देलन। काल वक्वा फिनिक्स नगर परिषद में भी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव भइल। अली हुसैन अब्दुल कादिर नवा मेयर चुनल गल हवन। उनकर कहना बाकी खेल मैदान के सुधार, सड़क निर्माण और लाइटिंग व्यवस्था पर ही काम करल जाए। क्यूपिप में तशियाना लक्ष्माना पीले नवा मेयर चुनल गल हवन, जबकि दयाना आमी डिप्टी मेयर। ये दूसरा मौका बा जब पूरा शहर के जिम्मेदारी महिला टोली के हाथ में गल बा। नवा टोली शहर के विकास और कई जरूरी मुद्दन पर काम करी। कठबोन में सुबिराज गंगा बिसु नवा मेयर चुनल गल हवन, जबकि इंदिरा देवी कायला डिप्टी मेयर के जिम्मेदारी परी रहियन। ई खास मौका परी कई गो मंत्रीगण और माननीय लोग मौजूद रहलन जा। नवा नगर परिषद टोली शहर

के विकास, साफ सफाई और लोगन के भलाई खातिर काम करी। बजट पेश होखे में अब दो हफ्ता से कम समय बाकी बा। इ बीच कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस कई जरूरी मुद्दन पर चिंता जताइले बा। बढ़त महंगाई, सेहत व्यवस्था

0: करली बा साथी मध्यम वर्ग खातिर सहारा सार्वजनिक यातायात में सुधार और देसी उत्पादन बढ़ावे पर जोर देवल गल बा। इस्लामी कैलेंडर के अनुसार आज यौम अराफात मनावल जाता। ई दिन मुस्लिम समाज खातिर बहुत ही पाक और अहम मानल जाला। हज के दौरान ई सबसे महत्वपूर्ण दिनन में से एक है। आज लाखों हाजी अराफात के मैदान में जुटियन जा जहां वो इबादत करियन जा। ई खास दिन अल्लाह से रहमत बरकत और माफ़ी के दुआ मांगे के मौका बा। मानल जाला कि यह दिन के हज़रत मोहम्मद साहब अपन उम्मत खातिर आखिरी पैगाम दिले रहलन जा। दूसर देश की खबर में अमरीकी सेना दावा कर लेबा कि दक्षिणी ईरान में नवा हवाई हमला करल गल बा। ई हमला में मिसाइल ठिकाना और कुछ नाव के निशाना बनावल गल बा। अमरीका के कहना बा कि ई कार्रवाई के आत्मरक्षा खातिर करल गल बा जमी उ इलाका में मौजूद सैनिक लोगन के सुरक्षा हो सकी। तो ये रहा हमने के भोजपुरी में समाचार। हमने के सुन ला जा। धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, and NBC Radio.TV.
0: शोक समाचार सुना। शुमा गुल्लो बिलेरिविया सेश में 85 बरिस के 85 की श्रीमती रमावती दाबू गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दोपहर बाद 2 बजे उनकर बेटा विजय दाबू के घरे बिलेरिविया सेश से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बोशों के शमशान भूमि ले जावल जाए। लेखों ब्रांच रोड खोंबुआ में 62 बरिस के ससंदेजों की फुलवंती तप से गुजरगल हवन। पैदाइश नाम सुकाहा। उनकर माटी आज फजीर के 10 बजे उनकर पति कंदायालाल तापसी के घरे खोंबुआ से उठा के अंतिम संस्कार खातिर इलाके ही के शमशान भूमि ले जावल जाए। पेरिस फ्रांस में 75 बरिस के सुसन कैजों के महेश दुकरन गुजरगल हवन। उ आगे प्लेंदे पपाई के निवासी रहलन। उनकर माटी फ्रांस में 28 मई के दिन के 1:30 बजे फ्रांस में उठावल जाए। सेकंड रोड महाजानी रोजबेल में 42 बरिस के कहोंदीजों के अरुण रविंद्र तुमाल गुजरगल हवन। उनकर माटी आज फजीर के 11 बजे उनकर पिता सुभाष तुमाल के घरे रोजबेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर इलाके ही के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड ओयता वाक्वामी 81 बरिस के 99 के सती सावित्री संतु गुजरगल हवन। पैदाइश नाम कुसुल। उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उन्हीं के घरे वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुबह उन्हें वाकवा के शमशान भूमि ले जावल जाए। रॉयल रोड घोंगुब में 63 बरिस के सुसन थ्वासों के रोशन कलुते गुजरगल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर बेटा के घर एक होगुप से उठा के अंतिम संस्कार खातिर इलाके ही के शमशान भूमि ले जावल जाए। खुद बासें कटरोबोन में 78 बरिस के सुसंजीवितों की अनिता देवी दीपो गुजरगल हवन। पैदाइश नाम आलोक। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उन्हीं के घरे कटरोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर ब्यतो कटरोबोन के शमशान भूमि ले जावल जाए। रामजावन लेन थ्रियोलेमी 81 ईयर्स ओल्ड के 81 ओं के प्रेमदत्त रामजावन गुजरगल हवन। उनकर माटी आज फजीर के 10 बजे उनके घरे थ्रियोले से उठा के अंतिम संस्कार खातिर तेमिनिस थ्रियोले के शमशान भूमि ले जावल जाए। रिजर्वर रोड गुडलैंड्स में 77 बरिस के ससंजीसेतों के बीबी फरीदा तुराबाली इंतकाल कर गल हवन। पैदाइश नाम हुसैनी। उनकर जनाजा आज दिन के 11 बजे उनकर पति महमूद तुराबाली हुसन के घरे से निकाल के दफनाए खातिर बेलमों के कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शोक में डूबल सब परिवार संगे हमने सहानुभूति प्रकट करत हैं जा।
2: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात में एक बार फिर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। जी हाँ, इस वक्त सुबह का नजराना कार्यक्रम के बीच रखा हुआ ये सेगमेंट आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस, और मैं हूँ रत्ना, पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूँ। इस वक्त 8:13 होने जा रहे हैं और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की जिनका जन्मदिन था कल यानी 25 तारीख को।

और ये भारतीय फिल्म मेकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ हम क्या बताएं, उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन की शुरुआत की, जहां से कई सारे ऐसे कलाकार निकले जिन्होंने कितने सारे फिल्म अवार्ड्स जीते। और वैसे हम आपको बता दें, आज हम बात करेंगे राहुल कुमार जौहर की, जिनको हम करण जौहर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, के जो, जी हाँ, इनको सभी प्यार से के जो भी बुलाते हैं। भैया, बॉलीवुड इंडस्ट्री है तो नाम बहुत लंबे अगर हो जाएं तो उसको कट शॉर्ट करने का भी एक तरीका है। बड़े पर्दे पर आने के साथ साथ नाम को भी बदला जाता है, और कई बार नाम बदलना फायदेमंद भी होता है। जैसे राहुल कुमार जौहर बने करण जौहर और फिर बने केजो। और 25 मई 1972 यानी 1972, और बिल्कुल उनको हम ये भी कह सकते हैं कि उनके उन्हें 4 फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं, 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं, और इतना ही नहीं 2020 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए आज हम बात करेंगे करण जौहर के बारे में, जो सुपुत्र है यश जौहर जी के, और उन्होंने अपना डेब्यू, डायरेक्टोरियल डेब्यू, यानी उन्होंने पहली बार फिल्म डायरेक्ट की कुछ कुछ होता है, जो कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा रही। 1998 की ये फिल्म जब उन्होंने डायरेक्ट की थी, आपको ये भी बता दे, कुछ कुछ होता है फिल्म एक नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म रही, और फॉर इस फिल्म को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट एज अ डायरेक्टर का उनको अवार्ड प्राप्त हुआ। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले, और साथ ही साथ ये फिल्म सच में एक ऐसी मूवी रही जिन्होंने अपने फैंस के दिलों में बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। फिल्म कुछ कुछ होता है जिसमें नजर आए थे किंग खान, काजोल और रानी मुखर्जी,

एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर। रेडियो मॉरिशस पर। आठ बजकर 20 मिनट और आज की ये छोटी सी मुलाकात हम कर रहे हैं करण जौहर के साथ, जिन्होंने कल अपना जन्मदिन मनाया और 54 ईयर्स यानी 54 वर्ष के हो चुके हैं कि जो 25 मई 1972, जी हाँ, इनका जन्म हुआ था बम्बई में, मुंबई में, जहाँ पर वे एक पंजाबी परिवार में पैदा हुए और उनके पिता जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बहुत ही जाने माने निर्माता हैं यश जौहर, जिन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस के वे संस्थापक हैं और उनकी जो मम्मा है वो एक सिंधी हीरू जौहर, समलैंगिक परिवार यानी कि एक कॉस्मोपॉलिटन हाउस में वे पले बड़े और जहाँ पर ज़्यादातर बातें इंग्लिश में हुआ करती थी। वैसे उनके जो पिता हैं वे एक आर्य समाजी थे जो हिंदू सिख और ईसाई प्रार्थनाएं अपने घर में बोलते थे। और जब हम करण जौहर के जीवन की बात करते हैं तो उनकी ज़िंदगी में हम कह सकते हैं कि उनको जैसे आम परवरिश होती है बच्चों की, उन्हीं की तरह उनका भी उनको भी पाल पोस कर बड़ा किया गया। उन्होंने मुंबई के ग्रीन लॉन्स हाई स्कूल में और साथ ही साथ HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की और जौहर ने दून स्कूल में दाखिला लेने की कोशिश की थी लेकिन गणित में 0 अंक प्राप्त करने के कारण उनको दाखिला नहीं मिला। यानी हम ये मान सकते हैं कि कई बार भले आपके पास एकेडमिक क्वालिफिक

ना भी हो तब भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जज्बा होना चाहिए ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। और बेशक उनके पिता खुद एक फिल्म निर्माता, तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये फिल्मों वाली रुचि तो रहेगी ही। जी हाँ, कभी खुशी कभी गम इस फिल्म के साथ उन्होंने अपना डेब्यू किया और बहुत ही बढ़िया मुकाम हासिल किया। उसके साथ साथ जब 1998 में ये फिल्म हिट हुई, वैसे उस जमाने में काजोल और शाहरुख खान की जो जोड़ी थी वो लोगों के दिलों में, यानी ऑडियंसेस के दिलों में बहुत ज़्यादा बस चुकी थी। और उसके साथ उन्होंने अगली फिल्म की, कभी खुशी कभी गम, जो कि एक फैमिली ड्रामा मूवी रही। वैसे ये फिल्म आई थी 2001 में और इस फिल्म में भी कई सारे ऐसे महान कलाकार, दिग्गज कलाकार इसमें नजर आए थे। द एवरग्रीन जोड़ी जया बच्चन और अमिताभ बच्चन साहब की। और इस फिल्म में करीना कपूर और ऋतिक रोशन को भी पैरअप किया गया था। और इस फैमिली ड्रामा ने भी 90s के साथ साथ 2000 में जैसे ही कदम रखा, 2001 में कभी खुशी कभी गम ने भी एक बहुत ही बड़ा तहलका मचाया था। और इस फिल्म को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ना, K3G।

0: भाई बिल्कुल ऐसे ही फैमिली ड्रामा मूवी के साथ आगे बढ़ते चले गए के जो, और भाई कहते हैं ना कि समाज में होने वाली ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जिन्होंने ऐसी ही फिल्मों के द्वारा बस हमें दर्शाया, और उसके साथ साथ बिल्कुल आज हम मुलाकात आपकी करवा रहे हैं करण जौहर के साथ।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: भाई जैसे K3G आई 2001 में, फिर उन्होंने एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा प्रस्तुत करने की कोशिश की 2006 में कभी अलविदा ना कहना अगेन, ये भी एक मल्टी स्टारर मूवी रही जिसमें नजर आए थे किरण खेर, अमिताभ जी, अभिषेक बच्चन, प्रीति जिंटा, साथ ही साथ नजर आई थी रानी मुखर्जी एंड अगेन शाहरुख खान। और जैसे K3G बहुत ही बड़ी कमर्शियल सक्सेस रही, वैसे ही कभी अलविदा ना कहना भी काफी ओवरसीज मार्केट्स में और साथ ही साथ डोमेस्टिक मार्केट्स में भी उन्होंने बहुत काम नाम कमाया। कभी अलविदा ना कहना, और बिल्कुल हम इस फिल्म का गाना भी थोड़ी ही देर में चलाएंगे, और साथ ही साथ 2010 में आई मूवी माय नेम इज खान, इस फिल्म ने भी सेकेंड फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर करण जौहर को प्राप्त करवाया। साथ ही साथ जौहर ने 2018 में स्पाई थ्रिलर मूवी राजी और बायोपिक शेरशाह को भी प्रोड्यूस किया। चलिए आगे बढ़ने से पहले कभी अलविदा ना कहना

वैसे यहाँ आपके प्यार भरे मैसेजेस आते रहे हैं, डेडिकेशन टाइम तो नहीं है पर यहाँ पर जन्मदिन मना रही हैं उषा गिरधारी, गिरधर माफ कीजिएगा उषा गिरधर जो है ब्रह्मस्थान से, आपके पति राज, बेटे कुशल और आकाश की ओर से बहुत सारा प्यार। यहाँ पर सीनियर सिटीजन और शिव मंदिर में मनाया जा रहा है पेरेंट्स डे ऑन 30th ऑफ सैटरडे वकवा में। चलिए लचम परिवार, लचम सी गोबिन की ओर से सभी सीनियर सिटीजन्स को ढेर सारी बधाइयाँ।

भाई कहते हैं ना, कुछ फिल्में कुछ गाने इसीलिए बहुत खास हो जाते हैं क्योंकि गाने बहुत हटकर। और ऐसी ही फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना। भाई कहते हैं ना, इस फिल्म की कहानी भी काफी हटकर रही। वैसे एग्जाम्पल तो नहीं दे सकते, ऐसे हम सेट नहीं कर सकते, बट एनीवेज फिल्म तो फिल्म होती है। कई बार होती है ना कि फिल्में जो बनती हैं वो कई बार हमारे समाज में चलने वाली समस्याओं का ही एक प्रतिबिंब होता है और इसीलिए उसे दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है बड़े पर्दे पर। पर कई बार कुछ फिल्मों से लोग एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि ये हमारे मन पर बहुत ज्यादा गहरा छाप छोड़ती हैं। चलिए इसी के साथ, शेरशाह फिल्म के लिए भी उनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था और स्पेशल जूरी ने भी इस फिल्म को बहुत ही पसंद किया था। स्पेशल जूरी का अवार्ड भी इस फिल्म को प्राप्त हुआ था। और धीरे धीरे करते हुए कई सारी ऐसी फिल्में हैं, जैसे माय नेम इज़ खान, जैसे हमने आपको बताया 2010 में ये फिल्म आई थी। हालांकि ये फिल्म भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज थी एक पर्टिकुलर समुदाय को लेकर, जहां पर आतंकी हमला हुआ था अमेरिका में और जिसके कारण एक पर्टिकुलर समुदाय के ऊपर बहुत ज़्यादा लांछन लगाया गया था। बट इस फिल्म को भी लोगों ने बेहद पसंद किया और इस फिल्म में भी किंग खान नज़र आए थे। और हम ये भी कह सकते हैं कि करण जौहर और शाहरुख खान की जो जोड़ी रही वो काफ़ी लंबे समय तक की ये दोस्ती, और उन्होंने कई सारी फिल्मों के साथ अवार्ड्स भी प्राप्त किए। तो चलिए इसी फिल्म का एक बहुत ही मशहूर सा गाना आपको सुनाते हैं।

0: और उस फिल्म में आलिया भट्ट नजर आई थी विक्की कौशल के साथ। बहुत ही लाजवाब मूवी रही और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज। ऐसे कई सारी फिल्में जैसे उन्होंने कास्ट किया था आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को लगन की फैंटेसी फिल्म ब्रह्मास्त्र में पार्ट वन शिवा 2022 में, और इस फिल्म ने भी नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म AVGC अवार्ड जीता था। बिल्कुल बहुत ही लाजवाब मूवीज की बातें हम कर रहे हैं आज।
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
0: और जब हम शेरशाह फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म शेरशाह में नजर आए थे सिद्धार्थ मल्होत्रा क्यारा आडवाणी के साथ। एक कुछ जोड़ियां जो पर्दे पर बनी आगे चलकर यही जोड़ियां रियल लाइफ की जोड़ियां बन गई।

भाई कहते हैं ना, जोड़ियां तो ऊपर आसमान में बनती है, पर कुछ जोड़ियां जो बड़े पर्दे पर लोगों को नजर आई, वो जोड़ियां बनाई गई थी करण जौहर के द्वारा। और क्या पता था कि आगे जाकर यही बनेंगी रियल लाइफ जोड़ियां। और आज की कहानी है करण जौहर की कहानी। जी हाँ, ब्रह्मास्त्र का ये गीत हमने अभी भी चलाया और अरिजीत सिंह की प्यारी सी मखमली सी आवाज का भाई क्या कहना। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते चले, 2023 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को डायरेक्ट किया जो थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। जितना लंबा नाम भाई लाजवाब उतनी ही ये कहानी थी। और इस फिल्म ने भी उन्हें एक और नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट।

साथ ही साथ 2022 माफ कीजिएगा 2025 में आई एक उनकी प्रोड्यूसर ड्रामा होमबाउंड, और ये भी इंडियन एंट्री फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म एट 98th एकेडमिक अवार्ड के लिए नाम इसका शॉर्टलिस्ट हुआ था। और इतना ही नहीं, फिल्म मेकर्स के साथ साथ जौहर की जब हम बात करते हैं तो उनका जो टीवी शो है कॉफी विथ करण, इसे भी काफी सारे लोगों ने सराहा। साथ ही साथ के जो का कॉम्पिटिशन रियलिटी शो झलक दिखला जा, इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शोज को भी उन्होंने जज किया, और ऐसे लाजवाब शोज के साथ ही भाई उन्होंने बहुत मेहनत करके नाम कमाया। चलिए आज के इस कार्यक्रम को इसी पर हम समाप्त करेंगे। साखरी गीत के साथ श्रेया घोषाल की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना है फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और इसी गीत के साथ आज का ये प्रोग्राम यहीं पर, ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त होता है। इसके साथ हम जुड़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम जो किरण जानकी की प्रस्तुति में रहता है, और भोजपुरी गीत का आनंद उठाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: SMS मिलते रहेंगे यूं ही और आपको याद दिलाते चले। जी हाँ, इस वक्त 8:51 हो चुके हैं, समय हो चला है हमारे अगले सेगमेंट के साथ जुड़ने का, हमारी धरोहर। वैसे भोजपुरी गीत का आनंद उठाएंगे तुरंत उसके बाद 9 के समाचारों के बाद जुड़ेंगे, 9 बिल्कुल समाचारों के साथ, और 9 के बाद आज की चर्चा का कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत करेंगी सुमिता सरकार। आप ज़रूर उनका साथ दीजिएगा, इसका सीधा प्रसारण होगा रेडियो मॉरिशस के लहरों पर, साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर आप इसे देख पाएंगे और फॉलो कर पाएंगे। रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर इसी कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा 3 से 4 के बीच रेडियो मनोरंजन पर, तो बिल्कुल साथ दीजिएगा हमारा। और वैसे हमारी और आपकी मुलाकात होगी अब 10 के समाचारों के बाद, तब तक के लिए बस साथ दीजिएगा हमारा। चलिए जुड़ते हैं किरण जानकी के साथ हमारी धरोहर कार्यक्रम में।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने जो विषय पर बतियाब जा वो है कल्चरल इंडस्ट्रीज, सांस्कृतिक उद्योग और 2005 यूनेस्को कन्वेंशन जेकर शीर्षक है कन्वेंशन ऑन द प्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशंस, यानी कि संक्षेप में सांस्कृतिक समृद्धि के हिफाजत और बढ़ावा। मॉरिशस आज से 10 बरिस आगे 2006 में इस संधि पर हस्ताक्षर कर ले रहा और तब से नियमित रूप से हमने के देश कितने पॉलिसी कितने नीति अपने लेबा कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज यानी सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योग के दिशा में, और मॉरिशस के सरकार इस दिशा में काफ़ी कार्य कर लेबा करते आवता। नेशनल आर्ट्स फंड रहल, फिर एकर जो अलग अलग रूप बाव के स्थापित कर गल, और फिर एकर अंतर्गत कितने जो हमने के क्रिएटिव इंडस्ट्रीज बा, फिल्म बनावे के जो उद्योग बा, उस सब के बढ़ावा देवल गल। गीत गवाई और सेगा जैसन जो अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक धरोहर बा ओके बढ़ावा देवे पर कितने कार्य चल ले आवता, और फिर ई सब जोन संस्कृति बा, ई सब जोन सांस्कृतिक समृद्धि बा, एकर अभिव्यक्ति बा, एके भी अंजाम देवे खातिर हमनी के देश में कितने सांस्कृतिक केंद्र ओकर साथ साथ कितने स्पीकिंग यूनियंस स्थापित कर गल बा, और एकर सब के एक ही मकसद है ई सांस्कृतिक समृद्धि के हिफाजत करे के और एके बढ़ावा देवे के। ई जन कन्वेंशन बा एकर पर सही करला के बाद मॉरिशस एक कटिबद्धता ले ले बा कि वो अपन जोन सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योग बा ओकर जरिए सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में अपन सहयोग दे। और आप सोचत हुई बा कि कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज आखिर हा का चीज, एकर में संस्कृति आवेला, संस्कृति के साथ साथ जन सृजनात्मक उद्योग बा ओकर में बा थिएटर मतलब कि नाटक, फिर विजुअल आर्ट्स और सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत, जोन प्रकाशन होला उद्योग बा, पब्लिशिंग बिजनेस, फिर कंप्यूटर गेम्स, न्यूज़ मीडिया, फैशन और मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, ये सब एकर अंतर्गत आवेला। कल्चरल इंडस्ट्री सांस्कृतिक उद्योग एगो देश के जोन जनता बा ओकर जोन समाज बा ओकर मुताबिक अपन ई उद्योग के चलावेला, और एकर अंतर्गत आवेला मॉरिशस के जब बात करब जा तब पर्यटन सबसे पहला, कल्चरल टूरिज्म ऐतिहासिक साइट और म्यूजियम के आधार पर ई उद्योग चलेला। एकर में अब परब और त्योहार भी आवेला, सांस्कृतिक गतिविधि भी एकर में शामिल बा। फिर बा साहित्यिक रचना और मैगजीन्स के प्रकाशन, जैसे आप देखत हुई बा जनते हुई बा कि महात्मा गांधी संस्थान कितने ऐसन मैगजीन के नियमित रूप से प्रकाशन करेला जेकर में रिमझिम बा, वसंत बा, तो ये सब ई क्रिएटिव इंडस्ट्री के तहत आवेला। फिर बा फाइन आर्ट जैसे पेंटिंग, चित्रकारी, फिल्म, नृत्य और जेके परफॉर्मिंग आर्ट्स बोली राजा। फिर बा कॉमर्शियल आर्ट जैसे कि एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइन, मार्केटिंग, फिर मनोरंजन, और एकर बाद बा आर्टिजाना क्राफ्ट, और फिर खाना जो उनकी परंपरागत तरीके से बनावल जला। आजकल आप देखत हुई बा कि हर जगह ऐसन खाना के बढ़ावा देवल जला, बल्कि रेस्तरां के भी नाम लकाज मामा या फिर ऐसन ऐसन नाम देवल जला जोन की आपके नानी दादी के समय के खाना के चर्चा करेला। इस सांस्कृतिक उद्योग दुनिया भर के सबसे तेजी से बढ़े वाला क्षेत्र में से एगो है। ई सेक्टर हर बरिस सकब्जा बोले 2250 बिलियन USD के आमदनी आनेला, और एकर में दुनिया भर में 15 से 29 के बीच के उम्र होला लगभग 30 मिलियन रोजगार पैदा करेला। ई जोन संधि बा, ई जोन कन्वेंशन बा, दुनिया भर में गरीबी के मिटावे में एगो बहुत महत्वपूर्ण भूमि

0: Nasty. North, South.
1: kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस. रेडियो मॉरिशस.
2: घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं. समाचारों को लेकर आस्था आ चुकी है. आस्था, आपका स्वागत है.
3: धन्यवाद जी. हाँ नमस्कार. 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का. आज मंगलवार को राज्यसभा की बैठक लगने वाली है. प्रधानमंत्री से कुल 22 सवाल पूछे जाने वाले हैं. सार्वजनिक ऊर्जा, स्वास्थ्य सेक्टर, कानून व्यवस्था, सड़क सुरक्षा और सिल्वर बैंक जैसे अहम मुद्दे आज की कार्रवाई के केंद्र में रहने वाले हैं. वहीं देश की 5 नगर पालिकाओं में नई मेयर और डिप्टी मेयर ने जिम्मेदारी संभाल ली है. कल से पोटली में पहली बार राजधानी की कमान 2 महिलाओं के हाथों में सौंपी जाएगी. क्रिस्टेल पोंदो नई लोर्ड मेयर चुनी गई हैं, जबकि महजबीन करमताली उनकी डेप्यूटी होंगी. जबकि वाक्वा फिनिक्स में अली हुसैन अब्दुल कादिर नए मेयर बने हैं और क्यूपिप में ताशियाना लचमाना पीले को मेयर चुना गया है. काट्रोबोन की बात करें तो सुबेराज गंगा पिसुन नए मेयर होंगे और इंदिरा देवी कायाला डिप्टी मेयर का पद अब से संभालेंगी. उधर बजट पेश किए जाने से पहले कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस यानी CITU ने बढ़ती महंगाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और कृषि भूमि में कमी को लेकर बेहद चिंता जताई है. यूनियन ने ज़्यादा सामाजिक और न्याय संगत बजट की मांग की है. इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर द्वारा आपदा राहत उपकरणों का वितरण हाल में किया गया, जिसका उद्देश्य आपको बता दें तूफान, बाढ़ और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए मॉरिशस की तैयारी को और मजबूत बनाना है. और हज से जुड़ी बड़ी खबर, आज यौम अरफात मनाया जा रहा है. हज के सबसे अहम दिनों में से एक माने जाने वाली इस दिन लाखों हज यात्री अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में शामिल होंगे. माना जाता है कि इसी मुकाम पर हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी उम्मत की आखिरी पैगाम दी थी. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमरीकी सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी ईरान में हवाई हमले किए हैं. इन हमलों में मिसाइल ठिकानों और कुछ नौकाओं को निशाना बनाया गया. हालांकि ईरान की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. तो हमारी ओर से ये थी अब तक की खबरें. हमें आगे दीजिए. नमस्कार.

0: आज की चर्चा।
1: मंगलवार 26 मई आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। आपको बता दें आज की चर्चा जो कार्यक्रम है इस समय आप लाइव इसे सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसे आप देख पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर और इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर। आपको ये भी याद दिला दें ये जो प्रोग्राम है इसका रीब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही सपहर के 4 बजे से MBC के चैनल 3 पर। तो आइए आज की चर्चा इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं। और आज जो आज की चर्चा कार्यक्रम है ये पॉलिटेक्निक्स के सौजन्य से चलाया जा रहा है। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा अपने आप में एक ऐसा फाउंडेशन है, एक ऐसी नींव है जो आने वाले कल के लिए हर एक स्टूडेंट्स को तैयार करती है। और हमारे जो स्टूडेंट्स से कहते हैं हमारे देश का भविष्य होते हैं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हर तरीके से हर एक संस्था जो होती है, खासकर जो शिक्षा से जुड़ी होती है, वो अपना योगदान देती है। तो आज हमारे बीच पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस से उपस्थित है मिसेस संजना तोताराम, जो एक्ट

0: एक्टिंग प्रोग्राम लीडर है साथ ही बीट क्लस्टर। तो मिसेस संजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: और हमारे साथ मिसेस आरती राय खेदनी जी भी जुड़ी है जो स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिसर है। आपका भी स्वागत है आरती जी। और आज के इस प्रोग्राम में खासकर पॉलिटेक्निक्स के जो कोर्सेज है नर्सिंग और इंजीनियरिंग पर हमारा जो है फोकस रहने वाला है। लेकिन उससे पहले जो है हम हमारे दोनों मेहमानों से थोड़ा सा जानना चाहेंगे पॉलिटेक्निक्स के बारे में, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से कोर्सेज जो है आप लोग प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा सा जानकारी इस पर दीजिए।
2: ज़रूर। धन्यवाद सुचिता जी आज हमें मौका देने के लिए टू कम एंड टॉक अबाउट पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस और कोर्सेज की जानकारी देने के लिए। तो सबसे पहले बात करें तो पॉलिटेक्निक्स का निर्माण 2017 में हुआ था। और हमने जब ये पॉलिटेक्निक स्टार्ट किया था उस समय फर्स्ट क्लस्टर जो बोलेंगे वो नर्सिंग था। और उसमें 72 स्टूडेंट्स से हमारा स्टार्ट हुआ था। और आज के डेट में काफ़ी वो संख्या बढ़ चुकी है। और इसके अलावा हमारे पास अभी कोर्सेज में की बात करें तो नर्सिंग के अलावा हमारे पास आईटी में कोर्सेज है, देन इंजीनियरिंग में है जिसके बारे में मेरी कलीग बात करने वाली है आगे जाकर, और वी आल्सो हैव टूरिज्म, बिजनेस एंड फाइनेंस, और उसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स जो कि सॉफ्ट स्किल्स और लैंग्वेज क्लस्टर से जाना जाता है। तो ऐसे हुआ। और फिर कैंपसेस की बात करें तो हम मॉरिशस में चारों तरफ हमारे कैंपसेस हैं, लाइक नर्सिंग और बेल्ट नॉर्मली पॉम्पलेमूस में उपस्थित है, और इबेन रिजवी में हमारे आईटी और फाइनेंस क्लस्टर्स हैं, एंड टूरिज्म बिकॉज हर एक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए हर एक कैंपस डेडिकेटेड है। तो हाँ, और इसके अलावा रॉड्रिक्स में भी हम उपस्थित हैं।
0: ओके संजना जी, अगर थोड़ा सा इन जानकारी आप जोड़ना चाहे पॉलिटेक्निक्स के बारे में।
1: हाँ, तो पॉलिटेक्निक्स हमारी जो एक एजुकेशनल संस्था है
0: जी।
1: वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ टर्शियरी ऑफ एजुकेशन साइंस एंड रिसर्च के संरक्षण के नीचे है
0: जी।
1: और वो जो टीवेट एजुकेशन को प्रोत्साहित करता है, विल से बेटर हायर टीवेट, जो तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र कहते हैं, इसको प्रोत्साहित करता है।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि हमने हमारे श्रोता और दर्शकों के बताया कि आज जो पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस के जो कोर्सेज है खासकर हमारा जो फोकस है वो नर्सिंग और इंजीनियरिंग पर रहेगा। और नर्सिंग की बात करें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र से ये जुड़ा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर है, और ये एक ऐसा सेक्टर है जो काफ़ी इन डिमांड है। बहुत से लोग जो है नर्सिंग से जुड़ते हैं इन द लॉन्ग रन अपने करियर को और भी बेहतर बनाने के लिए। और चलिए आपसे हम जानना चाहेंगे कि नर्सिंग आज मॉरिशस में एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर क्यों है।
2: आप देखो तो नर्सिंग आज के डेट में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया है। स्पेशली हम आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं, ये चर्चाएं होती हैं कि मॉरिशस में एजिंग पॉपुलेशन का इशू है। इट इज़ नॉट एन इशू बट ये हर एक कंट्री एक फैक्ट है। तो ऑब्वियसली एजिंग पॉपुलेशन होगा तो उसका देखभाल करने के लिए वी विल नीड पीपल। तो इसमें नर्सिंग एक अहम भूमिका निभाती है। जो भी हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स, नर्सिंग ऑफिसर्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। और इसके अलावा ना ही सिर्फ एजिंग पॉपुलेशन और मरीज़ों की देखभाल करने के लिए, बल्कि हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स और हेल्थ केयर असिस्टेंट्स प्राइवेट क्लिनिक्स और इवन पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी काफ़ी योगदान देते हैं।
0: जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और नर्सिंग की अगर हम बात करें तो नर्सेस जो है सिर्फ हॉस्पिटल, क्लिनिक, हेल्थ सेंटर्स तक सीमित नहीं है। आजकल नर्सेस की ज़रूरत तो लोग घर पर भी, जो लोग बीमार रहते हैं उनको भी जो है देखने के लिए लोगों की आवश्यकता पड़ती है, खासकर जो ट्रेंड और प्रोफेशनल नर्सेज होते हैं। क्योंकि कभी कभार आपने कहा जैसे कि एजिंग पॉपुलेशन है तो घर पर कोई वृद्ध है, कोई एल्डरली पर्सन है, कोई बीमार है, और अगर बाकी घर के लोग काम कर रहे हैं तो कोई चाहिए आपको ऐसे लोगों को देखरेख करने के लिए। तो ऐसे में नर्सिंग अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो क्राइटेरिया की अगर हम

0: बात करें तो अगर कोई व्यक्ति कोई स्टूडेंट जो है नर्सिंग के लिए जुड़ना चाहता है तो क्या बेसिक क्राइटेरिया है और किस तरह के जो है उसका बेसिक एजुकेशन होना चाहिए, तो थोड़ा सा इस पर जानकारी दें हमें।
1: ज़रूर। तो बेसिकली एससी लेवल जो हम स्कूल सर्टिफिकेट बोलते हैं उसमें हम कोर्सेस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो पहले मैं बात करना चाहूँगी हेल्थ केयर असिस्टिंग के बारे में। तो जिसमें नॉर्मल क्राइटेरिया होता है 3 credits एंड 2 pass या फिर 1 credit 5 pass। ओके। और फिर यही हेल्थ केयर असिस्टेंट जब हम करियर पाथवे भी है एक हमारे पास, जैसे हेल्थ केयर असिस्टिंग अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर वो छात्र डिप्लोमा इन नर्सिंग के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो लाइक दिस दे कैन प्रॉस्पर। और डिप्लोमा इन नर्सिंग की बात करें तो मिनिमम क्राइटेरिया 5 credits होना चाहिए, इंक्लूडिंग 1 science subject फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर मैथ्स भी चलेगा। और इसके अलावा इवन आउटसाइड लाइक कोई ऐसे छात्र है जो जिनके पास हेल्थ केयर असिस्टिंग लेवल 4 certificate ऑलरेडी है तो फिर वो डिप्लोमा इन नर्सिंग के लिए भी एनरोल कर सकते हैं।
0: ओके। अगर हम नर्सिंग के कोर्सेज की बात करें तो सिर्फ नर्सिंग एज अ कोर्स आप प्रोवाइड करते हैं या उसके अलग अलग ये है स्टेप्स है या अलग अलग, मतलब कि जैसे आपने कहा कि हेल्थ केयर असिस्टेंट है तो इस तरह के किस कौन कौन से लेवल्स हैं?
1: तो हमारे पास लेवल 4 है जो स्टार्ट करते हैं लेवल 4 से और उसके बाद फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड देन वी आल्सो हैव स्पेशलाइज कोर्सेज जैसे डिप्लोमा इन कार्डियक केयर नर्सिंग। अभी एक बैच ऑलरेडी चल रहा है विच इज़ इन कोलैबोरेशन विद कार्डियक ट्रस्ट और हम दूसरा बैच भी जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। और उसके अलावा बैचलर टॉपअप भी अवेलेबल है। तो बैचलर टॉपअप जो कि बेसिक नर्सिंग होता है
0: जी।
1: तो ये स्पेशलाइज कोर्सेज के लिए छात्रों को जनरल नर्सिंग करना पहले ज़रूरी है ताकि टू हैव लाइक नॉलेज इन ऑल द फील्ड एंड देन दे कैन प्रोसीड विद स्पेशलाइज कोर्सेज।
0: तो जितने भी आपने कोर्सेज की बात की अगर आप एक एक करके बता पाए हमें कि उन कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या है, उनका जो है कितने दिनों तक चलता है या कब तक चलता है, किस तरह से जो है ये प्रोसीजर होता है।
1: सो हेल्थ केयर असिस्टिंग की बात करें तो 1 साल इसका ड्यूरेशन है।
0: ओके। शुरू करते हैं वो लोग हेल्थ केयर असिस्टिंग से
1: या
0: ओके।
1: और फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग का ड्यूरेशन होता है 3 साल।
0: ओके।
1: और बाकी सारे स्पेशलाइज कोर्सेज जैसे कार्डियक केयर या फिर मेंटल हेल्थ मिडवाइफरी ये सब 1 से 1.5 साल का ड्यूरेशन होता है।
0: ओके। उसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो जितने भी कोर्सेज आप नर्सिंग इस सेक्टर से रिलेटेड देती है तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद उनके करियर ऑप्शंस कैसे होते हैं, किस तरह से जो है उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है या फिर जो है जाकर उन्हें काम करने का मौका या इंटर्नशिप जैसे हम कह सकते हैं ना कि हर कोर्स के बाद लोगों को जाकर काम करने का एक अवसर दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है ताकि अपने स्किल्स को वो एनहांस कर पाए, तो किस तरह से जो है आप लोग उन्हें ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं?
1: ओके। बात करें पॉलिटेक्निक्स में ओवरऑल हमारे सारे कोर्सेज, आई थिंक हमारे पहले वाले कार्यक्रम में भी हमारे ऑफिसर इंचार्ज और सिप्टी मैनेजर जब आए थे उन लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और ख़ास करके अगर आप नर्सिंग की बात करें सुजिता जी तो क्या है कि इसमें जब तक प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा बच्चे सीख नहीं पाएंगे। क्योंकि थियोरी में आप सीख सकते हैं कि कैसे ब्लड निकालना है, ब्लड सैंपल्स लेना है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक आप जाके लाइव पेशेंट्स पे ना निकालो तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो ये इस पे हम काफ़ी ध्यान देते हैं। तो जैसे कोई भी करिकुलम जब डेवलप होता है स्पेशली अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा इन नर्सिंग की तो डिप्लोमा इन नर्सिंग में ऐसे डिज़ाइन किया गया है वो करिकुलम कि छात्र हमारे कैंपस में रहते हैं 3 महीने फिर 3 महीने प्लेसमेंट करते हैं। दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल आई एम गिविंग। और इसके अलावा हमारे पास स्किल्स लैब है सिमुलेशन रूम्स जो कि हू बहू एक हॉस्पिटल की तरह होता है, एक डेमो रूम आप बोलो तो जिसमें CPR कैसे करते हैं, ब्लड मॉनिटर लाइक ब्लड प्रेशर मॉनिटर कैसे करते,

0: देखते हैं, और फिर जब वो प्लेसमेंट पे जाते हैं तो प्लेसमेंट सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं, एक तो वो रीजनल हॉस्पिटल में जाते ही जाते हैं, उसके अलावा दे ऑल्सो गो इन लाइक स्पेशलाइज यूनिट्स, जैसे हम कैंसर हॉस्पिटल हो गया, आई हॉस्पिटल हो गया, ENT हो गया, या इवन ब्रॉन्सिक्वा सो फॉर मेंटल हेल्थ. तो बाय द टाइम दे कंप्लीट दे आर लाइक दे हैव डन एवरीथिंग इन जनरल,
1: फुली ट्रेन प्रोफेशनल बन जाते हैं.
0: एग्जैक्टली. और फिर इसके बाद अभी मैं एक आपको आंकड़ा देना चाहूँगी, जैसे अभी तक पॉलिटेक्निक्स ने लगभग 500 नर्सेस, डिप्लोमा इन नर्सिंग और नेशनल डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं. तो ये सारे छात्र या तो किसी प्राइवेट क्लिनिक में, कुछ है जो पब्लिक हॉस्पिटल्स में, या कुछ ऐसे हैं जो बाहर भी जा चुके हैं. तो अपॉर्चुनिटीज़ ना ही सिर्फ मॉरिशस में है बट ये बाहर भी है.
1: Exactly.
0: और इसके अलावा उनके पास ऑप्शन होता है, या तो वो बिकॉज पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता, जितना आप पढ़ाई करो. ये हम अक्सर जब काउंसलिंग सेशंस लेते हैं स्टूडेंट्स के साथ, हम उनको अक्सर समझाते हैं कि जितना आप पढ़ाई करोगे उतना आपके करियर में वो ऐड होगा. तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ बच्चे जैसे वो जैसे जॉब करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं वापस कोई स्पेशलाइज कोर्स कर लेते हैं अपग्रेड करने के लिए. या तो ये है अपॉर्चुनिटी.
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आरती जी इन सभी जानकारियों के लिए. अब हम आते हैं संजना जी की ओर, जो एक्टिंग प्रोग्राम लीडर है बिल्ट क्लस्टर, इज इट? सो चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो ये बिल्ट क्लस्टर क्या है, और आपने कहा कि आप इंजीनियरिंग पर जानकारी देना चाहेंगी, तो थोड़ा सा बताएं कि पॉलिटेक्निक्स इंजीनियरिंग के सेक्टर में किस तरह से अपना योगदान दे रहा है.
2: जी सुमिता जी, ये बिल्ट का मतलब है बिल्ट एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट क्लस्टर.
1: ओके.
2: सो ये सब साथ में मिलाकर इंजीनियरिंग, प्रीवियसली इट वाज नोन एज इंजीनियरिंग क्लस्टर, बट देन वी मूव बिकॉज वी हैव निश प्रोग्राम्स व्हाट वी आर डेवलपिंग. सो बिल्ट क्लस्टर के अंतर्गत स्पेशलाइज्ड विशेषीकृत कार्यक्रम उपलब्ध है, जैसे कि आर्किटेक्चर, लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग के से जुड़ी क्षेत्र जैसे एविएशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्लाइमेट चेंज और साइट सर्वेइंग. ये हमारे प्रोग्राम्स है और भी है जो आने वाले हैं.
1: ओके.
2: जैसे कि समुद्र क्षेत्र के मैरिटाइम सेक्टर में आने वाला है जो अभी डेवलप हो रहा है.
1: ओके.
2: हाँ, और हमारे जो प्रोग्राम है वो सर्टिफिकेट लेवल पे है, डिप्लोमा लेवल पे है, और इसके बाद स्टूडेंट्स दे कैन प्रोग्रेस टू टॉप अप डिग्रीज एज वेल इन अदर यूनिवर्सिटीज और इवन लोकली और इंटरनेशनली.
1: ओके. तो जैसे आपने कहा कि अगर हम बेल्ट क्लस्टर की बात करें, ये इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर और लॉजिस्टिक्स से जुड़ा हुआ है, और जिन भी कोर्सेज के आपने नाम दिए, हम चाहेंगे थोड़ा थोड़ा डिटेल्स आप उन कोर्सेज के बारे में बताएं.
2: हाँ.
1: कि उनके जो है रिक्वायरमेंट्स क्या है, एनरोल होने का तरीका क्या है, और कौन से स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल है इसके लिए.
2: जैसे कि मेरी कलीग आरती ने बताया, हमारे एंट्री रिक्वायरमेंट्स मोस्टली दे आर फ्रॉम SC स्टूडेंट्स, एंड दे शुड बी हैविंग लाइक either free credits or 5 credits depending on the program that they are they wish to enroll in.
1: Okay.
2: Like if I'll take for the aviation, it is like 5 credits in, and you have specific criteria for certain programs.
1: Okay.
2: Where you have mathematics and physics which are required as among the credits.
1: Okay.
2: And then certificate के लिए free passes at SC level, और जो students diploma के लिए eligible नहीं है वो लोग हमारे certificate program में enroll होकर complete करके 1 year, duration is 1 year, फिर वो लोग they can embark on the diploma programs.
1: Okay. यानी कि जो भी student है अगर वो कुछ criteria की कमी है
2: तो
1: कहीं ना कहीं कोई ना कोई foundation course आपके पास available है जिसमें वो enroll होकर अपने आप को जो है उस level तक ला सकते हैं, ताकि वो आगे के courses में enroll
2: हो पाए. हाँ.
1: कुछ और जानकारी देना चाहेंगे आप इन सभी courses के बारे में जो आप हमें बता रहे हैं?
2: वैसे तो ये प्रोग्राम, ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्राम्स आर द through the FTEST, the free tertiary education.

0: education scheme. But then there are also programs which are not under FTES, like for the aviation one.
1: जी.
0: It is not under FTES, it is payable.
1: Okay.
0: Yeah.
1: चलिए हम हमारे सभी श्रोता और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज जो पॉलिटेक्निक्स के द्वारा जो है ये कार्यक्रम उनके सौजन्य से चलाया जा रहा है और ख़ासकर आज हम नर्सिंग और इंजीनियरिंग इस कोर्स पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भी इसके बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें बेशक 4028085 पर कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए एक गाने के साथ प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं।

0: आज की चर्चा।
1: चलिए आज की चर्चा प्रोग्राम एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज शिक्षा से जुड़े इस विषय को लेकर हम आए हैं। पॉलिटेक्निक्स के अलग अलग कोर्सेज पर हम चर्चा कर रहे हैं और खासकर हमारा आज का जो फोकस है वो है इनके द्वारा दी जा रहे नर्सिंग और इंजीनियरिंग प्रोग्राम पर हमारा जो है फोकस है। और अब हमारा जो अगला सवाल है वो मिसेज संजना तुताराम जी आपसे है, खासकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जो है आप हमें ज़्यादा जानकारी दे रही है, किस तरह के कोर्सेज जो है पॉलिटेक्निक्स प्रोवाइड करता है। तो जितने भी कोर्सेज ये प्रोग्राम्स की आपने बात की है, तो ये प्रोग्राम मॉरिशस के इंडस्ट्री के नीड से, ज़रूरतों से किस तरह से कनेक्टेड है, किस तरह से लिंक्ड है? क्योंकि अगर एक बच्चा आपकी ओर आ रहा है, एक स्टूडेंट आ रहा है किसी कोर्स से रिलेटेड, तो ऑब्वियसली वो ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखेगा ना कि कल को वो इस कोर्स को पूरा करेगा तो उसके सामने किस तरह के जो है अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, वो करियर में किस तरह से आगे जा सकता है।
2: हाँ तो सुमिता जी, पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस का ढांचा जो मॉडल कहते हैं पूरी तरह से उद्योग संचालित, इंडस्ट्री ड्रिवन है। इस संस्था को इस उद्देश्य से आकृत किया गया है कि शिक्षा और लेबर मार्केट के बीच के जो स्किल्स गैप है उसको ब्रिज किया जा सके
1: जी।
2: और हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, जो उद्योग के भागीदार, वो लोग हमारे साथ वेरी क्लोजली काम करते हैं। जैसे कि प्रोग्राम डिज़ाइन से लेकर डिलीवरी और असेसमेंट तक और वे लोग शामिल होते हैं। इसलिए पाठ्यक्रम सिर्फ वर्तमान के ज़रूरतें नहीं बल्कि मॉरिशस के आने वाली आर्थिक क्षेत्रों को भी टारगेट करता है
1: जी। और बहुत ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा कहीं ना कहीं फ्यूचर से रिलेटेड होता है। और ऐसे सेक्टर्स आजकल तो बहुत सारे नए नए सेक्टर्स भी जो है आ रहे हैं, नए नए फील्ड्स में भी जो है बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, इन सभी प्रोग्रामों के बारे में जानना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं। और आपने जिन जिन इंडस्ट्रीज़ की बात की, आजकल ये एक एमर्जिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर हर कोई जो है अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। तो आपके जो लर्निंग पैटर्न्स है वो ज़्यादातर क्लासरूम बेस्ड होते हैं या प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, किस तरह से आप जो है इस पर कार्य करती हैं?
2: बहुत सही प्रश्न किया आपने स्मिता जी। यहाँ हमारे लर्निंग मॉडल जो है वो मेनली प्रैक्टिस बेस्ड है।
1: ओके
2: ओके, यानी लर्निंग बाय डूइंग।
1: ओके
2: ओके, सो स्टूडेंट्स को केवल क्लासरूम की थ्योरी नहीं लेकिन स्किल्स लैबोरेटरीज, जैसे कि मेरे कोलीग ने बोला, हमारे स्किल्स लैबोरेटरीज है, वर्कशॉप्स है, इंडस्ट्री प्लेसमेंट्स है, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स है और बहुत सारे ऐसे माध्यम है, और वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन दिस फील्ड, बिकॉज ये इनके जरिए ये रियल प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स
1: जी। और ये आज के अभी के समय में बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपने भी कहा आरती जी, कि सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, प्रैक्टिकल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप किताबों से जितना भी पढ़ ले, जब तक उसे प्रैक्टिकली आप जो है प्रयोग में नहीं लाएंगे तब तक आपको नहीं पता कि बच्चे ने कितना सीखा है या कितना जाना है। सो ये अपने आप में बहुत ही ज़रूरी होता है कि हैंड ऑन लर्निंग भी जो है ज़रूरी है। और ग्रेजुएट्स के लिए किस किस तरह के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है आप प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि एक बच्चे ने अगर एक स्टूडेंट ने अगर एक कोर्स पूरा कर लिया है तो उसके बाद क्या?
2: हाँ, पॉलिटेक्निक्स के ग्रेजुएट्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज अपने अपने क्षेत्रों में बहुत मजबूत है। लगभग 98% ग्रेजुएशन से छात्र ग्रेजुएशन से पहले ही एम्प्लॉयड हो जाते हैं।
1: ओके
2: और ये एक मजबूत प्रमाणित परिणाम है। You can verify. This is 98

0: percent students, Arti will be will agree with me.
1: Definitely.
0: That before the graduation, students are already taken on board for employment.
2: Yeah, because ऐसा होता है कि जब वो last year में होते हैं तो उनको internship के लिए भेजा जाता है companies में और उनके performance के level पर जो है company उन्हें already hire कर लेती है.
0: Exactly, exactly.
2: और ऐसे एक बच्चा, एक student जो है वो भी फिर अपने future को लेकर थोड़ा सा ये हो जाता है, relax हो जाता है ना. तो कई बार ऐसा होता है कि आपने graduation कर लिया, अब क्या, मतलब कि अब जाकर नौकरी ढूंढना या internship करना, कहीं part time job करना, एक hectic होता है, एक family का pressure भी होता है, peer pressure होता है. क्योंकि हर कोई चाहता है कि जैसे ही हमारे बच्चे ने एक कोर्स पूरा कर लिया है, एटलीस्ट कहीं ना कहीं उसे एक अच्छे सेक्टर में, एक अच्छे कंपनी में नौकरी मिले. तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब आप ये सारे कोर्सेज की बात करें इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो हम चाहेंगे एक एक कोर्सेज के नाम आप फिर से बताएं, ताकि जितने सुनने वाले और देखने वाले देख रहे, ताकि वो इसको जो है अच्छे से ये कर पाए कि किस तरह के कोर्सेज आप है, उन कोर्सेज के नाम और ड्यूरेशन अगर पॉसिबल हो तो.
0: हाँ, तो इंजीनियरिंग में हमारे पास डिप्लोमाज है. डिप्लोमाज में यू हैव डिप्लोमा इन सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन ऑपरेशंस. यू हैव डिप्लोमा इन पोर्ट ऑपरेशंस. यू हैव डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद रेफरेंस टू द इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड vehicles. You have diploma in engineering technology with mainly focusing on the aircraft engine maintenance. And we have also the diploma in site surveying, diploma in climate change, and we have diploma in architectural design. We have diploma in interior architecture, which is done in collaboration, interior architecture and architectural studies. These two are done in collaboration with the UCSR University, which is in Malaysia. So we have not only programs which are PML awarded, but we have also programs which are done in collaboration with partner universities abroad. And we have also certificate programs, certificate in logistics, certificate in architecture, certificate in engineering technology. These are mainly the certificate programs that we offer for in engineering cluster. और एक बात है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे, जब मैं बोल रही थी कि हमारे छात्र ग्रेजुएशन के पहले ही they are taken for jobs. So what is the reason behind this? It is that हमारे program जो है, whichever program it is, especially the diploma programs, we don't wait till the last semester to send the students on internship. They are set, the programs are, the diplomas of a duration of 3 years, certificates are 1 year, Arti ne bataya tha. And it all depends on which program we are talking about, but mostly the programs, diplomas are of a duration of 3 years. So at the end of each second semester, the students are sent on internship at Polytechnics Mauritius. It is, ye anivarya hai. They are bound to go on internship, and it is counted as a module which is evaluated and assessed. So the students are already having the feel of the job market, how it is. So year one, semester two, they go. Year two, semester four, they go for a duration of around 6 weeks. But then in third year, last semester, it is a longer duration, 6 months. And all these, we call them the internship, the work integrated learning. These are assessed, and the students are evaluated, and the employers, most of the time, I think Arti didn't mention, I want to put some light on that, that we have rapid interviews when employers come on campuses and they talk to students and they conduct rapid interviews. And they are given the opportunity, they select the students to come and do internship in their organizations.
2: Okay, thank you so much. ये सारी जानकारियों के लिए जी.
1: सर्टिफिकेट के लिए मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी.
2: जी, बिल्कुल.
1: जैसे आपने सुना होगा फाउंडेशन कोर्सेज बोलते हैं, तो जब जो छात्र अपने SCE में स्कूल सर्टिफिकेट में क्रेडिट नहीं हासिल कर पाते, हमारे टाइम लाइक अगर बात करें जब हम यूनिवर्सिटी कर रहे थे या जब हम SC और HSC कर रहे थे, ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे,
2: हमें पूरा साल जो है रिपीट करना
1: पड़ता था. एग्जैक्टली. बट आज के डेट में हम इस चीज़ को लेके थैंकफुल होना चाहेंगे, लाइक गवर्नमेंट ने हमें ये मौका दिया कि हम उन छात्रों की सहायता

0: पता कर सके। तो कुछ लोग जो एससी में क्रेडिट नहीं हासिल कर पाते उनको एचएससी करने नहीं दिया जाता, तब फिर वो फाउंडेशन करते हैं हमारे यहाँ, जो कि सर्टिफिकेट इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हो गया, या इवन इन आईटी, या सर्टिफिकेट इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस, या सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और उसके द्वारा फिर सर्टिफिकेट के बाद वो डिप्लोमा करते हैं।
1: जी, मतलब कि ये बच्चों के लिए बहुत जो है इजी हो जाता है, क्योंकि हर एक बच्चा एक जैसा नहीं होता है ना, सभी एक लेवल पर नहीं होते हैं।
0: Exactly.
1: कभी कुछ ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं, कभी थोड़े से वीक हो जाते हैं, और अन्य प्रेशर्स भी होते हैं जो उनके एजुकेशन को अफेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं उन्हें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जहाँ पर उनका एक पूरा साल वेस्ट नहीं होता है और वो आगे के बारे में सोच सकते हैं। चलिए, अब हम आएंगे आरती जी आप पर, खासकर आप नर्सिंग से रिलेटेड हमें जो है जानकारियाँ दे रही है, तो स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एक्सपोजर को लेकर आपने काफ़ी जानकारी दी। तो जिन हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ सेक्टर्स की आपने बात की, तो क्या सिर्फ गवर्नमेंट रिलेटेड सेंटर और इंस्टीट्यूशन में ही आपके बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, या फिर जो है प्रैक्टिकल्स करने जाते हैं, या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट संस्थाओं से भी जो है आप लोग कनेक्टेड हैं?
0: नहीं, हम लोग प्राइवेट संस्थाओं से भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि जैसे कि संचना ने बताया कि ये एक इंडस्ट्री ड्रिवन प्रोग्राम्स होते हैं हमारे। तो इंडस्ट्री ड्रिवन की बात करें तो हमारे पार्टनर्स प्राइवेट एसोसिएशन भी है, प्राइवेट क्लिनिक्स एसोसिएशन। तो हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो वो शॉर्ट कोर्सेज हम इंडस्ट्री के डिमांड के हिसाब से बनाते हैं। तो अगर जैसे मैं नर्सिंग में बात करूँ, तो अगर इंडस्ट्री पार्टनर आता है, हमें बोलता है कि हमें ये प्रोग्राम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए चाहिए, तो हम वो भी डिज़ाइन करके फिर उसको प्रोवाइड करते हैं।
1: जी, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया जो है इन्वेंशन हो रहा है, काफ़ी सारी नई बीमारियां भी आ जाती है जिनको टैकल करना होता है।
0: Exactly.
1: तो ऐसे में अगर जो शिक्षा संस्थाएं ऐसे इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर काम करें, तो उन्हें भी अपने एम्प्लॉयज़ को अपग्रेड करने का एक अलग मौका मिलता है। क्योंकि अब नई चीज़ आ गई है या नई कोई बीमारी आ गई, तो उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है ताकि आप प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर पाए।
0: एग्जैक्टली और इसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक्स में एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जैसे नर्सिंग में हमारे पास ना ही सिर्फ नर्सिंग, इवन इन अदर क्लस्टर्स आईटी, टूरिज्म, बेल्थ, वी हैव इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अफ्रीकन कंट्रीज से आते हैं, या इवन इंडिया या दूसरे देशों से आते हैं। तो समटाइम्स दे लाइक टू डू प्लेसमेंट इन प्राइवेट, तो उनको प्राइवेट में भी भेजा जाता है।
1: okay.
0: तो ये ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि एक टाइम वो प्राइवेट, क्योंकि सारे एक्सपर्टीज़ उनको सिर्फ एक हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा, तो दे गो इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स। तो ये भी एक चीज़ है जो हम फॉलो करते हैं।
1: ओके और अभी हम बात करें मतलब कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, अपने आप को अपग्रेड करने की, बहुत सारे कॉर्पोरेट या प्राइवेट सेक्टर्स या गवर्नमेंट सेक्टर्स ही बात करें, वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो है नया नई चीज़ें जो है सीखते रहे और अपने आप को अपग्रेड करते रहे। तो ऐसे में आई कैन सी दैट पॉलिटेक्निक्स अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पर आप सिर्फ नए स्टूडेंट्स को नहीं तैयार कर रहे हैं, जो ऑलरेडी प्लेस्ड है, वेल एस्टैब्लिश है अपने करियर में, अगर उनको भी अपग्रेड का एक मौका मिल मतलब कि अगर चाहते हैं वो, तो आप लोग ऐसे सारे कोर्सेज लेकर आ रहे हैं।
0: अपग्रेड की बात करें तो नर्सिंग में एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं CPD। जो भी हमारे नर्सेज होंगे उनको इसकी जानकारी होगी। तो इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनको क्रेडिट मिलता है। तो हमारे आप देखोगे लाइक पॉलिटेक्निक्स वी आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, तो फेसबुक पेज पे अक्सर हमारे एड्स देखोगे जिसमें हम ये जानकारी देते हैं कि CPD सेशन होने वाला है हर एक स्पेशलाइज टॉपिक को लेके। तो दिस इज़ व्हाट यू वर जस्ट मेंशनिंग अपग्रेडिंग। तो ऐसे ही अपग्रेड कर सकते हैं नर्सेस। तो इसके लिए भी मैं वी वुड लाइक टू वेलकम देम, अगर हमारे पास कोई भी CPD सेशंस हो रही हैं, दे कैन कम, दे कैन फॉलो द कोर्स।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम मॉरिशस के बढ़ते हेल्थ केयर डिमांड की बात करें, तो पॉलिटेक्निक्स इसमें क्या रोल प्ले करता है?
0: अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमने अभी तक 500 स्टूडेंट्स जो है जो डिप्लोमा इन नर्सिंग और नेशनल डिप्लोमा इन नर्सिंग कर चुके हैं, दे आर रजिस्टर्ड नर्सेज, और ये

0: सारे के सारे मेरे साथ तो ऐसा होता है, अगर मैं किसी प्राइवेट क्लिनिक पे जाऊँ तो मैं देखूँगी ओके ये मेरा स्टूडेंट, लाइक हमारा स्टूडेंट वहाँ पे अभी जॉब कर रहा है, एंड वी रियली फील प्राउड अबाउट इट. और नॉट ओनली इन प्राइवेट, बट या सम ऑफ देम आर प्लेस्ड इन पब्लिक ऑल्सो, और इवन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में. और जैसे कि हमने पहले बात किया अबाउट एजिंग पॉपुलेशन, तो आजकल आप देखोगे कि ओल्ड एज होम्स ये काफ़ी ज़्यादा
1: बढ़ता
0: जा रहा है, एंड विथ वेरी फाइव स्टार फैसिलिटीज, राइट? सो दे ऑल्सो नीड नर्सिंग ऑफिसर ओवर देयर, और ना ही नर्सिंग ऑफिसर, इवन हेल्थ केयर. तो इस तरीके से वो अपना योगदान देते हैं. और इसके अलावा अभी पॉलिटेक्निक्स में लगभग 400 बच्चे ऐसे हैं, दे आर फॉलोइंग द कोर्स, एंड इवन डिप्लोमा इन हेल्थ केयर असिस्टिंग के छात्र ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, और वो भी इसी प्राइवेट क्लिनिक्स में या ऐसे होम्स में वेल प्लेस्ड हैं. और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अभी दो दिन पहले मुझे मेरी बात हो रही थी हमारे एक्टिंग प्रोग्राम लीडर से, और हमारा एक मीटिंग था जिसमें ही वॉज डिस्कसिंग अबाउट आवर स्टूडेंट्स. हमें एक फीडबैक मिला हमारे रीजनल लाइक नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर से कि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं जब प्लेसमेंट में जाते हैं ऑब्वियसली वो सीखने जाते हैं, लेकिन कभी कभी आप ऐसा हम अक्सर सुनते हैं कि हॉस्पिटल्स में नर्सेज की कमी है, जहाँ कभी कभी बर्नआउट इश्यूज की वजह से, ओवर टाइम की वजह से. ये उनकी गलती नहीं है, वी आर ऑल ह्यूमंस, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, राइट? तो उनको उस समय हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, सहायता करते हैं, not only in just transferring patients from one ward to another, but even in general basic nursing care. And it is a very good thing.
1: Exactly.
0: They are learning, and then obviously उसके बाद फिर जब वो एक registered nurse होंगे तो they'll be really good.
1: और ये कहीं ना कहीं इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल जहाँ पर हम प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे हैं.
0: Exactly.
1: मतलब कि सिर्फ हम क्लासरूम में बैठकर पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब जाकर उससे जो है हमें सीखने का जो है मौका भी मिल रहा है फेस टू फेस. क्योंकि कहीं ना कहीं नर्सिंग की अगर बात करें तो सिर्फ पेशेंट का केयर तक नहीं सीमित है, आपका कम्युनिकेशन कैसा है ना, बातचीत का तरीका कैसा है, किस तरह से आप सामने वाले पेशेंट को समझ पा रहे हैं. क्योंकि एक पेशेंट की बात करें तो ऑलरेडी वो फिजिकली स्ट्रेस तो है ही बीमारी के चलते, मेंटली भी वो उसे अफेक्ट करता है. तो ऐसे में स्टूडेंट्स का, नर्सिंग स्टूडेंट्स का अपने आप को मेंटली और फिजिकली उस तरह से स्ट्रांग होना, इट प्लेज अ वेरी बिग रोल. एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. फिर चाहे हम नर्सिंग के सेक्टर की बात करें या इंजीनियरिंग के सेक्टर, आजकल तो कम्युनिकेशन तो एक बेसिक है जो रिलेशनशिप में भी बड़ा ही काम आता है. और आप चाहे किसी भी सेक्टर में क्यों ना चले जाए. चलिए हम अगला सवाल संजना जी से पूछना चाहेंगे. अगर हम इंजीनियरिंग के सेक्टर की बात करें तो क्या स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल करियर परस्यू करने का भी मौका मिलता है आपके द्वारा कोर्स जब वो कर रहे होते हैं या उसके बाद?
2: हाँ बिल्कुल. पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस के डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेंचमार्क किया जाता है. और जैसे स्टूडेंट्स को जो बैचलर टॉप अप और आगे की पढ़ाई विषय विदेश में परस्यू कर सकते हैं. और जो स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्किल्स है, इंडस्ट्री एक्सपोजर और आधुनिक प्रौद्योगिकियों की ट्रेनिंग की वजह से छात्र ग्लोबल जॉब मार्केट में आसानी से अडॉप्ट कर सकते हैं.
1: जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे जो है अपने करियर को जो है एक अलग दिशा देना चाहते हैं, और कभी कभार उनको लगता है कि शायद जो कुछ वो ढूंढ रहे हैं उन्हें चार दीवारियों में रहकर नहीं मिलता नहीं है. तो वो लोग जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करना, आजकल के बच्चे जो है मीडिया के चलते बहुत सारी चीज़ों से जो है मतलब फेस टू फेस होते हैं, और वो सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं. तो आई बिलीव इस तरह से वो बाहर जाने का मौका भी ढूंढते हैं. मतलब कि बेसिकली उन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ कर ली, कुछ साल काम यहाँ कर लिया, तो फिर अपने आप को अपने करियर को एक नई ऊंचाई देने के लिए दे लुक टू गो आउटसाइड एंड एक्सप्लोर. तो इस तरह से पॉलिटेक्निक्स जो है आई बिलीव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और जहाँ पर आपने कहा कि आप जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से भी कोलैबोरेट करते हैं, मतलब कि सिर्फ जो है मॉरिशस के यूनिवर्सिटीज तक ही आप सीमित नहीं है, तो आप बताना चाहेंगे कौन कौन सी अन्य ऐसी ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ है जिसके साथ जो है पॉलिटेक्निक्स का कोलैबोरेशन है?
2: हाँ, इंजीनियर हर एक क्लस्टर का डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है. जैसे कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में वी

0: have UCSI University in Malaysia. We had UniKL University in Malaysia. And we have also, for IT, you have UniMai or
1: शायद Kingston University.
0: Yeah, Kingston University है. ऐसे और भी universities हैं जो different clusters के अंतर्गत आती है.
2: अगर हम टेक्निकल स्किल की बात करें और साथ में कम्युनिकेशन की हमने बात की और इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े, तो एम्प्लॉयर्स जो है आजकल कौन कौन से स्किल्स ढूंढते हैं और किस तरह से आप उन पर काम करती हैं?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. आज के एम्प्लॉयर्स जो है वो सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पर विशेष नहीं
2: फोकस
0: करते,
2: नहीं रहता हाँ, है सिर्फ
0: हाँ. बल्कि स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स पर भी फोकस करती है
2: जी.
0: और इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन, टीम वर्क, अडाप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, लीडरशिप और प्रोफेशनलिज्म जैसे स्किल्स भी डेवलप कराना पड़ता है.
2: क्योंकि एक मतलब कि सभी का एक ओवरऑल होना बहुत ज़रूरी है ना, जैसे ऑलराउंडर कहते हैं ना. सिर्फ आप इंजीनियरिंग है और सिर्फ उसी सब्जेक्ट पर फोकस रहेंगे और बाकी अन्य विषयों पर आपको इतनी जानकारी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर में पीछे रह जाएंगे. सो एक ओवरऑल ग्रोथ या फिर जैसे कहें ना कि हर एक चीज़ की थोड़ी थोड़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. चलिए ऐसा करते हैं, एक और गाने के साथ हम प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं, फिर इस चर्चा को हम जारी रखेंगे.

0: आज की चर्चा।
1: इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पॉलिटेक्निक से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे साथ हैं, और ख़ासकर नर्सिंग और इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर वो हमें ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। तो हम आरती जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम नर्सिंग प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये किस तरह से ट्रेडिशनल लर्निंग से अलग है?
2: ओके, इट्स अ गुड क्वेश्चन। वेल, पहले हमने इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था अबाउट प्रैक्टिकल एक्सपोजर, तो उस पर हम काफ़ी फोकस करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे। तो जिससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स में जा के सीख सकें विथ द एग्जिस्टिंग नर्सिंग ऑफिसर्स, एंड ऑल थैंक्स टू देम फॉर देयर पेशेंस। एंड उसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास एक कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं पॉलीकास। ओके, सो पॉलीकास इज़ लाइक क्रिएटिविटी। पॉली इट्स फ्रॉम पॉलीटेक्निक्स, एंड कास इज क्रिएटिविटी, एक्शन एंड सर्विस। तो हर एक सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को एक कंपोनेंट ये मस्ट है, उनको करना होता है। और नर्सिंग की बात करें तो हर साल हम ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, और इट इज़ स्टूडेंट लेड, सो वी फोकस अ लॉट ऑन स्टूडेंट लेड एक्टिविटीज़। अगर आप कभी हमारी किसी भी एक्टिविटीज़ को फॉलो करो तो एमसी से लेके उसकी सारी मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल डन बाय आवर स्टूडेंट्स। तो ताकि वो ट्रेन हो सके पहले से ही, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात किया जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनको, फिर जब वो कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं खुद से तो काफ़ी ज़्यादा सहायता देता है फॉर फ्यूचर। तो और नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जो यू नो, जब हमारे यहाँ पे ओपन डेज होते हैं, अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता तो हो सकता है वो आईटी चूज़ कर सके, हो सकता है वो टूरिज़्म भी चूज़ कर सके, लेकिन नर्सिंग के बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका है, आप उसको जल्दी चेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम विद इन, दैट फीलिंग ऑफ सर्विंग पीपल,
1: इट इज़ अ नोबल,
2: एग्जैक्टली, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट सर्विस व्हाट आवर नर्सिंग पीपल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स डू। तो That's जब true. वो आते हैं उनके अंदर वो ऑलरेडी पेशेंस, वो केयर टुवर्ड्स अदर्स इज़ देयर। तो जब वो हमारे यहाँ पे सर्विस करते हैं, जैसे ये ब्लड डोनेशन हो गया, या फिर इवन समटाइम्स वी ऑर्गेनाइज बीच क्लीन अप्स या फूड पैक डोनेशंस किसी, जैसे क्योंकि मैं स्टूडेंट अफेयर्स आई एम टुवर्ड्स नर्सिंग, तो अक्सर हम ओल्ड एज होम में जाते हैं, वहाँ पे फूड डोनेशन करते हैं, और स्टूडेंट्स जाके उन पेशेंट्स के साथ थोड़ा समय बिताते हैं, उनके साथ बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनको और भी ज़्यादा अच्छा एक नर्स बनाने में काम आता है, हेल्प करता है। और इसके अलावा जैसे कि हम थोड़ी देर पहले एक कंपोनेंट के बारे में संजना बात कर रही थी, इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वो हम उसको पॉलीकोर बोलते हैं, जो कि हमारे सॉफ्ट स्किल्स लेक्चरर्स उनको ट्रेन करते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू लर्न थिंग्स इन बुक्स, लेकिन जब तक आप कम्युनिकेशन स्किल्स और हाउ टू वर्क इन टीम, क्योंकि मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ कि इन क्लास मे बी यू डोंट लाइक समबडी, तुम उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाके बैठ जाओगे, बट व्हेन यू आर गोइंग इन अ वर्क एनवायरमेंट वहाँ पे आप क्या करोगे,
1: अडॉप्ट करना बहुत,
2: यू विल हैव टू अडॉप्ट। तो ये सारे स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे संजना जी, आजकल एआई का बहुत ही बोलबाला है, तो फ्यूचर के लिए एआई और ऑटोमेशन के लिए किस तरह से जो है तैयारी करते हैं आप, और हमारे पास समय भी बहुत कम है चलिए बताइए।
3: आपको कुछ इस पे

0: लाइट शेड करूँगी, तो गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से
1: जी
0: कृत्रिम बुद्धि जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं को एजुकेशन के हर स्तर पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस में भी स्टूडेंट्स को एआई और डिजिटल टूल्स के यूज़ पर उनको यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित किए जाते हैं, मगर जिम्मेदारी से।
1: ओके,
0: लाइक वी डोंट से वी डोंट आस्क आवर स्टूडेंट्स जस्ट टू कॉपी एंड पेस्ट, ओके, मगर दे हैव टू सीखना चाहिए उनको एआई कैसे, हाउ टू यूज़ अ टूल properly.
1: थैंक यू सो मच संजना जी। तो चलिए हम धन्यवाद करेंगे मिसेस संजना तोताराम जी आपको और मिसेस आरती राय खेदनी जी, आप दोनों पॉलिटेक्निक्स से जुड़ी, साथ ही पॉलिटेक्निक्स का भी धन्यवाद जो कोर्सेज आप चला रहे हैं, इस पर आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी। उम्मीद करते हैं हमारे जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े आज के इस प्रोग्राम से ज़रूर आप लाभ उठाएंगे। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे टेक्निक और हमारे जो है प्रोडक्शन टीम को, रितेश है, यूसुफ है, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट बानो, आप सभी का धन्यवाद। तो जल्द हमारी आपके मुलाकात फिर होगी। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।
2: धन्यवाद,
0: धन्यवाद और नमस्कार।
3: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस, रेडियो मॉरिशस।
4: स्टूडियो में आगे आस्थाओं से मिलते हैं जानते इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार,
5: नमस्कार। 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज मंगलवार को राज्यसभा की बैठक लगने वाली है। प्रधानमंत्री से कुल 22 प्रश्न पूछे जाएंगे। सार्वजनिक कर्ज, स्वास्थ्य सेक्टर, कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा तथा सिल्वर बैंक जैसे कई अहम मुद्दे आज की कार्यवाही के केंद्र में रहेंगे। वहीं देश की 5 नगर पालिकाओं में नए मेयर और डिप्टी मेयर ने जिम्मेदारी संभाल ली है। पोटली में पहली बार राजधानी की कमान 2 महिलाओं के हाथों में सौंपी गई हैं। क्रिस्टल पोंदो नई लोट मेयर चुनी गई हैं, जबकि महजबीन करमताली उनकी डिप्टी होंगी। वकुआ में अली हुसैन अब्दुल कादिर नई मेयर बनी हैं, जबकि क्यूपिप में तशनाया लक्ष्माना पीले को मेयर चुना गया है। कटरबोन में सुबिराज गंगा बिसुन नेयर मेयर बनी हैं और इंदिरा देवी कलाया डिप्टी मेयर का पद संभालेंगी। उधर बजट पेश होने से पहले कांग्रेस ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियंस यानी CITU ने बढ़ती महंगाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और भूमि, कृषि भूमि में कमी को लेकर चिंता जताई है। यूनियन ने ज्यादा सामाजिक और न्याय संगत बजट की मांग की है। इसके अलावा नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट सेंटर द्वारा आपदा राहत उपकरणों का वितरण किया गया, जिसका उद्देश्य तूफान, बाढ़ और अन्य आपदाओं से निपटने के लिए मॉरिशस की तैयारी को और मजबूत बनाना है। और हज के संबंध में आज यौमे अराफात मनाया जा रहा है। हज के सबसे अहम दिनों में से एक माने जाने वाले इस दिन लाखों हाजी अराफात के मैदान में इबादत और दुआओं के लिए जुटते हैं। माना जाता है कि इसी मुकाम पर हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी उम्मत को आखिरी पैगाम दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में मिसाइल ठिकानों और कुछ नौकाओं को निशाना बनाया गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ती हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। माधव लेन मोताबा में विद्वंती रागु की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें बिदिया के नाम से ज़्यादा जानते थे। पैदाइश नाम माधव, उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, आज दोपहर बाद 1 बजे उनके बेटे संताराम रागु के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रिजर्वर रोड गुडलैंड्स में 77 साल की बीबी फरीदा तुगाबाली इंतकाल कर गई हैं। पैदाइश नाम हुसैनी, उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके पति महमूद हुसैन तुगाबाली के मकान गुडलैंड से निकाल कर दफनाने के लिए बेलमो का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 10:04:15। पुनः आप सभी की सेवा में उपस्थित हो चुकी है रत्ना, हमारा कर जोड़ वंदन स्वीकार करें। आइए आज की इस भक्ति में यात्रा में आप हमारे साथ जुड़िए, मन को बिल्कुल आनंदित अनुभव करें और भगवान की भक्ति में लीन होते हुए आज के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। आपको ये भी याद दिला दें, 10:15 आप सुन पाएंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आइए आज के इस यात्रा का शुभारंभ करते हैं इस प्रथम गणेश भजन द्वारा।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। आज का कार्यक्रम तीन भागों में विभाजित है। प्रथम वेद पाठ एवं भावार्थ, द्वितीय एक प्रेरणादायक भजन और अंत में एक वैदिक मंत्र की गहन व्याख्या। तो आइए वेद पाठ के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करें।

पृष्ठं वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियं अग्नेरथं न वेद्यम्। हे अग्नि के समान प्रकाशमान, तुझ मित्र के दृश्य, प्रिय सखा के समान, प्रिय व प्राण के तुल्य प्यारे, लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कराने में सहायक रमणीय रथ के समान प्रापणीय अथवा लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक इस शरीर रूप रमणीय रथ के समान प्राप्तव्य प्रियतम अर्थात अत्यंत प्यारे और सब जग से न्यारे अतिथि सम सर्वतो भावेन पूज्य पावन परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूँ। ओम अग्ने विवस्वदा आभरास्मभ्यमूतये महे देवो ह्यसीनो दृशे। हे प्रकाश स्वरूप प्रभो, हमारे साक्षात्कार करने के लिए एकमात्र परम दर्शनीय देव तुल्य आप ही हैं। हे प्रभुवर, आपका साक्षात्कार करने के परिणाम स्वरूप जो महती तृप्ति मिलती है, जो महान आनंद की अनुभूति होती है, जिससे कि हमारी आत्मा गदगद हो जाती है, जिससे कि हमारी आत्मा आनंद विभोर हो जाती है, उसी महती तृप्ति के लिए, उसी महान अनुपम आनंद की प्राप्ति के लिए आप हमें वह अद्वितीय ज्ञान प्रकाश प्रदान करो। ओम नमस्ते अग्न ओजसे गृणन्ति देव कृष्टयः अमेरमित्रमर्दय। प्रभु प्रदत्त आत्मबल अध्यात्म बल के आते ही जहाँ अध्यात्म कृषि सम्यक और सहज होने लगती है, वहाँ उसमें बाधा डालने वाले काम क्रोध आदि समस्त शत्रु भी नष्ट होने लगते हैं। ओम उपत्वा जामयो ओ गिरो दे दिशतिर्हविष्कृता वायोरनी के अस्थिरन। जो आत्मसमर्पण पूर्वक उस प्रकाश स्वरूप प्रभु को भजता है, उसका वह भजन ही उसको भव सागर से पार उतार कर उस प्राण प्रिय प्रभु के समीप पहुंचा देता है। ओम शांति शांति

इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाद्येन समेधयस्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। श्रुताओ, इस मंत्र का अध्ययन केवल शब्दार्थ जान लेने तक सीमित नहीं है। वैदिक ऋषियों ने प्रत्येक मंत्र में जीवन को श्रेष्ठ बनाने का विज्ञान रखा है। यह मंत्र वास्तव में मनुष्य को एक आदर्श गृहस्थ, आदर्श विद्यार्थी, आदर्श नागरिक तथा आदर्श साधक बनने की प्रेरणा देता है। यदि हम इसके प्रत्येक पद का जीवन के साथ संबंध जोड़कर समझें तो यह मंत्र संपूर्ण व्यक्तित्व निर्माण का मार्गदर्शक बन जाता है। सामान्य रूप से लोग अग्नि को केवल जलती हुई लौ समझते हैं, परंतु वेदों में अग्नि का अर्थ बहुत व्यापक है। अग्नि का अर्थ है प्रकाश, ऊर्जा, प्रेरणा, ज्ञान, पुरुषार्थ, उत्साह, प्रगति की शक्ति। जब कोई विद्यार्थी रात दिन परिश्रम करके परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है, तब उसके शरीर जो परिश्रम की शक्ति कार्य करती है वही अग्नि है। श्रोताओ, जब कोई वैज्ञानिक मानवता के हित के लिए शोध करता है, तब उसके भीतर जो जिज्ञासा और ज्ञान की ज्वाला होती है वही अग्नि है। जब कोई समाज सेवी बिना स्वार्थ लोगों की सेवा करता है, तब उसके हृदय की करुणा भी अग्नि का ही स्वरूप है। इस प्रकार वेदों की अग्नि केवल यज्ञ कुंड तक सीमित नहीं है, वह जीवन की प्रत्येक रचनात्मक शक्ति का प्रतीक है। श्रोताओं, मंत्र में कहा गया है अयंत इद्म आत्मा, यह समिधा अग्नि की आत्मा है। समिधा अग्नि को जीवित रखती है। यदि समिधा डालना बंद कर दिया जाए तो अग्नि धीरे धीरे बुझ जाती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी अनेक समिधाओं की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी की समिधा है अध्ययन, साधक की समिधा है साधना, गृहस्थ की समिधा है कर्तव्य पालन, राष्ट्र की समिधा है देशभक्ति, समाज की समिधा है सेवा। यदि विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ दे तो उसका ज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। यदि साधक साधना छोड़ दे तो उसका आत्मिक विकास रुक जाएगा। यदि परिवार में प्रेम और त्याग समाप्त हो जाए

जाए तो परिवार टूट जाएगा। इसलिए समिधा त्याग और निरंतर प्रयास का प्रतीक है। श्रोताओ, एक मोटरगाड़ी में कितना भी अच्छा इंजन क्यों न हो, यदि उसमें ईंधन न डाला जाए तो वह नहीं चलेगी। उसी प्रकार मनुष्य में कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, यदि वह निरंतर अभ्यास न करे तो सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। उदाहरण के रूप में एक संगीतज्ञ को देखें, यदि वह प्रतिदिन रियाज करता है तो उसकी कला निखरती रहती है, यदि वह अभ्यास छोड़ दे तो धीरे धीरे उसकी प्रतिभा कम होने लगती है। यही सिद्धांत इस मंत्र में समिधा के माध्यम से समझा गया है। जात वेदः, सब को जानने वाला, मंत्र में अग्नि को जात वेदः कहा गया है। इसका अर्थ है जो संपूर्ण सृष्टि को जानता है। वेदों में ईश्वर को सर्वज्ञ बताया गया है। मनुष्य चाहे अकेला हो या समाज में हो, ईश्वर उसके प्रत्येक कर्म को जानता है। यह विचार मनुष्य को सदैव धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर गलत कार्य करता है कि कोई उसे नहीं देख रहा है तो वह भूल करता है। ईश्वर और उसका अंतःकरण उसके प्रत्येक कर्म का साक्षी होता है। यही कारण है कि वैदिक संस्कृति में बाहरी नियंत्रण से अधिक आंतरिक अनुशासन को महत्व दिया गया है। श्रोताओ, प्रज्वलित होने का वास्तविक अर्थ तेनेध्यस्व, अर्थात इससे प्रज्वलित हो जाए। साधारण अर्थ में अग्नि प्रज्वलित होती है, किंतु जीवन में इसका अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना। बहुत से लोग प्रतिभाशाली होते हुए भी जीवन में पीछे रह जाते हैं। कारण यह नहीं कि उनमें क्षमता नहीं होती, कारण यह होता है कि उनकी क्षमता जागृत नहीं होती। एक बीज में विशाल वृक्ष बनने की शक्ति होती है, परंतु यदि उसे मिट्टी, जल और सूर्य का प्रकाश न मिले तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य में महान बनने की संभावना होती है। यह मंत्र हमें अपनी सुप्त शक्तियों को जागृत करने की प्रेरणा देता है। वर्धय चास्मान, केवल धन नहीं संपूर्ण विकास। श्रोतागण, आज अधिकांश लोग उन्नति का अर्थ केवल आर्थिक सफलता समझते हैं, किंतु वेदों के अनुसार उन्नति बहुआयामी होती है। एक व्यक्ति करोड़पति हो सकता है, परंतु यदि वह क्रोधी, असत्यवादी और असंयमी है तो उसे वास्तव में उन्नत नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर एक साधारण शिक्षक सीमित आय में भी समाज को श्रेष्ठ नागरिक दे सकता है, वह वैदिक दृष्टि से अधिक उन्नत है। इसलिए मंत्र में संपूर्ण विकास की प्रार्थना की गई है। प्रजा का गहरा अर्थ केवल पुत्र पुत्री नहीं है, प्रजा का अर्थ है आने वाली पीढ़ी। आज जो संस्कार हम बच्चों को देंगे वही भविष्य का समाज बनाएंगे। यदि बच्चों को सत्य बोलना सिखाया जाएगा तो समाज में विश्वास बढ़ेगा। यदि उन्हें सेवा सिखाई जाएगी तो समाज में करुणा बढ़ेगी। यदि उन्हें संयम सिखाया जाएगा तो अपराध कम होंगे। इस प्रकार श्रेष्ठ प्रजा की राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति है। कल्पना कीजिए, दो परिवार हैं। पहले परिवार में बच्चों को केवल धन कमाने की शिक्षा दी जाती है। दूसरे परिवार में बच्चों को सत्य, सेवा, अनुशासन और विद्या का महत्व सिखाया जाता है। समय बीतने पर दूसरे परिवार के बच्चे समाज के आदर्श नागरिक बन जाते हैं। उनके कारण परिवार, समाज और राष्ट्र का गौरव बढ़ता है। श्रोताओ, यह मंत्र हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं सुख नहीं है, मनुष्य को

चाहिए कि वह अपने ज्ञान की अग्नि को सदैव प्रज्वलित रखे, अपने जीवन में त्याग और सेवा की समिधा डालता रहे, संस्कारवान पीढ़ी का निर्माण करे, प्रकृति और पशुओं की रक्षा करें, अन्न का सम्मान करे, ज्ञान और चरित्र का तेज बढ़ाए, अहंकार और स्वार्थ का त्याग करे, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहे। जब मनुष्य इन सिद्धांतों को अपनाता है तब उसका जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है। वह जहां भी जाता है वहां प्रकाश, शांति, सद्भाव और प्रेरणा का वातावरण उत्पन्न करता है। यही इस महान वैदिक मंत्र का शाश्वत संदेश है और यही इसकी भविष्य के लिए सबसे बड़ी उपयोगिता है। श्रोताओं, हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। आशा है कि आज के वैदिक संदेश से आपको अवश्य ही लाभ एवं मार्गदर्शन मिला होगा। इस कार्यक्रम की तैयारी में श्रीमती अंजू का विशेष योगदान रहा, उनके प्रति कृतज्ञता। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नवीन प्रस्तुति के साथ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।

तो श्रोताओं, इसी के साथ वेद सुधा कार्यक्रम के लिए आचार्य सुदेश बद्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए पुनः भक्ति धारा कार्यक्रम में भजनों का ऐसा स्वादन करते हुए आज का दिन मंगलमय रहे, सभी के लिए मंगलमय रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस अगले भजन के साथ जुड़ते हैं।

आज मंगलवार का दिन है, महावीर यानी हनुमान का वार है। बस सभी का मंगल हो यही कामना करते हुए आइए हनुमान जी का नाम लेते हैं।

तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का समय हो चला है और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी ने प्रेम और भक्ति भाव से हमारा साथ दिया। हृदय की गहराई से आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं। आने वाले मातृ दिवस की सभी माताओं को हृदय की गहराई से ढेर सारी मंगल कामनाएं। इसी के साथ आने वाले दिनों में और ऐसे कार्यक्रमों के साथ हम रहेंगे उपस्थित आपका साथ देने के लिए। इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, आप 11 बजे के समाचारों के बाद विविध भाषाओं के कार्यक्रमों का आनंद उठा पाएंगे रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। तो इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: आसागे स्टूडियो में उनसे मिलते हैं, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज राज्यसभा में विपक्ष नेता जूले जोंगो का प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन, बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा की रेपो रेट में की गई बढ़ोतरी पर आधारित रहेगा। 20 मई को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 4.50% से बढ़ाकर 4.75% कर दिया। प्रधानमंत्री से पूछा जाएगा कि इस फैसले का असर परिवारों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों पर किस प्रकार पड़ेगा। बैठक आज सुबह के 11:30 बजे से लगने वाली है। राज्यसभा में आज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल की दूसरी पढ़त होगी। इस विधेयक ये विधेयक संविधान की समीक्षा के लिए आयोग के गठन पर आधारित रहेगा। इस बिल को प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम पेश करेंगे। राज्यसभा की बैठक में ही कई अहम संसदीय प्रश्नों को लेकर सरकार से जवाब मांगे जाएंगे। सार्वजनिक कर्ज, सिल्वर बैंक प्रकरण, गंगा तालाब की पवित्रता, पुलिस जांच और कानून व्यवस्था से जुड़े सवाल सदन में उठाए जाएंगे। इसके अलावा एमओएसएस की वित्तीय स्थिति, सेफ सिटी कैमरा, मेट्रो एक्सप्रेस विस्तार, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर भी विभिन्न मंत्रियों से जवाब मांगे जाएंगे। वहीं शिक्षा, कृषि, सशक्तिकरण, पर्यावरण और खेल क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे भी आज की बैठक में चर्चा का केंद्र रहेंगे। देश की 5 नगर पालिकाओं में नए मेयर और डिप्टी मेयर ने जिम्मेदारी संभाल ली है। पोर्टलुई में पहली बार राजधानी की कमान 2 महिलाओं के हाथों में सौंपी गई है। विदेश स्तर पर इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने लेबनान में हिजबुल्ला के खिलाफ नए हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये हमले लेबनान के कई इलाकों में किए गए। प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्ला के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को और तेज किया जाएगा। वहीं हिजबुल्ला ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए ड्रोन और रॉकेट से 22 हमले करने की बात कही है। इस बीच संघर्ष विराम बढ़ाए जाने के बावजूद दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। कश्मीर स्ट्रीट लिस्पेरेंस ट्रिबुशे में 80 साल की 80 साल की श्रीमती देवयंती जीबन की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम सीसाहा, उनकी अर्थी आज सपहर की 3 बजे उन्हीं के मकान लिस्पेरेंस ट्रिबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: शम्मे फरोजा

आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

बख्शिश उन गुनाहों की खुदा कर दे हमारी तू, जितनी ख़ताएं हो गईं कर मुआफ़ सारी तू। दामन में लेके आए कितनी दुआएं हम, मुश्किल हमारी दूर कर अब होना कोई गम। मौज़ सामीन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैरियत आफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे

सैयदा सुबाई के साथ आज की इस उर्दू नशरियात में आप समाअत फरमाएंगे तिलावते कुरान पाक हम्द मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब का बयान नातो सलाम और आपके पैगामात। ताक़ीर ना करते हुए आइए हज़्म मामूल आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम।

वो गिलाफ़े काबा का हुसन, वो जमजम का पानी, वो मदीने की गलियाँ, वो तैबा की ठंडी हवा, अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। मौज़े सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:22 हो चुके हैं।

आइए समाप्त फरमाइए चंद ऐलानात। आज मंगल 26 मई दिन के 2 बजे मोहतरमा नरीमान कुओ की सरपरस्ती में योमे अराफात के मौके पर उनकी रिहाइश का तोमी दगीफात लेन में एक नूरानी महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। इसके अलावा जुमेरात 28 मई, जी हाँ जुमेरात 28 मई सुबह के 10 बजे से दिन के 12 बजे तक रेडियो मॉरिशस के ज़रिए खुसूसी ईद उल अधा नशरियात पेश की जाएगी अभिनाश के साथ। सुनना मत भूलिएगा, जुमेरात 28 मई सुबह के 10 बजे से दिन के 12 बजे तक। आप अपने पैगामात हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005, जी हाँ 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें नॉर्मल

मौजसामीन हुज्जाज के लिए तलबिया है, हमारे लिए तकबीरात, उनके लिए अरफे का वकूफ़ है, हमारे लिए अरफे के दिन का रोज़ा, उनके लिए हज की कुर्बानी है, हमारे लिए ईद की कुर्बानी है। सुभान अल्लाह, या रब्बे करीम जिसने उन्हें भी नवाजा और हमें भी नवाजा है।

0: मौज़े सामीन, अब आप समात फरमाएंगे ख़तीब इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफ़ी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समात फरमाइए।
1: نحمد ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فصل لربك وانحر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سامعين حضرات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله हम इस वक्त अशर अव्वल माह ज़िलहिज्जा में हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह आलमीन जिन लोगों ने क़ुरबानी की नियतें की हैं अल्लाह उनकी नियतों में खलूस अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला जलालहु व अम्मा नवालहु क़ुरबानी के हवाले से क़ुरान हकीम की सबसे छोटी सूरा सूरे काफ़र में इरशाद फरमाया फ़सल्ली लिरब्बिका वनहर, नमाज अपने रब के लिए पढ़ें वनहर और क़ुरबानी भी अपने रब के लिए करें। यहाँ से बहुत से मसाइल भी हल होते हैं और फ़ज़ाइल हम सुनते ही रहते हैं और सुनते रहेंगे। यानी कि हमें सबसे पहले ईदुल अदहा के दिन नमाज अदा करनी है और उसके बाद क़ुरबानी करनी है। क़ुरान हकीम के अल्फाज से तरतीब जो हमें मिल रही है इस पर हमें अमल की तौफीक हो। दूसरी बात कि जिस तरह बंदा नमाज रब के लिए पढ़ता है खलूस के साथ मोहब्बत के साथ, वैसे ही क़ुरबानी भी रब की रज़ा और खुशनूदी के लिए करना चाहिए। बहुत से नमाजी ऐसे हैं कि उनके अमल से ये साबित होता है, ये बताते हैं कि नमाज खुलूस लवजहिल्लाह के लिए वो पढ़ रहे, उनको देखने के बाद रब की रुबूबियत, रब के जलवे

उस बंदे के अंदर नज़र आते हैं। और बहुत से लोग नमाज को एक रस्म और फॉर्मेलिटी के तौर पर अदा करते हैं, वो भी दिखने में आ जाता है। बहुत से लोग हैं कि नमाज का एहतमाम करते हैं, गुस्ल किए, वज़ू किए, सलीक़े से और सलीक़ेमंद कपड़े पहने, अच्छे लिबास, खुशबू लगाए और मस्जिद में बाअदब दाखिल हुए, वक्त है तो तहत्तुल मस्जिद अदा किया, सुन्नत, फ़र्ज़, नफिल तमाम वो अदा करते हैं रब की खुशी के लिए। ऐसों के चेहरों से नमाज की बरकत और नमाज का नूर नज़र आता है। और कुछ ऐसे हैं जो रस्मी तौर पर फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए चले जाते हैं, बस पहुँचे, धड़ से वज़ू किया, वज़ू के कुछ हिस्से भीगने से भी बच गए, यूँ कह लो वज़ू कामिल नहीं हुआ, और या यूँ कह दूँ कि वज़ू ही नहीं हुआ। नमाज में अंदाज इस तरह खड़े हुए कि जब लगता है कि इनके इस अमल से अदब बिल्कुल दूर है, न सफ़ का अदब है, न मस्जिद का, न सुन्नत अंबिया का कि सर ढक कर अदा किया जाए। वो भी नमाज पढ़ते हैं, लोगों ने देखा। अब लोग फ़र्क महसूस करते हैं, कौन नमाजी ऐसा है जिसके अंदर अदब और खलूस है, और कौन नमाजी ऐसा है जो बेअदब है। यह बताने की ज़रूरत नहीं, सभी लोग आज की तारीख में मस्जिदों में देखते हैं। ऐसी ही क़ुरबानी भी कुछ लोग खलूस लिवजहिल्लाह, सुन्नत अंबिया, सुन्नत इब्राहिम व इस्माइल अलैहिमुस्सलाम पर करते हैं, तो उनकी क़ुरबानी की बरकतें, रौनकें उनके चेहरों पर और उनके घरों में और उनकी ज़िंदगी में दिखाई देते हैं। और कुछ लोग हैं जो सिर्फ एक रस्मी तौर पर, मैं तमाम अपने सुनने वालों को ये दावत कलाम दे रहा हूँ, दावत तफहीम दे रहा हूँ, समझने की ज़रूरत है कि क़ुरबानी का जानवर जब इसका नाम रख दिया गया, इसे क़ुरबानी करनी है, तो फिर ये आम जानवर नहीं रह गया। आप क़ुरान हकीम की आयत मुबारक पढ़ें मोहब्बत से, तो पता चलेगा ये क़ुरबानी का जानवर अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जिस तरह मस्जिद अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, उसका अदब हम पर फ़र्ज है, ऐसे ही क़ुरबानी के जानवर का अदब भी हम पर फ़र्ज है। उसके पीछे आप ना दौड़ें, बैल के पीछे बैल ना बन जाएं, आप बैल के पीछे जानवरों की तरह ना दौड़ें, बल्कि उस जानवर का अदब करें, क्योंकि इस पर क़ुरबानी होनी है। आप सूरह हज की आयत मुबारक पढ़ के देख लें, और अल्लाह की निशानियों का एहतराम में आप क़ुरान हकीम का दूसरा सिपारा आप बड़े आराम से इत्मीनान से पढ़ें, इन्नस सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, अल्लाह की निशानियों में से है। तो सफ़ा मरवा पर कितने अदब से आदमी जाता है, हज्जाज इकराम हों, उमरा करने वाले मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं, उलमाए इकराम हैं, अवलिया भी वहाँ पर हैं, जमात अंबिया से कुछ हैं, सवालहीन हैं, मेरी भाई बहन बेटियाँ हैं, किस तरह सफ़ा पर अदब से पहुँचे बावजू, फिर मरवा की तरफ गए, फिर मरवा से सफ़ा, सफ़ा से मरवा, ये दोनों अल्लाह की निशानियों में से हैं। तो ऐसे ही क़ुरबानी का जानवर भी अल्लाह की निशानियों में से है, इसलिए उस जानवर का भी अदब करें। अब आप सोचिए, जो मज़हब इस्लाम क़ुरबानी के जानवर
को अदब सिखाए, क़ुरबानी के जानवर का अदब कर

करना सिखाए वो मज़हब इस्लाम कितना प्यारा कि जहाँ जानवर की भी तआज़ीम की जाए तो उस मज़हब में माँ बाप की तआज़ीम, औलाद की तआज़ीम, बड़े बुज़ुर्गों की तआज़ीम, इंसानियत की तआज़ीम व तकरीम कितनी होगी। बहरहाल इस मौज़ू पर हम कभी बात करेंगे इंशाअल्लाह तकरीम इंसानियत के हवाले से, लेकिन आज क़ुरबानी के जानवर को आप घर लाएं या जहाँ कहीं भी क़ुरबानी का आपको करने का अहतमाम है तो उसे शोर व गुल न मचावें और ख़ुद बाअदब जाएं। देखा जाता है माँ बहन बेटियाँ हमारी घर से नंगे सर निकलती हैं, दुपट्टा गले में है, जबकि दुपट्टा सर पे होना चाहिए, वो गले में है। अल्लाह ने दुपट्टा गले के लिए नहीं सर के लिए दिया है। बाअदब सर को ढक कर क़ुरबानी देखना है, करीब खड़े होकर देखो। हम नौजवान बच्चों से बड़े बूढ़ों से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्ग हजरात तो आज भी कोई लिबास पहने हैं, चाहे पैंट है, कुर्ता है, कुछ भी पहने हैं, लेकिन सर ढका है। हम नौजवान बच्चों से कहेंगे ए बेटा तुम लोग भी अपने सर को ढक कर बाअदब क़ुरबानी के पास खड़े हो। और क़ुरबानी के फ़लसफ़े में बहुत सी चीज़ें हैं, उनको समझने के लिए हमें अपने आइम्मा, अपने उलमा, अपने मस्जिदों में जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए क़ुरबानी की तआज़ीम क्या है, तकरीम क्या है। और क़ुरबानी के ताल्लुक़ से कितना प्यारा पैगाम और मैसेज है जो क़ुरबानी आप जिस जानवर की कर रहे हो उसमें सिर्फ तुम्हारा हिस्सा नहीं है, उसके तीन हिस्से करो, एक अपने लिए, एक अपने अज़ीज़ो अकारिब के लिए, एक ग़रीब यतीम मिस्कीन के लिए। इस्लाम ने यहाँ भी क़ुरबानी में एक और क़ुरबानी ऐड कर दी, यानी ये मत ख्याल करो कि सब मेरा ही है। तो यहाँ से एक सबक भी मिलता है, ज़िंदगी में जो कुछ रिस्क़ हलाल कमाओ ये मत ख्याल करो सब मेरा ही है, उसमें हिस्से हैं। किसके हिस्से हैं? आपका है, आपके अज़ीज़ो अकारिब का है, और अल्लाह के बंदों का जो गरीब हैं उनका भी उसमें हक है। बताइए पैसा आपका क़ुरबानी के जानवर में ख़र्च हुआ लेकिन उसमें भी दूसरी क़ुरबानी इंसानियत और मोहब्बत के हवाले से पेश कर दी गई। और क़ुरबानी के गोश्त वग़ैरह को बाद में बाद ज़बीहा फिर उसे अगर बड़े जानवर में तो सात हिस्से किए जाएं और बाद में फिर जो जिसका जितना बनता है वो उसे लेकर फिर उसके तीन हिस्से करके बराबर तकसीम किए जाएं। और क़ुरबानी के अंदर शयातीन भी घुस जाते हैं। शयातीन ये घुसते हैं कि हमको बताओ गोश्त कितना हमें मिलेगा, नौज़ बिल्लाह बिन ज़ालिक। आप क़ुरबानी करने आए हो या गोश्त ख़रीदने आए हो? इससे बचना चाहिए, ये शरीयत का मुत्तफ़िका फ़ैसला है। और अगर नीयत ये है कि हमें गोश्त लेना है तो फिर क़ुरबानी आपकी कबूल नहीं। आपके एक बदनीयती की वजह से जो उसमें छः और आदमी शरीक हैं सबकी क़ुरबानियाँ बेकार हो जाएंगी। इसलिए नीयत ये हो कि मैं अल्लाह की खुशी के लिए और सुन्नत इब्राहीम व इस्माइल अलैहिस्सलाम पर कर रहा हूँ। कहीं भी जहन ना हो ना गोश्त ना पोस्त, ना गोश्त ना पोस्त कहीं से ये जहन ना हो, बल्कि जहन ईमान और अकीदा और नीयत यही होनी चाहिए। इसलिए कि मोमिन जब नीयत करता है नेतुल मोमिन खैरुम मिन अमल, जिस दिन तुमने नीयत कर लिया एक महीना पहले, दो महीना पहले, चार महीना पहले मुझे क़ुरबानी करनी है, तो नीयत का सवाब मिलता है न कि गोश्त पोश्त का सवाब मिलता है। सूरह हज की आयत मुबारका इस मामले में बड़ी साफ़ सुथरी तरीक़े से

0: इंसान के जहन को सबक दे रही है, इंसानियत को सबक दे रही, मुसलमानों को सबक दे रही। लन यनालल्लाहु लुहूमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक्वा मिनकुम। अरे ये खून ये गोश्त अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचता, वलाकिन यनालहु तक्वा मिनकुम। तक्वा जो दिल की नीयत है आपकी, उसके ज़रिए नीयत अल्लाह की बारगाह पहुँच रही है। और नीयत ही ख़राब है कि हम कुर्बानी तो करेंगे लेकिन गोश्त शादी में देंगे, कुर्बानी तो करेंगे हम फलां जगह देंगे, आपको 10 किलो देंगे, उनको 5 किलो, उनको 50 किलो देंगे। ये कहाँ से आपने सीख लिया, ये कौन से दीन की बात आप सीख कर ले आया है? तो इसलिए इससे परहेज़ करो, कुर्बानी करो। कुर्बानी करने के बाद जो हुआ सातों हिस्से बराबर, फिर उसमें जो तुम्हारा हिस्सा उसके 3 हिस्से बराबर, चाहो आप तकसीम कर लो, चाहो नहीं बल्कि ज़रूरी है, आप भी अपना हक लो और अपने अजीज व अकारिब को उनका हक दो। और गरीब यतीम को भी ऐसे मौके पर ना भूलो कि हम अच्छा खाएं, गरीब यतीम जाके बैगन की सब्ज़ी खाएं, नहीं, इससे एहतियात रखें। और क़ुरबानी के जानवर का एहतराम, जहाँ ज़बह हो उसका एहतराम, खून वगैरह इधर उधर न फेंका जाए इसका एहतराम, जो चीज़ें नहीं खाने के लिए जायज़ हैं कुर्बानी के जानवर में, उन्हें किसी अच्छे प्लास्टिक में पैक करके एक ऐसी जगह डाल दो जहां दफन कर दो, उनको ऐसी जगह न फेंको जहां पर उनकी बेहुरमती हो। इसलिए कुर्बानी का मुकम्मल जानवर अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह ताला हमें बाअदब कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए, और क़ुरबानी के अदब व लिहाज के साथ नीयत खलूस लवजिल्लाह हो, ताकि अल्लाह कबूल फरमा ले। या अल्लाह आलमीन मुल्क मॉरिशस में होने वाली क़ुरबानियाँ और पूरी दुनिया में होने वाली क़ुरबानियों को नेक नेति जो किए उनकी कबूल फरमा कर, इस मुल्क में अमन सुकून मोहब्बत भाईचारगी और पूरी दुनिया में अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: मौज़ सामीन, अभी आप समात फरमा रहे थे ख़तीब व इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफी साहब की ज़ुबानी एक नसीहतों भरा बयान। ए पाक परवरदिगार, हमें मौलाना साहब की बताई हुई बातों पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। जी हाँ, सलीम, राबिका, रैहान, इस्माइल जुअन और नासिर, नाजमा महबूब नोतकदाम और मोंगू से हज की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। और त्रियुले से बंधु और कुरमाली फैमिलीज़ भी, उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए कोई दुआ मांगने वाला नहीं है, उनके लिए दुआओं की गुजारिश कर रहे हैं और ईदुल अधा की मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं। मुजम्मिल अरफा के मौके पर अपने वालिद मरहूम इमाम जमशीद इसमदौ के लिए ईसाल सवाब की गुजारिश कर रहे हैं। इसके अलावा वाकवा से नसरीन हमेशा की तरह बहुत प्यार से हमारा साथ दे रही हैं और वो तमाम हमारी तमाम उर्दू टीम को मुबारकबाद पेश कर रही हैं। इसके अलावा जितने भी लोग हज पर गए हैं उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उनके हज को कबूल फरमाए, उन्हें हिम्मत हौसला और ताकत दे। और जितने भी लोगों ने इस अशरे के 10 रोज़े रखे हैं या एक भी रोज़ा रखा है, उनके रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन। इसके अलावा जी हाँ, कातुबोन से यमीन, हाजरा खातून और निज़ार भाई एक कलाम की फरमाइश कर रहे हैं उन तमाम बहन भाइयों के लिए जो कि इस वक्त अराफात में हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन सब को हज मुकम्मल तौर पर अदा करने की तौफीक दे और उनकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। इसके अलावा थियोले की खैरुन, जी हाँ, त्रियोले की खैरुन फारूक, इसके अलावा अपनी 3 बेटियों सबीना, सफीनाज और सानिया के लिए एक कलाम की फरमाइश की हैं। और मुनीज़ा और साउद्दीन जो कि हज के

ले गए हैं उनके लिए ढेरों दुआएं भेज रही हैं। और बुआशेगी से फातिमा कुतबाली इसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं। हाजी अब्दुल वाहिद कुतबाली, बेटे मरहूम एहसान कुतबाली, वालदैन, सास ससुर और नाना नानी के लिए इसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं और तमाम हज पर जाने वालों को मुबारकबाद पेश कर रही हैं। इसके अलावा मरहूमा आफिज़ा, मरहूमा फाजिला, मरहूमा रुखसाना, भांजियाँ मरहूमा अर्जीना, मरहूमा फदीला सफ़ास के लिए और शोहर मरहूम इद्रीस आजिम के लिए रशीदा आजिम दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इन तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसके अलावा रशीदा आजिम ईदुल अधा की मुबारकबाद भी पेश कर रही हैं। पोर्ट लुइस से नाजमून तमाम हाजियों के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक तमाम हाजियों के लिए हज के दौरान आसानियां अता फरमाए और उनके हज को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।

लब्बैक अल्लाह, उन हाजियों की लब्बैक का वास्ता अल्लाह, उनकी लब्बैक कबूल फरमा ले और हमें भी तेरे घर पर आकर लब्बैक पढ़ना नसीब फरमा। आइंदा साल में हमें भी हज करना नसीब कर, बार बार उम्रे की सआदतें नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। सबसे आखिर में जो कलाम आप समाअत फरमाएंगे, इसकी फरमाइश हमसे की थी तखय्युले की खैरुन ने। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।

毛里求斯广播电台听众朋友您好，欢迎收听毛里求斯广播电台5月26号的节目，我是您今天的节目主持人张大威。今天

是歌曲节目。今天所播放的歌曲有《追美》《朋友难当》《桃花源》《这是一生只为你》。希望在这30分钟的节目中有您喜欢的歌曲。

चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ढाई बज चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। वैसे समय हुआ है आपकी पसंद कार्यक्रम का, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, आपके व्हाट्सअप मैसेजेस के लिए, आपके फ़ोन कॉल्स के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक हम आपका साथ निभाएंगे। कार्यक्रम आपकी पसंद 4028085 हमारा फ़ोन नंबर है और व्हाट्सअप नंबर है वह है 5251700552517005। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं।

चलिए हमारे साथ माँ गायत्री जी है न्यूवेल फ्रांस की रहने वाली, साथ में है उनके बेटे अजय, उनके सभी परिवारों के लिए गांव को की सुनीता जी हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। केश जी है काथोबोन की रहने वाली, उनकी दो बेटियां हैं नेहा नितिशा, उनके दामाद है एल्विन और उनके पति हैं आनंद जी। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे हैं।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हुए ये अगला गीत जाने वाला है इन श्रोताओं के लिए। माला सुमारू जो है कथोबोन की रहने वाली, उनके पति है सूर्य देव जी, उनके सभी बच्चों के लिए, कुछ मॉरिशस में है, कुछ कनाडा में है, साथ में है अनीता जी है पिछवेजे सैंपिया की रहने वाली, उनके सभी परिवारों के लिए, उनके पति है बालदेव जी, उनके तीन बेटियाँ हैं नेहा नितिशा और साथ में है काजल, और फिर है उनके सभी छोटे बच्चों के लिए, और साथ में है राधा जी। राधा जी जो है सैपिया की रहने वाली है, उनके समस्त परिवारों के लिए ये अगला गीत। और गीता जी है पोंफिया की रहने वाली, उनके सभी बच्चों के लिए, आदित्य, अरव, जानवी, तनिश हैं और साथ में उनकी बहन मीरा नुगौर की रहने वाली, और उनके पति है रोहित जी। तो इन सभी लोगों के नाम जो है, ये प्यारा सा गीत है आशा भोंसले की आवाज़ में, ये प्यारा सा गीत हम सुन सकेंगे। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। 4028085 में बहुत ही प्यार के साथ आप निभा रहे हैं, तो चलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे।

तो चलिए श्रोताओं, हम वक वक की ओर जाएंगे। वहाँ पर विश्वानी डुमन जी जो है हमारा साथ दे रही है बहुत ही प्यार के साथ, वो हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये अगला गीत उनका ये मनपसंद गीत फिल्म जख्मी दिल से लिया गया है, और ये प्यारा सा गीत जाएगा उनके बहनों के लिए। इंदिरा है, शारदा है, साथ में उनकी सहेलियाँ भी हैं, नीला, प्रतिभा, शोभा, साथ में है गीता गजाधर। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा सा गीत साधना सरगम की आवाज़ में आप सुन पाएंगे।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज सऊदी अरब में हज का दिन है। सभी हाजी आज मैदान अरफात में जमा होकर इबादतें और दुआएं कर रहे हैं। इनमें 1506 मॉरिशन हाजी भी शामिल हैं जो इस्लाम का पांचवा फर्ज अदा कर रहे हैं। यौम अरफात हज की अदायगी में सबसे अहम मरहला माना जाता है, जिसके मुकम्मल होने के बाद ही वहाँ गए हुए लोग हाजी कहलाए जाते हैं। अमेरिकी दूतावास ने राजीव गांधी साइंस सेंटर के सहयोग से पिछले हफ्ते अंतरिक्ष नवाचार और उभरती हुई नई टेक्नोलॉजियों पर आधारित फ्रीडम 250 नामक प्रोग्राम का आयोजन किया। कई गोष्ठियां लगाई गईं और चर्चाएं चली। इनके माध्यम से इस मुद्दे पर गौर किया गया कि किस प्रकार विज्ञान और टेक्नोलॉजी शिक्षा को रूपांतरित कर सकते हैं और नौजवानों को भविष्य के विज्ञान प्रौद्योगिकी

0: और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में करियर के लिए तैयार कर सकते हैं। बालाक्लावा में कल नेशनल साइबर ड्रिल 2026 का आयोजन किया गया। ये पहल सर्ट एमयू की रही। दुनिया में बढ़ती आधुनिकता के साथ साथ उच्च स्तर के साइबर हमले भी पेश आने लगे हैं। इस तरह के खतरे के खिलाफ प्रतिरक्षा मजबूत करने के मकसद से सार्वजनिक संस्थाएं इस अभ्यास के लिए जुटी ताकि प्रतिक्रिया क्षमताएं तेज की जा सके और समन्वय ज़्यादा मजबूत हो। इसके तहत देश के रणनीतिक डिजिटल बुनियादी ढांचों की बेहतर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमों पर गौर किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बेल्जियम में एक स्कूल मिनी बस और एक ट्रेन के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई है। इनमें स्कूल के 2 बच्चे और 2 वयस्क शामिल हैं। हादसे के वक्त स्कूल बस छात्रों को एक विशेष एजुकेशनल टूर पर ले जा रही थी। उधर उत्तरी भारत के कई इलाकों में भयानक गर्मी की लहर चली है। कई शहरों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। आने वाले दिनों के लिए पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। गया दीजिए नमस्कार।
1: kHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आपकी पसंद।
3: चलिए श्रोताओं, एक बार फिर से आपकी पसंद कार्यक्रम को हम प्रसारित करने जा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे 4028085 पे बहुत ही प्यार के साथ आपने भारी है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा व्हाट्सअप नंबर वो है 5251700552517005। तो चलिए आपके प्यार भरे मैसेजेस के लिए हम आपको बहुत कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई है वाक्वा से हैं आप नशरीन। नशरीन जी, आपके लिए आपका ये मनपसंद गीत फिल्म वीर ज़ारा से लिया गया। ये प्यारा सा गीत जो है जाएगा आपके समस्त परिवारों के लिए और आपके लिए भी और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए उन सभी तमाम श्रोताओं के लिए भी ये प्यारा सा गीत हम सुनेंगे। तो चलिए लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत जो है आप सभी श्रोताओं के नाम भी कर रही है। तो चलिए हम ये गीत इस कार्यक्रम में शामिल कर रही है।

आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखते हुए चलिए अगला गीत। हमारे साथ इस समय है अनिता, करुणा, अमृता, संजीव, विकास और साथ में है जगजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। इन सभी लोगों की फरमाइश पे ये सब लोग वैसे मौराबे की रहने वाले हैं, मौराबे के रहने वाले हैं ये सब लोग, और उनका ये मनपसंद गीत फिल्मज़ा से लिया गया। ये प्यारा सा गीत जो है जाएगा इन सभी लोगों के नाम और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरी तरफ से और MBC की पूरी टीम की तरफ से। तो चलिए ये प्यारा सा गीत हम चलाएँगे इस कार्यक्रम में।

और ये प्यारा सा गीत है जाने वाला खासकर जहाँ खास तौर के लिए, खास तौर पे हमारे साथ सरिता जी है काथोबोन की जुड़ी हुई है। ये प्यारा सा गीत जो जाएगा उनकी माता जी के नाम, बहुत ही प्यारा सा गीत है। तो चलिए गीत को हम सुनेंगे इन सभी लोगों की फरमाइश पे।

तो चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ काफी लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो ये अगला गीत जाने वाला है हमारे साथ प्रेमिला जी है, कथोबोन की रहने वाली, और निर्वाण विहान इन ये जुड़वा भाई है। तो इन लोगों के जन्मदिन पर शुभकामनाएं समस्त परिवारों की तरफ से, प्यार आशीर्वाद है दादी प्रेमिला की तरफ से। साथ में है मामा विद्या, पापा है प्रवेश, साथ में है दो फूफा भी है, चाचा चाची, मौसी है वंदना, साथ में है लीना और मौसा भी हैं, साथ में है प्रकाश, प्रिया, और ख़ास करके दादी की तरफ से भी देव नारायण परिवार है, विशेषर परिवार है, और जितने भी दोस्त हैं।

देव नारायण परिवार है, विशेषर परिवार है, और जितने भी दोस्त हैं इन तक चलाने वाले हैं श्रोताओं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो है 5251700525251 और फ़ोन जो है बहुत सारे लोग जो है फ़ोन द्वारा हमसे बात कर रही है, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है आप हमारा साथ निभा रहे हैं 2:30 बजे से। तो चलिए आपकी पसंद का कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पे, तो गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत, फिल्म का नाम है एक फूल दो माली और बहुत ही पॉपुलर गीत है। इसमें ये गीत जो है जाने वाला है निर्वाण और विहान के नाम।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। काफ़ी लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस समय हमारे साथ मुंजी है इक्वानियाओ की रहने वाली, उनकी बहू नीलम का जन्मदिन।

हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त परिवारों की तरफ से। उनके पति है अविनाश शर्मा, साथ में है निया निक्षु, उनके दो बच्चों की तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ससुर जी है, सासू माँ है, और साथ में है मोइन जी और चांद जी है, और साथ में अभिषेक और जिंगरी है, अनिशा, आश्ले, आविशा है, समस्त फोकियाचन परिवार है। तो चलिए नीलम को हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे और ढेर सारा प्यार शुभकामनाएं उनके नाम। ये अगला गीत उनके नाम हम करने वाले हैं। तो जितने भी लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ।

तो चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे, और गीतों का ये खूबसूरत सफ़र जो है इसे हम आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत जो है भाई हरीश जी की फरमाइश पे, आप बवासा के रहने वाले हैं और आपका ये मन पसंद गीत जाएगा आपके सभी दोस्तों के लिए, सभी सुनने वालों के नाम। तो चलिए, फिल्म का नाम है कति पतंग और इस फिल्म से लिया गया ये सदाबहार गीत जो है इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा गीत है, पॉपुलर गीत है ये, शाम मस्तानी।

तो चलिए छोटा, वो आपकी पसंद का रिकम को हम जारी रख रहे हैं और अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। शोभा जी हमारे साथ निभा रही है, पोंपे मुसेस की रहने वाली है। तो उनका ये मन पसंद गीत है फिल्म डाग से लिया गया और ये प्यारा सा गीत जो है जाएगा उनके खास दोस्त के लिए। तो चलिए छोटा, वो आपकी पसंद का रिकम रेडियो मॉरिशस पे।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगला गीत फिल्म उजाला से लिया गया, मोहम्मद रफ़ी मुकेश की आवाज़ों में ये गीत जाएगा कुलेन जी के लिए, जो कि नूवेल फ्रांस के रहने वाले हैं। साथ में जाएगा न्यूकोव के रहने वाले उनके दोस्त है वेदा।

चलिए अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम है हतिम त्याय और ये गीत जाएगा आफिज जी के लिए। लावेनिया की रहने वाली हैं आप और ये गीत जाएगा आपके आपके बेटे के नाम, साथ में है बहू, आपकी बेटी है, दामाद है, समस्त हुसन बख्श परिवार है और बाबा साहेब परिवार भी है।

चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली भेंट में विद्या जी हैं न्यूनपाव की रहने वाली, उनका ये मनपसंद गीत जाएगा उनकी चाची कुमारी के लिए, उनकी बहन है सती, सुरेखा, वेदना, विमला, प्रीति और बबीता के लिए। साथ में त्रिवेणी जी है गुडलैंड की रहने वाली, उनके पति है अनिल जी और सभी मोहन परिवार के लिए अगला गीत। जीवंती जी है बेलवेदिया की रहने वाली, ये गीत उनके पति की याद में, उनके बेटा है और साथ में है बेटी, सभी लक्ष्मण परिवार के लिए। साथ में है लीला जी है बाशकी की रहने वाली, बहुत ही प्यार के साथ निभा रही है ये गीत, जाएगा उनके सभी परिवारों के लिए। खास है ये गीत दिलीप जी के लिए जो कि कुंगुमा के रहने वाले हैं, योगेश, कविता, कृष्णवी, दानंद, इंदिरा, निशान, संगीता, इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं।

के लिए आपकी पसंद कार्यक्रम की अंतिम भेंट में ये प्यारा सा गीत जाएगा इन सभी परिवारों के लिए। हमारे साथ इस समय अनिता जी है, फिकॉन्फ्लाक की रहने वाली, ये गीत जाएगा उनकी मामा पापा के लिए, और साथ में है उनके समस्त परिवारों की तरफ से। ये प्यारा सा गीत हम चला रहे हैं और इसी गीत पे नाम जोड़ेंगे हमारे साथ अनिता जोगारा जी है, काथोबोन की रहने वाली, नाताशा के जन्मदिन के मौके पर, जो कि पिचरिविया की रहने वाली है नाताशा, और साथ में ढेर सारे शुभकामनाएं पति अविनाश की तरफ से, बेटा है अक्की, साथ में है ओम, पापा है नारायण जी, साथ में है भाई विक्की, पूनम है खुशी, कुशल बहन है अंजू, साथ में रविंद्र, दिया, अभय, माला है उनके सासुमा, सभी जो गागा परिवार है, मंगू परिवार है और मंगा परिवार है, तो इन सभी परिवारों की तरफ से शुभकामनाएं जो है नाताशा के नाम उनके जन्मदिन पर। तो ये अंतिम नजाना जो है इन सभी श्रोताओं के नाम जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ वैसे काफ़ी लोग जो है नाम जो है हम शामिल करने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय जो है हमारे साथ है, जी हाँ, हमारे साथ इस समय सुरेखा जी है, देपिने की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है, और ये गीत है जो है लीला जी की फरमाइश पे हम चला रहे हैं इस कार्यक्रम में। साथ में है व्हाट्सएप मैसेज पे हमारे साथ माला फाउडो जी है, जुड़ी हुई है, और आज जो है उनकी बेटी जो यूके में है उनका जन्मदिन है, अनुषा फाउडो, तो चलिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। साथ में उनके कज़िन निधि फाउडो, ये दोनों का जन्मदिन है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त फाउडो परिवारों की तरफ से और एमबीसी की पूरी टीम की तरफ से। तो चलिए अंतिम नजाना आप सभी सुनने वालों के नाम हम करेंगे, और जाने से पहले आइए सेंट्रल एक्रेसी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। जी हाँ, कारो एनुफ के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 27 मई 2026 को बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है, तो इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो चलिए श्रोताओं, अंतिम नजाना सभी सुनने वालों के नाम ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी तरफ से मातृ दिवस के शुभ अवसर पर।

जुड़ी हुई है आप मोहताजगंज की रहने वाली, आपका नाम जो है हम भूल गए हैं, तो चलिए आपका नाम जो है हम शामिल कर रहे हैं। तो श्रोताओ आइए फिर से सेंट्रल एक्स बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। कागोइनुफ के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 27 मई 2024 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए

इलेक्ट्रिस बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिस बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो कुछ ही घड़ी में शाम के 4 बजने वाले हैं और आप कलाईवानी से तमिल भाषा में कार्यक्रम सुन सकेंगे। श्रोताओं, हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार।

0: भोले बिसरे गीत रेडियो मॉरिशस पर भोले बिसरे गीत।
1: तो चलिए जी चेक योर टाइम, स्टूडियो की घड़ी में 5:07 हो चुके हैं। आप सभी लोगों का गिनिशा का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, प्रणाम। हाँ जी, स्वागत है आप सभी लोगों का इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, जहाँ पे हम लेकर आते हैं कुछ ऐसे पुराने नगमे जो सीधे जाके दिल

तो चलिए जी, देखा जाए तो वक्त तो बदलता ही जाता है, लेकिन कुछ गीत हमेशा दिल में बस जाते हैं। हाँ जी, हम तो बस यही चाहते हैं कि इन खूबसूरत गीतों के साथ आप अपना ये जो खूबसूरत यादें सजा के रखा है ना, आप दोबारा उनको जीने की कोशिश तो कीजिए। कभी जब हम यादों को याद करते हैं ना, तो आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट तो आ ही जाते हैं, और हम तो कहेंगे गुस्ताखी माफ़ आपकी यादों को छेड़ने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काश कि वक्त वहीं पे थम जाता, और काश कि ऐसा वक्त दोबारा हमारे ज़िंदगी में आ जाता कि हम दोबारा उन्हीं लम्हों को जी लेते।

0: भूले बिसरे गीत रेडियो मॉरिशस पर भूले बिसरे गीत।
1: बिल्कुल जी, भूले बिसरे गीत लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ऑन रेडियो मॉरिशस। वैसे दोपहर की खामोशी में जब पुराने गीत बजते हैं ना दोस्तों, यादें खुद ब खुद मुस्कुराने लगती हैं। भूले बिसरे गीत में हम लेकर आए हैं पुराने बॉलीवुड का वो जादू जहां म्यूजिक में था सिर्फ और सिर्फ सिंप्लिसिटी और इमोशंस और देखा जाए तो सच्चा प्यार। तो जुड़े रहे हमारे साथ और महसूस कीजिए उन सुनहरे लम्हों को जो आज भी दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं। और ऐसे ही गाने जब बजते हैं ना तो दिल को सुकून मिलते हैं और राहत भी।

0: बिसरे गीत रेडियो मॉरिशस पर भूले बिसरे गीत।
1: बिल्कुल जी, भूले बिसरे गीत आप सुन रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस, और फिलहाल के लिए 5:34 हो चुके हैं। वैसे देखा जाए जब इंसान खामोश बैठ जाते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक में ये ऑन रेडियो मॉरिशस ऐसे पुराने गीत बजते हैं तो यादें खुद ब खुद मुस्कुराने लगती हैं। बिल्कुल जी, भूले बिसरे गीत में हम लेकर आए हैं पुराने बॉलीवुड का वो जादू जहाँ म्यूजिक में ये हमेशा, जैसे कि हम बोलते हैं, सिंप्लिसिटी होते हैं, प्यार होते हैं, अपनापन होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। हो सकता है कि अभी फिलहाल आपका मन कर रहा है कॉफ़ी पीने का, चाय पीने का, सो व्हाई नॉट, कॉफ़ी का प्याला लीजिए और चाय का प्याला लेकर अगर आप हमारा साथ दे रहे हो तो आप उनको डबल एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगला नगमा जो हम लेकर आए हैं वो है स्पेशली आप लोगों के लिए महेंद्र कपूर और आशा भोंसले की आवाज़ों में।

0: किया।
1: 819 किलोहर्ट्ज़, 19 किलोहर्ट्ज़, दिस इज रेडियो मॉरिशस।
2: बा अदब बा मुलाहिजा होशियार,
3: नहीं नहीं बे अदब बे मुलाहिजा बे मुहार।

उम्मीद करते हैं कि हर एक नगमे जो हम पेश कर रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस आपको दिल से अच्छा लग रहा है। वैसे दोस्त, दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त है खुद को थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी राहत देने का।

बिल्कुल भूले बिसरे गीत लेकर आए हैं, पुराने बॉलीवुड के वो नगमे जो सिर्फ कानों में नहीं सीधा दिल में उतर जाते हैं। बिल्कुल जी, कुछ आवाजें, कुछ धुने और कुछ गीत वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो जाते हैं। और आज की इस हसीन खूबसूरत शो में हम लेकर आए हैं पुराने बॉलीवुड के एवरग्रीन मेलोडीज जो हर जनरेशन के दिल को छू जाते हैं। जहां से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, बस आप आराम से एंजॉय कर लीजिए ये खूबसूरत नगमे जो स्पेशली हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑन रेडियो मॉरिशस। और इसी खूबसूरत गाने के साथ हम आपसे अलविदा कहना चाहेंगे। आप हमें इजाज़त दीजिए, बस अपना ख्याल रखते जाना और सुनते रहना रेडियो मॉरिशस।

जो तुम होते हमारे लिए, तो आँखों के नशीले सहारे लिए, ये रातें रुक जाते नजारे लिए, कहीं जो तुम होते हमारे लिए, तो आँखों के नशीले सहारे लिए, ये रातें रुक जाते।

0: परवरी, ये कौन सी ठुमरी है?
1: ये स्कॉटलैंड की ठुमरी।
0: स्कॉटलैंड की?
1: ये दो ही चीजें तो स्कॉटलैंड की मशहूर है, या ठुमरी या ठर्रा।
0: नशा आ गया। लेकिन मास्टर जी, ये ठुमरी है या ठर्रा?
1: ये ठर।
2: चमकाने जी,
1: ठुमरी चालू करता हूँ सेठ जी।
0: चलो नहीं, चलो नहीं, चलो नहीं
1: सेठ जी, आप जरा ठंडे हो जाइए सेठ जी। फिर से

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: शाम के ठीक 6 बज रहे हैं। नमस्कार, समकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा हाल में की रेट बढ़ाकर 4.45% करने का फैसला नियमित रूप से बढ़ रहे इन्फ्लेशन के कारण लिया गया है। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में कही। राष्ट्रसभा में ही आज प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्रीय बैंक द्वारा 83 बिलियन रुपए की छपाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में बैंक ऑफ मॉरिशस ने सेंट्रल CID में एक शिकायत दर्ज करवाई है। पिछले शुक्रवार को मौदालबिया सरकारी पाठशाला में फुट एंड माउथ डिजीज के कुछ मामलों का पता चलने पर स्कूल बंद किया गया था। वहां जरूरी डिसइंफेक्शन कार्यवाही चलाई गई, जिसके बाद कल सुचारू रूप से कक्षाएं जारी रखी गईं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तरी भारत के कई इलाकों में भयानक गर्मी की लहर चली। आने वाले दिनों के लिए पारा 45 से 48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज टी ब्रेक के बाद राष्ट्रीय सभा में अपने फैसले में सभा की स्पीकर शेरिन ओमिरोदी जीफा ने सदस्यों को संसदीय प्रश्न तैयार करते समय स्थायी आदेशों का कड़ाई से पालन करने की याद दिलाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी प्रश्न में तर्क, राय, संकेत, प्रेस के उदाहरण या आपत्तिजनक व्यंग्यात्मक या काल्पनिक अभिव्यक्तियां नहीं होनी चाहिए। ये स्पष्टीकरण सांसद रोना बेरोंजे द्वारा श्रम मंत्री गजाउद्दीन से पूछे गए प्रश्न के बाद आया। आज राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री द्वारा द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पेश किया जा रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य मॉरिशस गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन नियुक्त करने का अधिकार देना है, जो मौलिक अधिकारों के संरक्षण तथा लोकतंत्र और संस्थानों को मजबूत करने जैसे संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने और उन पर अपनी सिफारिशें देने के लिए उत्तरदायी होगा। बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा हाल में की रेट बढ़ाकर 4.75% करने का फैसला नियमित रूप से बढ़ रहे इन्फ्लेशन के कारण लिया गया है। ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता के PNQ के जवाब में कही।

0: कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्व सरकार द्वारा 2019 से 2024 के बीच बाजार में 97 बिलियन रुपए की रकम डाले जाने और MIC की फाइनेंसिंग के लिए 81 बिलियन रुपए खर्च किए जाने के कारण उस अवधि के दौरान मर्चेंट रुपए के भाव में 46% की गिरावट आई थी। उन्होंने कहा कि मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष के प्रभावों को ध्यान में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था और परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अत्यधिक इन्फ्लेशन से बचने के लिए सावधान रहने के महत्व पर बल दिया। राष्ट्रसभा में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि केंद्रीय बैंक द्वारा 83 बिलियन रुपए की छपाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में बैंक ऑफ मॉरिशस ने सेंट्रल CID में शिकायत दर्ज करवाई है। PM क्यूरी सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने डॉक्टर गंगानाथन पदायाची के बयानों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण कहा। वित्त मंत्रालय और GRA अवैध सट्टेबाजी से निपटने के लिए एक व्यापक ढांचे पर अध्ययन करने और सिफारिशें देने के लिए एक सलाहकार की सेवाएं लेने पर विचार कर रहे हैं। ये बात आज राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री के जवाब में सामने आई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम सांसद रोशन जमन के उस सवाल का जवाब दे रहे थे जो बेटिंग टैक्स से संबंधित था। उन्होंने जानना चाहा था कि क्या टैक्स हटाने पर अवैध सट्टेबाजी और पब्लिक रेवेन्यू पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है या ऐसा करने का विचार है। जवाब में प्रधानमंत्री ने अन्य बातों के अलावा घुड़दौर पर 2014 की पैरी रिपोर्ट का जिक्र किया और याद दिलाया कि सरकार ने घुड़दौर के मामले पर काम करने के लिए सन 2024 के आखिर से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था जिसके कारण GRA एक्ट में संशोधन किए गए। PMQT सत्र के दौरान ही डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने गंगा तालाब की पवित्रता संरक्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख किया। इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने एक इलेक्ट्रल कॉलेज की स्थापना का भी जिक्र किया।
1: I've also requested the Minister of Arts and Culture to develop an appropriate guidelines to establish a comprehensive framework for the management, protection and preservation of the sanctity of Ganga Talao. The House will appreciate that Mauritius being a secular state, access to a spiritual sanctuary cannot be restricted. At the same time, it is imperative that all visitors comply with established practices, that is regarding behavior, dress code, etc., in order to preserve the sanctity as well as uphold the cultural and religious significance of such sites. In this respect, I'm informed by the Ministry of Tourism that it is collaborating with the Ministry of Arts and Culture on sensitization campaigns for both local and international visitors to these spiritual sites.
0: आज सऊदी अरब में हज का दिन है। सभी हाजी आज मैदान अरफात में जमा होकर इबादतें और दुआएं कर रहे हैं। इनमें 1506 मर्चेंट हाजी भी शामिल हैं जो इस्लाम का 5वां फर्ज अदा कर रहे हैं। यौम अरफात हज की अदायगी में सबसे अहम मरहला माना जाता है जिसके मुकम्मल होने के बाद ही वहां गए हुए लोग हाजी कहलाए जाते हैं। ये विशेष रिपोर्ट सुमेरा अकबर अली के साथ।
2: सभी लबों पर तलबिया है, इन लफ्जों से मुराद है मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। 50 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी के बावजूद हजारों किलोमीटर तय करके आखिरकार ये ईमान वाले पहुंचे मैदानी अरफात में, वो भी रब्बे जलील के फरमान पर। 2 मिलियन से जायद हाजियों में हमारे 1506 हमवतन हैं जिन्होंने इस्लामी कैलेंडर के 9 जिलहिज्जा के दिन यहां हाजिरी दी है। इसे यौम अरफात कहा जाता है। यही हज का अहम तरीन मरहला है। कोहे अरफात पर ही खुदा के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत के लिए आखिरी खुतबा दिया था। आज 1400 से ज्यादा सालों के बाद भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए मुसलमान

के सिखाए हुए रास्तों पर चलकर दीन इस्लाम के लिए अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। सभी हाजियों ने इबादतों, दुआए मग़फ़िरत और शुक्र में एक एक लम्हा गुजारा। हुज्जाज के लिए ये पल हमेशा नायाब रहेंगे।

0: mettre sous bénédiction, manifester le ban Hadji.
1: C'est un feeling extraordinaire qui surmonte toutes difficultés qu'il y a et pas capable de décrire ce feeling qu'il y a dans le cœur là quand il fait Hadj pour Allah et pour ce love only pour Zisli et nous recevons salam ce blessing.
2: Ça c'est un grand sens qui nous gagne. Allah fin appel nous non malgré tout ben difficulté, tout ben salaire qui est là ici. C'est un autre feeling, nous ne pas sentir non rien, alhamdoulilah. Allah fait nous donne nous encore plus courage, donne encore les autres dimoun l'occasion pour venir faire Hajj, inshallah. Et Allah fait nous Hajj kaboul, inshallah.
3: Merci de nous à Rafat, pour du monde tout doux qu'il y a pour dire.
4: Moi, mon maman et mon Michel, nous aussi arrivent là. Et aujourd'hui, nous bien émus qui nous permettent témoigner ce jour-là.
5: C'est l'aboutissement d'un sacrifice pour un dimoun, d'une la vie. D'attente et nous devoir au niveau du ICC pour faire tout ce qui est possible pour qu'en termes de logistique, les pèlerins passent un jour dans les meilleures conditions possibles.
6: Aujourd'hui, nous là, nous devons faire ça, que tout déroule dans l'ordre, dans la satisfaction des pèlerins mauriciens.
7: अब غروب आफ्ताब के बाद सभी हुज्जाज मुज़दलिफा शहर जा रहे हैं. रईस ज़ादे हों या मुलाज़मीन हों, सब एक दूसरे के बगल में आज खुले आसमान में वहां शब गुजारेंगे. सबको हज मुबारक हो.
8: थोड़ी देर पहले हम इस पर चर्चा कर रहे थे. बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा हाल में की रेट बढ़ाकर 4.75% करने का फैसला नियमित रूप से बढ़ रहे इन्फ्लेशन के कारण लिया गया है. ये बात प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में विपक्ष नेता की PNQ के जवाब में कही. माधवी जगन्नाथ, यशना मिश्रा.
9: इन रिगार्ड टू द डिसीजन टेकन बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी.
10: हाल में बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा रेपो रेट में की गई बढ़ोतरी इस मंगलवार राष्ट्रीय सभा में प्राइवेट नोटिस क्वेश्चन का केंद्र रही. प्रधानमंत्री ने जवाब में कहा कि यह फैसला 2019 से 2024 के बीच पूर्व शासन द्वारा अर्थव्यवस्था में कई बिलियन रुपए डाले जाने से उत्पन्न लगातार महंगाई तथा मध्य पूर्व संघर्ष के प्रभावों के कारण लिया गया. बैंक ने कुल 97 बिलियन रुपए 2019 से 2024 के बीच सरकार को ट्रांसफर किया. इसके अतिरिक्त 3.5 बिलियन रुपए नेशनल प्रॉपर्टी फंड को 2019 से पहले दिए गए. इसके साथ ही मॉरिशस इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन को फाइनेंस करने के लिए 81 बिलियन रुपए प्रिंट किया गया. इन सभी से लिक्विडिटी बहुत ज्यादा बढ़ी, जिससे इन्फ्लेशन दर बहुत ज्यादा बढ़ गया और रुपए का मोल कम हुआ. 2014 से 2024 के बीच US डॉलर की तुलना में रुपए का मोल 46% से कम हुआ.
9: Depreciated by 46% against the US dollars.
10: प्रधानमंत्री ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन दर, अंतर्राष्ट्रीय ईंधन कीमतों, फ्रेट और परिवहन कीमतों में बढ़ोतरी और एक्सचेंज रेट के दबाव को ध्यान में रखा है. दामों में स्थिरता बनाए रखने और इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ने से रोकने के वास्ते ये जरूरी था कि रेट को 25 बेसिक अंकों से बढ़ाने का निर्णय हाल की भू राजनीतिक स्थिति का मैक्रो इकोनॉमी पर प्रभाव को ध्यान में रखकर लिया गया. जहां तक की रेट में बढ़ोतरी का परिवारों पर प्रभाव है, प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उनकी वित्तीय स्थिति पर निर्भर है.
9: For a moment that a household has a loan of say 500,000 rupees.
10: मान लें कि एक घर में 5 लाख का कर्ज है. 25 बेसिक अंकों की बढ़ोतरी बैंक के सूद दर पर दिखेगा. 1,250 रुपए पर आनम की बढ़ोतरी. कर्जदार व्यवसायों के लिए भी यही रेट है.
9: In the amount of interest rate repayments, the same increase would be applicable to corporates who have loans.
10: अर्थव्यवस्था पर रेपो रेट बढ़ाने के प्रभाव के बारे में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने स्पष्ट किया कि इससे मुद्रा स्फीति के दबाव को कम करने, मॉरिशस की मुद्रा रुपए को समर्थित करने और अनियंत्रित महंगाई को रोकने में मदद मिलेगी.
9: We must not underestimate the damage
10: हमें अर्थनीति पर इन्फ्लेशन के प्रभावों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे आदि में इन्फ्लेशन रेट 1000% प्रति माह

0: से ज्यादा दर्ज हो चुका है। जोलेजों गांव ने कॉन्ट्रीब्यूशन सोशियल जेनेरालिजे को लेकर अतिरिक्त प्रश्न पूछे।
1: Will the Honourable Prime Minister reconsider the phased withdrawal of CSG link allowances and instead reinstate or recalibrate these supports, particularly for those households not on the social register of Mauritius?
2: If I could laugh, I would laugh because they introduced, yes. You introduced it. Now you want us to take it out immediately. But why did you introduce it in the first place? And allow things to go back to what it was before? No. The answer is no.
3: How much is inflation estimated to fall now with this increase in repo rate, if we can have the estimate to see if that is going to have any impact at all on the economy?
2: What is more important, Madam Speaker, is not the inflation rate, the expectation of inflation rate. That is what drives an economy, what people expect the inflation rate to be. We have to wait and see.
4: और राष्ट्रीय सभा में आज प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बताया कि केंद्रीय बैंक द्वारा 83 बिलियन रुपए की छपाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में बैंक ऑफ मॉरिशस ने सेंट्रल सीआईडी में शिकायत दर्ज करवाई है। मीगान पुनापा नायकन करुणा लालू।
5: यस ऑनरेबल इटवारिया।
6: सांसद इटवारिया के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दिसंबर 2014 में सार्वजनिक ऋण देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 58.8% था, जबकि पूर्व सरकार के कार्यकाल में ये दिसंबर 2024 तक बढ़कर 87.7% तक पहुंच गया, यानी इसमें 370 बिलियन रुपए की वृद्धि हुई। बजट 2025-2026 के अनुमानों के अनुसार जून के अंत तक सार्वजनिक ऋण 679.7 बिलियन रुपए तक पहुंच सकता है। हालांकि डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि कई कारणों से ये अनुमान से अधिक हो सकता है। इनमें शागुस ऑक्यूपेलागुस संधि के अनुमोदन में देरी, मध्य पूर्व का संघर्ष तथा सरकारी आय में कमी जैसे कारण शामिल हैं।
2: गवर्नमेंट इज फर्मली कमिटेड।
6: सरकार बजट घाटे को कम करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण को अधिक टिकाऊ और स्थिर मार्ग पर लाने के लिए ठोस राजकोषीय सुधारों और बेहतर सुशासन के माध्यम से दृढ़तापूर्वक प्रतिबद्ध हैं। इसी संदर्भ में जैसा कि सरकारी कार्यक्रम और 2025-2026 के बजट भाषण में घोषित किया गया था, एक फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नियम आधारित मजबूत राजकोषीय ढांचा स्थापित करना, सार्वजनिक वित्त में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की सुदृढ़ प्रथाओं को और मजबूत करना है, ताकि पूर्ववर्ती सरकार के समय पाई गई संकट स्थिति को रोका जा सके। एक अतिरिक्त प्रश्न के जवाब में प्रधानमंत्री ने आईएमएफ के साथ हालिया परामर्श बैठकों का भी उल्लेख किया। आईएमएफ ने आर्टिकल 4 रिपोर्ट आम की है, वे हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बहुत संतुष्ट हैं, ताकि कर्ज को बढ़ने से रोका जा सके। सांसद रामदास के प्रश्न पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान बैंक ऑफ मॉरिशस ने कुल 181.5 बिलियन रुपए की मुद्रा छापी थी। इसका एक हिस्सा सरकार को दिया गया, जबकि दूसरा एमआईसी को वित्त पोषित करने में इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने यह भी कहा कि पूर्व वित्त मंत्री द्वारा बैंक ऑफ मॉरिशस पर 83 बिलियन रुपए छापने के आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय बैंक ने इन आरोपों का खंडन करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें एक सार्वजनिक नोटिस भी शामिल हैं। मुझे बैंक ऑफ मॉरिशस द्वारा ये भी अवगत कराया गया कि अपनी कानूनी टीम से परामर्श करने के बाद उसने 16 मई 2026 को पूर्व वित्त मंत्री द्वारा प्रसारित इस अत्यंत गंभीर झूठी और दुर्भावनापूर्ण जानकारी के संबंध में सेंट्रल सीआईडी के समक्ष एक बयान दर्ज कराया है। एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में हमारी प्रतिष्ठा एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जो निवेशकों के विश्वास को मजबूत करती है और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखती है। केवल राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से पूर्व वित्त मंत्री द्वारा जनता के मन में संदेह उत्पन्न करना अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। हम किसी भी निराधार

0: आरोप या भ्रामक जानकारी को सहन नहीं कर सकते और न ही करेंगे जो हमारी संस्थाओं और वित्तीय प्रणाली में विश्वास को कमजोर कर सकती हैं। सिल्वर बैंक के संबंध में प्रधानमंत्री ने बताया कि बैंक ऑफ मॉरिशस ने बैंक को लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया की जांच के लिए पहले ही एक स्वतंत्र फर्म को फोरेंसिक ऑडिट करने का जिम्मा सौंप दिया है। साथ ही बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायता भी दी है।
1: पिछले शुक्रवार को मौदालबिया सरकारी पाठशाला में फुट एंड माउथ डिजीज के कुछ मामलों का पता चलने पर स्कूल बंद किया गया था। वहां जरूरी डिसइंफेक्शन कार्यवाही चलाई गई, जिसके बाद कल वहां सुचारू रूप से कक्षाएं जारी रखी गईं। एक ऐसा महाद्वीप जो पूरी तरह से बदलाव के दौर से गुजर रहा है और एकता, प्रगति तथा सहयोग की ओर अग्रसर है। 1963 में की गई अफ्रीकन यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की याद में कल 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में स्टेट हाउस में एक औपचारिक समारोह लगाया गया। ये मौका रहा अफ्रीकी महाद्वीप के अंतर्गत सॉलिडारिटी और सहयोग बढ़ाने की मांग सामने रखने का। बालाक्लावा में कल नेशनल साइबर ड्रिल 2026 का आयोजन किया गया। ये पहल सर्ट एमयू की रही। दुनिया में बढ़ती आधुनिकता के साथ साथ उच्च स्तर के साइबर हमले भी पेश आने लगे हैं। इस तरह के खतरों के खिलाफ प्रतिरक्षा मजबूत करने के मकसद से सार्वजनिक संस्थाएं इस अभ्यास के लिए जुटी, ताकि प्रतिक्रिया क्षमताएं तेज की जा सके और समन्वय ज्यादा मजबूत हो। इसके तहत देश के रणनीतिक डिजिटल बुनियादी ढांचों की बेहतर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमों पर गौर किया गया। अमेरिकी दूतावास ने राजीव गांधी साइंस सेंटर के सहयोग से पिछले हफ्ते अंतरिक्ष नवाचार और उभरती हुई नई टेक्नोलॉजियों पर आधारित फ्रीडम 2050 नामक प्रोग्राम का आयोजन किया। कई गतिविधियां लगाई गईं और चर्चाएं चली। इसके माध्यम से इस मुद्दे पर गौर किया गया कि किस प्रकार विज्ञान और टेक्नोलॉजी शिक्षा को रूपांतरित कर सकते हैं और नौजवानों को भविष्य के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में करियर के लिए तैयार कर सकते हैं। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, जहां कल एक बयान में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया था कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ठोस शांति संधि तय होने की उम्मीद है, वहीं कल ही 40 दिनों के युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर नए हमले किए। उधर बेल्जियम में एक स्कूल मिनी बस और एक ट्रेन के बीच हुई टक्कर में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि उत्तरी भारत के कई इलाकों में भयानक गर्मी की लहर चली है। कई शहरों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। विस्तार विधि मासी बोरन के साथ।
2: सोमवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सैन्य तनाव उस समय अचानक बढ़ गया जब अमेरिका ने ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स के 2 जहाजों को डुबो दिया, जिनके बारे में उसका कहना था कि वे बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश कर रही थी। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अमरीकी विमानों पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी, जिसके बाद अमरीका ने बंदर अब्बास के पास मिसाइल लॉन्चर्स पर जवाबी हमले किए। इजरायली वायुसेना ने सोमवार देर रात लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें देश की पूर्वी बेगा घाटी भी शामिल है। ये कार्रवाई इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के उस बयान के बाद हुई है, जिसमें उन्होंने लेबनानी चरमपंथी गुट के खिलाफ हमलों को और तेज करने का संकल्प लिया था। पश्चिमी यूरोप में मंगलवार को भी अत्यधिक गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है, जिससे ठीक एक दिन पहले फ्रांस और ब्रिटेन दोनों में मई महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया था। इस भीषण गर्मी की वजह उत्तरी अफ्रीका से उठी गर्म हवाओं का एक तथाकथित हीट डोम है, जो पश्चिमी यूरोप के ऊपर स्थिर हो गया है। इसके कारण तापमान उस स्तर पर पहुँच गया है जो आमतौर पर केवल कड़कड़ाती गर्मियों के बीच में ही देखने को मिलता है। उत्तरी और मध्य भारत में भीषण लू का प्रकोप जारी है, जिसके चलते भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि राजस्थान के कुछ हिस्सों में पारा 50 डिग्री सेल्सियस

0: के आंकड़े को भी पार कर गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भारी से बहुत भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इस सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण पूर्वोत्तर में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का खतरा बना हुआ है, जबकि दक्षिणी तटों और आंतरिक इलाकों में स्थानीय स्तर पर भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी सोमवार को टोरंटो पहुंची, जो संभवतः दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण खेल आयोजन का प्रतीक है और जो दुनिया भर के लोगों को अपने पसंदीदा दल का उत्साहवर्धन करने के लिए एक साथ जुटने के लिए प्रेरित करता है। ट्रॉफी के अनावरण के ऐतिहासिक पल को अपने कैमरों में कैद करने के लिए वहां मौजूद सैकड़ों दर्शकों ने अपने सेलफोन निकाले।
1: आखिर में चले जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर हल्की और सामान्य हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज रात और कल सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। कल दोपहर बाद खासकर पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाले कुछ इलाकों पर बादल घिराएंगे और रह रहकर बारिश होगी। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिणी समंदर में 2 मीटर तक की लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 23, अधिकतम 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:36 पर सूर्योदय, शाम को 5:38 पर सूर्यास्त होगा।

0: देश विदेश की नई खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसको आप तक पहुंचाने में शिव हमारे साथ रहे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

श्लोक समाचार सुनिए। स्टीवेंसन स्ट्रीट सुयाक में, स्टीवेंसन स्ट्रीट सुयाक में 69 साल के 69 ईयर्स ओल्ड श्री ज्ञानदेव गुरखान, श्री ज्ञानदेव गुरखान जो देव प्रोफेसर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ थी कल दिन के एक बजे, इनकी अर्थ थी कल दिन के एक बजे इनके मकान स्टीवेंसन स्ट्रीट सुयाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुयाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। पेरिस फ्रांस में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड श्री महेश दुकारन, श्री महेश दुकारन जो पहले मोसेल मकुंज उपलैंड दीपा पाए रहते थे, इनकी मृत्यु हो गई हैं। इनका अंतिम संस्कार गुरुवार 28 मई को दिन के 1:30 बजे फ्रांस में ही किया जाएगा। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: सीबी की तरफ से विज्ञप्तियां, सीबी विलाज सेबास्टोपोल पेलरे रोड, पिची पाके ब्रांच रोड, कॉम्बुम्बाई रोड, रिवरसाइड रोड, सांगुलेट रोड के आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 27 मई को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही सीबी कारो एनुफ के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि बुधवार 27 मई को सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं।
1: உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம்.
2: ரேடியோ மொரிஷியஸ் பர் தில் சே ஸ்வாகத் ஹே ஆப் சபீ கா.

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर। सादर प्रणाम श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एनबीसी रेडियो मॉरिशस और मैं हूं देविना। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस श्रद्धा भक्ति तथा आध्यात्मिकता से परिपूर्ण कार्यक्रम भजते प्रभु का नाम में। आज की इस मंगलमय रात्रि में हम प्रभु के श्री चरणों में भक्ति के पुष्प अर्पित करेंगे, मन को शांति देंगे तथा आत्मा को प्रभु स्मरण से प्रकाशित करेंगे। हरे नाम से भरकर जग में कोई सहारा नहीं श्रोताओ, जो भी प्रभु को याद करें उसका जीवन अधूरा नहीं। तो आइए इस पावन यात्रा का शुभारंभ करते हैं गणेश वंदना से।

श्रोताओं, प्रभु श्री राम का नाम स्वयं में एक मंत्र है। जहाँ राम का स्मरण होता है, वहाँ भय, चिंता तथा दुख स्वतः दूर हो जाते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, यदि मन में विश्वास तथा प्रभु श्री राम का नाम हो तो हर मार्ग सरल बन जाती है। अब समय है अगले सुंदर भजन का।

संकटमोचन हनुमान जी अपने भक्तों के सभी कष्ट हर लेते हैं। हनुमान जी हमें शक्ति, साहस तथा निस्वार्थ सेवा का संदेश देते हैं। वैसे तुलसीदास जी ने कहा है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जीवन में विनम्रता तथा सेवा भाव ही सच्ची भक्ति है।

श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्म ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब जीवन में शांति तथा संतोष स्वतः आने लगता है। अब बढ़ते हैं अगले भजन की ओर।

जहाँ श्रोताओं, भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, प्रभु कृपा बनी रहे, ईश्वर आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि तथा उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें। आज के भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम में हम आपसे अनुमति लेंगे। स्मरण रखिए, प्रभु का नाम वह अमृत है जो जीवन को पवित्र बना देते हैं। आपसे लेते हैं विदा, पुनः मिलते हैं इसी कार्यक्रम में भजते प्रभु का नाम। तब तक के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे।

कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ऐ शहरे मदीना, कुछ ऐसी कशिश तुझ में है ऐ शहरे मदीना, गो हाजरी बार बार हो हसरत नहीं जाती। सामईन ज़ी वक़ार, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहु। इस वक्त हम रेडियो मॉरिशस से आपसे मुखातिब हैं और आपके दिल की दुनिया को मुअत्तर करने के लिए हाजिर खिदमत हैं महफिल शब प्रोग्राम के साथ। निसार अख्तर आप तमाम लोगों का दिले बेकरां से इस्तकबाल करता है। उम्मीद है ये महफिल आप सामईन की तवज्जो का बाइस बनेगी। आइए सामईन इस बज़्मे शबाना का आगाज करते हैं इस खूबसूरत कलाम के साथ। मुलायजा फरमाइए।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, बिलाशुबा ये अल्लाह तबारक व ताला का फ़ज़्लो करम ही है कि हर साल लाखों उशाक उसकी बारगाह की हाज़री का शर्फ पाते हैं, मकामात मुक़द्दस पर जाकर रो रो कर गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और हज की मकबूलियत की उम्मीद लगाए दुआ इस्तिग़फ़ार में मशगूल रहते हैं। सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जल्द अज़ जल्द हज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

चमक रहा है मदीना गुलाब जैसा, चमक रहा है मदीना गुलाब जैसा, नबी का रोज़ा भी रश्के माहताब जैसा।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, इसी शेर के साथ हमारा आज का शबाना प्रोग्राम महफिले शब अपने अख्तिताम की जानिब रवां दवा है। माना महफिल मुख्तसर थी, मगर यकीन मानिए हर लम्हा आपकी मौजूदगी से ख़ास रहा। उम्मीद है आपने इसे ज़रूर पसंद फरमाया होगा। अब अपने मेज़बान निसार अख्तर को इजाज़त दीजिए। नेक ख्वाहिशात के साथ हम आपसे रुख्सत हो रहे हैं। अगले मंगल की शब फिर आपसे मुलाकात होगी। शब बख़ैर।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का
0: तड़का
1: भोजपुरी
0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का

0: Continuous music. RM3.
1: सब संगत यालो के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह था मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन। अभी से लेकर रात के 11 बजे रे प्रस्तुत बात लोग के पसंदीदा प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। जी हाँ, थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तो नंबर वा घुमा काट जगो दे विद जगो पर 4028085 पर सक बजा टेलीफोन करे और मनपसंदीदा भोजपुरी गीत मांगे। आज मंगलवार की रात, मंगलवार 26 मई 2026। तो चला भोजपुरी कार्यक्रम की शुरू करब सा बसंत सुपुर ग्यावल गीत के साथ। गीत के बोल है हंगामा।

0: बहुत शुक्र का प्रोग्राम चला था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर। अगला गीत चमेली बेदी कृषि गीत अकेलेवन बनते ऐसे जानवी के लिए गीत चलावते सर। और अभी को संगत बा लाइन पे से मिलव जा। हेलो जब लाइन में तो बात कर गया है चाहे बात करे के। हेलो हेलो हेलो जी नमस्ते थोड़ा सुनता है। हेलो हेलो बात करे जा
1: जी नमस्ते।
0: कहे इतना लेता हो तो कब से थोड़ा इंतजार करत है।
1: हम अभी से तो इंतजार करत है।
0: नहीं तो अभी वहाँ रही सर दूसरा राज्य में दूसरा राज्य में रही सर। अली बोला कौन गीत सुन बा।
1: अभी दानंद बिजन के गो गीत है।
0: हाँ
1: चंपा फूल सजावेला चमेली फूल
0: सजावेला। अतान गीतवा के गई लगबा
1: माफ करो
0: गीतवा के गई लगबा।
1: अभी दानंद बिजन
0: अभी दानंद
1: अभिजान
0: अभिजान अभिजन आप आगे हमें डाल थी सर। आप अभिजान अभिजन गीतवा के बोल कौन सी है।
1: चंपा फूल सजावेला
0: चंपा फूल सजावेला के कर खाती गीतवा मांगते हुए
1: जितना कोई सुनाता आपके हवा।
0: हम है अजय प्रताप सिंह।
1: अच्छा बहुत धन्यवाद।
0: ओके तो हर गीत चली थोड़ी समय में ठीक बा
1: भूलना मत डाल देना।
0: हाँ चला दो अब सर। ओके बाय बाय। ई रहल हमने के संगतिया और बिशप गीत मांगत हुआ।

रात की 9:09 होता और जब भी गीत मांगबा टेलीफोनिक बट जब गीत चला था गीतवा के पूरा चली दिया गीतवा जब पूरा हो गया फिर से गीतवा समाप्त हो गया बाद तब सोने करिए कहे कि का करे रहसा तो लोग बिचवा के गीत में सोने करे रहसा और जब बीच में सोने करे रहसा तब भी फोन नहीं सकी रहसा ले कहे कि गीतवा फिर कोई सुना था गीतवा के जहाँ पूरा बचा दे के तब फोन कॉल ले जा कहे कि अब बीच में सोने कर बने सकब चले भी जी गीतवा समाप्त हुआ था तब टेलीफोनिक करा था तब ले सर तब गीतवा पूरा चला अब सर अब नहीं कि टेलीफोनिक करके टेलीफोन काट दे सर ये बहुत बुरी बात बा ठीक बा कोनो भी काम होला अनुशासन से डिसिप्लिन से तो हम और जब भी टेलीफोनिक कर अपन राजू के वॉल्यूम कमती कर दिया तो फिर कभी कुछ अच्छी बंगला अभिधान

रात के 9:14 हुआ था। तू सुना था भोजपुर का प्रोग्राम रेडियो मॉरिशियसर लाइव रेडियो मनोरंजन पर भी। और जैसे कि जानी रहा था कि अब ठंडा के मौसम शुरू हो बा तो ढेर सावधानी छा बरते कि क्या कि दिक्कत रही। एगो घर में जब एक परिवार के सदस्य के लाफेब लगता तो धीरे धीरे सब कोई के लाफेब लगता। जब बाप के लगता तब बेटी के लग जाए, बेटी के लाफेब तब माँ के लग जाए, भाई बहन के हो जाए। तो यही खातिर जैसे थोड़ा लाफेब लगी तो डॉक्टर लग जाइए, पिके उके करा लिया, दवाई सब कर दिया ताकि है लाफेब हॉस्पिट नहीं हो। क्या है कि वायरस है, ये एगो शरीर से दूसरे शरीर में जाला। जब जब छिकत हुआ, खोंकत हुआ, बचा था हुआ तो ड्रॉपलेट्स मुँह में से निकले ना।

खातिर बोई जा सकी जब भी आजकल सर्दी खांसी जुकाम की महीना बाद बेशक जब एक जना बीमार रही तो चल जाए डॉक्टर लगे वरना नहीं जे बात मरजा सब कोई किफानी करे घर में माँ बाप लेकर सब कोई सखी मराद हो जाए तो सर्दी जुकाम से बचे खातिर डॉक्टर लगे जाइए डॉक्टर से चिकित्सा करिए और अपन दवाई समय पर पिए और समय और ये दवाई जो है चेहरा समय पर पिए के कोनो कासे कि कैसे खाए से आगे पिए के या खाए के बाद तो ये सब छह ध्यान दे कि नहीं सब खाए के आगे के कासे हुआ खाए के बाद पिए या खाए के बाद कासे आगे पिए कहे कि ओकर एगो डिसिप्लिन रहेला और बेशक जितना दवाई डॉक्टर देवेला सब चेहरा पिए के नहीं कि आधा दवाई किन और आधा दवाई नहीं किन नहीं ऐसे काम नहीं होला डॉक्टर लगे जेबर डॉक्टर इंजेक्शन दे दवाई दी तब पूरा दवाई चले कि कंजूस नहीं करिए कंजूस कर बता तोहरी प्रॉब्लम हुई स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दिया स्वास्थ्य बात सब कुछ बफैया लासौती नहीं अच्छा बात कुछ नहीं अच्छा बा चलो ऐसे में कुणाल ही लाल गीत सुनब स जल साखी रात बा सब भोजपुरी प्रेमी के नाम और जितना कोई अभी हमने सुना था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर है गीत तो लोग के नाम भी कासम खास रतन निहाल के नाम गाँव से हवन और कुलपत्नी करुणा पापा विजय और सब ओकर परिवार के नाम

entendu ça. On a dit c'est Dampi, mais c'est la fontaine, c'est Pani, Bharke, Mataji, Log, Chachi, Log, Kapar, mais Ngamel, mais Pani, les Kawatalansa. Abita Hal Suk Suvida Babi Ke Jara Pani Bharkeane. कोई नहीं जा रहा, बड़ी बारिश। रात के 9:26 होता हाँ था आगे के हमने की दादी नानी लोग ढेर मेहनत कर ले रहे हैं। हमने की नानी लोग जन बहुत सादगी से लुगा पहन सा कपार पर होड़नी गेहूँ भी दे तो कपार पर होड़नी छना डाले के। और आगे के जमाना में जब पति लोग खाता तब पत्नी बैठ के इंतजार करे, जब पति खा ले तब पत्नी लोग खातल। अभी भाई जमाना अभी तो सब उल्टा होता भैया, कोई के दोष नहीं देवा था इसे कहे कि समय के साथ छाना चले के ना। अभी तो मॉडर्न जमाना बस सब कोई मोदनीति खोज रहा, पर मोदनीति के उपयोग रहना पे करेगी। कबू कबू कबू कबू ढेर पारिश हो बता नहीं इच्छा बा, समझदार के इशारा काफ़ी बा। अगला गीत हमरो बलमुआ के उजर उजर पालतू है गीतवा खुदो के मेबिन की ओर से बोनतिया के करे को खास संगतिया जानवी के नाम। चल एक साथ सुने हम रो बलमुआ के उजर उजर पालतू है ये गीत चली शांति के नाम। आप रहे लन त्याोश

बाप की अपन दुलिन छोड़ के दूसर के दुलिन लेके जा रहा हो, ऐसा आदमी। रात के 9:32 और आगे के जमाना में ढेर कोई मुर्गा मुर्गी पोसत है। हम जानी रहा आगे पुराई में मुर्गा मुर्गी तो के डाल दी तो मुर्गी रोज के गो अंडा दे पक पक पक पक पक पक पक पक करके अंडा दे बतल हाँ कि नहीं। आजकल ये सब देखे कहाँ मिली राज करके लड़का लोग के बोलबा मुर्गा मुर्गी तो बोलने से नुपा कोने कहाँ कोने करी तो लड़का को वो देख रख नहीं बा मुर्गा मुर्गी। तो आगे के जमाना में हमने की पुरानिया लोग पोसा था तो आगे आदमी की 9-10 को लड़का रहे फिर भी लड़का के पोस दे पोस के बड़ा कर दे कहे कि ढेर चीज किने के नहीं पड़ा था। अब मुर्गा मुर्गी पोस बह तो सब मुर्गा के गोश्त खेब या मुर्गी के गोश्त या अंडा अंडा पका के खा लेब न हो कि नहीं। आजकल तो सब कुछ पड़ेगा किने के आजकल के पोसे ला हो के लेता बा पोसे के सिर्फ आसान बात है अगर तुख तो पैसा बचा के तो अगर तो आंगन घर के आंगन में जगह बा तो को पुलाई बना देब ओकर में एक दूगो मुर्गी को मुर्गा डाल देब तो मुर्गिया रोज के अंडा दे। अब लापता से अंडा के कौन ची उस अकेला अंडा दे रोज के वो अंडा सकबा खाए या बेचे या अंडा पर मुर्गिया के सकबा बैठाए या मुर्गिया बैठी तो कर में अंडा बच्चा हो या बच्चा हो बड़ा हो तो सकबा बेचे। मुर्गा मुर्गी की दाम बहुत महंगा बा आजकल है खोज तटका है जो के पूत खेने बैया से तो ई बा थे मना गाँव में आदमी लोग पोसेला पर ढेर मांगा कहूँ पर 800 रुपया को मुर्गी मुर्गा के तो दाम 1500 से ऊपर। का बोले तो भैया महंगाई के जमाना बा पर थोड़ा सुन साकबीज कर पोसब तो थोड़ो लगे भी सकी मुर्गा मुर्गी रहे तो चला मुर्गा पर गीत सुनब से लाल लाल मुर्गा के लंबा लंबा थोर बा तो मुर्गी के बड़ी थोर से मारेला बाप रे बाप सुना नहीं का सोच के गेसन गीत बने लग कि गीतवा सुपर हिट से सुपर हिट हो गल। ललका मुर्गा है गीत छावती से खासम खास विद्या की ओर से घर का सब परिवार खातिर और संगीता मिरन गीत और खातिर तोहर माता जी चुन रही कस्तल तोहर दुगो भाई दान आजी तोहर बहन हे माँ शांति और सब अमीरन परिवार के नाम और मोहन परिवार के नाम ललका ललका मुर्गा।

जो मनुष्य के जन्म से लेके ओकर मृत्यु ले ओकरा ढेर मना संस्कार प्रयार करे के, और एगो संस्कार है विवाह संस्कार, यानी कि शादी करे के संस्कार। तो जब गृहस्थ आश्रम में एगो इंसान प्रवेश करेला 25 साल से ऊपर, तब परे रहा है छोकरी देके ओकर शादी करे के। अब शादी कर लेगो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, कहे कि एगो छोकरा एगो छोकरी दूगो परिवार से अलग अलग व्यक्ति एक साथ मिलेला, शादी के साथ फेरे वचन निभावे रहन सा और परेला जिंदगी भर निभाए के, यानी कि दूगो ठाँ से मिलेला। और आगे के जमाना में जो जस्ती जो रहल लव नहीं रहल, कैसे कि अरेंज मैरिज, यानी कि छोकरा के परिवार लोग अगुआ के दिखेन सा तो वो लेके जाए छोकरिया लगे, अब अगुआ बतियाए, अब छोकरा छोकरी के माँ बाप, छोकरा छोकरी के माँ बाप जो है एक दूसरे से बतियान सा, तब शादी होता है। अभी आगे के ज़माने में ढेर कोई शादी से पहले मिलत नहीं रहा, आई फाइ कहते कई सब तेज से तो बाद में आल बा। अब के ज़माना में तो छोकरा छोकरी फेसबुक पर मिले रहन सा,

कोनो साइट पर मैट्रिमोनियल साइट पर मिले रहन सब बच्चा लन सब जब पसंद पड़ी तब माँ बाप दिखे चला। आखिर के ज़माने में सब नहीं रहल और सब रीति रिवाज से शादी होता है, सुख के गीत के गवाही होता है, सुख के रात के सामने के दिन के तिलक शान के हरदी फिर दिमाग के शादी और लेंजी के चौथारी और आगे जब शादी होता है तो सब कोई आवतल हाथ बटाए पूड़ी पकाए के पूड़ी बेले के तगारी पकाए के भुइयाई पकाए के सब आजकल तो सब कीचरिंग करेला भैया आजकल पैसा फेंका तमाशा दिखा का कर भैया समय के साथ साथ ना अभी सब कोई शादी में समय पर आवेला जुड़ी जुड़ी साड़ी पहन के भौजी लोग सब आवेला अभी कोई बर्तन तो नहीं खोजला मान जी के शादी में सब पिए होला भैया तकारी पकाई के कड़ाही धोई के सब कुछ पिए होला आजकल का कर बह पिए के जमाने चलल बह तो चलो ऐसा गीत सब जब दुल्हा शादी करे जा रहा बसंत सुपौल गीत अगले वन तो जितना कोई के शादी हो गल बा या हाई वीकेंड के शादी हुई तह गीत तुलो के नाम और बोले सर शादी के लड्डू जो खाला वो भी पचता रहा जो नहीं भी खाला वो भी पचता रहा का कर भैया ये सब दुनिया के रीत है चेहरा निभाए के और हई गीत चलाते से अनुपम के और शकर पत्नी और दुगो बेटा खाते हैं साथ में बिना खुबसामी में व्यक्ति हवन सुलमान दुखी हुए से हवन और विश्वानी बाबूलाल लाखोजा से कल घर वाला कल लेकर सब बाबूलाल परिवार की ना दुल्हा शादी करे जा रहा चले एक साथ गीत सुने

दुनिया में जो हमने जिया थे इस दुनिया काफ़ी पुरानी बात जाने रही दुनिया कैसे बना रहल तो हमने की हिंदू धर्म ग्रंथ में ऋग्वेद के अनुसार एगो एगो एगो पुस्तक है जिसका नाम नासादिया सूक्त वो ऋग्वेद में पावल जाला तो वो संसार के उत्पत्ति के बारे में दार्शनिक रूप से बोलेला कि पहले कुछ नहीं रहल चारों ओर अंधेरा रहल तो सूक्त के अनुसार न अस्तित्व रहल न अनस्तित्व रहल न आकाश रहल न पृथ्वी रहल न दिन रहल न रात रहल चारों केवल अंधेरा ही अंधेरा और शून्यता रहल अर्थात उस समय भी स्पष्ट रूप में मौजूद कुछ भी ना रहल। सुक्त बोलेला तब न मृत्यु थी न अमरता न मृत्यु रहल न अमरत्वा रहल संपूर्ण ब्रह्मांड मानो एगो अदृश्य शांत और रहस्यमय अवस्था में रहल केवल एक तत्व या एक शक्ति रहल जलवन शक्ति से विद्यमान रहल। नासादेव सुख में कहल गलबा की सबसे पहले काम अर्थात इच्छा उत्पन्न होल और इच्छा सृष्टि बनैलक। ये विचार दार्शनिक है ऋषि लोग जब ध्यान करलन से तब बोलते जो शून्य रहल ओकर में से एगो बीज निकल एगो बिया निकलल और उस सृष्टि के बिया रहल और अस्तित्व कैसे उत्पन्न हो शून्य से सृष्टि बनल और जब प्रभु जो है वो अपन मन में दलक की दुनिया बनाई तो इच्छा जागृत होल और दुनिया शुरू होल बने की और जब दुनिया बनल तो सब कुछ बनल कर में मनुष्य बनल मनुष्य

बनल, जनावर बनल, फल सब्जी सब बनल, तो भगवान जानेला कैसे कर कर के नासदीय सुख के अनुसार उस संसार की रचना करलक, तब जाके संसार इतना सुंदर रहल। पर पहले कुछ भी ना रहल, चारों अंधेरा रहल, शून्यता रहल, वही में से प्रभु के नाभि में, जो विष्णु भगवान के नाभि है, ओकर नाभि में से सब कुछ निकलल बा। तो जब संसार के दिखबा और जब सोचबा कैसे बनल बा, ढेर कोई नहीं मानी, एगो दार्शनिक विचार, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बुला ला। अगर तोहरा मौका मिली तो पुस्तक का पढ़िए, जिकर नाम है नासदीय सुक्ता, NASADIYA सुक्ता, SUKTA नासदीय सुक्ता टाइप करिए यूट्यूब पर, तो तोहरा बोली कैसे दुनिया के उत्पत्ति होल बा। अब जब दुनिया की बात करते थे तो चले दुनिया पर गीत सुनब जा, अमराज मधु और शानी पोपिया की आवाज में, ये दुनिया कैसे चली। ये गीत चलाते ही सर भाई अमर खातिर, उकर पत्नी, उकर दू को लड़का खातिर, साथ में ही गीत चली रघु विश्वानंद खातिर, उकर पत्नी और चार को बेटा खातिर। चल एक साथ सुने अमराज मधु और शालिनी पोपिया की।

अब हमें दोहरा सुनाओ सर श्रवण कुमार की कहानी के रहली श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार जो न वो बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र रहल और सेवाभावी पुत्र रहल। ओकर माता पिता वृद्ध और नेत्रहीन यानी कि माता पिता दोनों अंधार रहलन से श्रवण कुमार अपन पूरा जीवन लोग के सेवा में लगा दिलक। वो माता पिता से बहुत प्रेम करत हल और लोग के हर इच्छा पूरी करत हल। एक दिन अपन माता पिता के कहला पर तीर्थ यात्रा में लोग के लेके गल तो श्रवण कुमार गरीब रहल एक खातिर ओकर पास रथ या घोड़ा नहीं रहल। तो का करलक एगो मजबूत कांवर बनेलक, एक बगल बाप के बैठेलक एक बगल माँ के और स्वयं कांधा पर दोनों के लेके तीर्थ यात्रा पर निकल गल। सोचा एगो बेटा है एगो लड़का पर माँ बाप के कांवर में ढोआत अपन कंधा में, कौन लड़का पर माँ बाप के ढोए कांवर में। और यात्रा के दौरान एगो घना जंगल में पहुँचलन और माता पिता के ढेर प्यास सगल और लोग बोलन से श्रवण कुमार से बेटा ढेर प्यास सगल बा थोड़ा पानी आंद पिए के। तो उस समय राजा दशरथ शिकार करत हल तो उस शब्द भेदी बाण चलैलक। जब उ चलैलक बाण उ सोचलक राजा दशरथ लसास करत हल तो जब सोचलक कि उस तक हरिंग पानी पिया था, हरिंग पानी नहीं पिया था यहाँ पर ही। यहाँ पर ही श्रवण कुमार एगो लोटा में पानी भरत हल पर माँ बाप के पियाई खातिर। तो सोचलक हरिंग पानी पिया था तो बाँध चलेलक। जब बाँध चलेलक तो श्रवण किना श्रवण कुमार के सीना आर पार कर दिलक और बेशक श्रवण कुमार घायल हो गल, दर्द से रोवे लगल। तब राजा दशरथ जब पास में गल तब बोला ओ हो हमर से कौन पाप हो गल, हम सोची हरिंग है ओके मरली तीर से यहाँ पर एगो इंसान के जान ले ली। तो श्रवण कुमार मरते मरते दशरथ के बोलक हमार माता पिता कांवर में लुके नहीं उनकी प्यास से गलबा, हम नहीं सकब जाए पानी दे मर प्राण जाता, कृपया लोग के प्यास बुझा दे पनिया से। दशरथ बड़ी दुखी होल और पानी लेके श्रवण कुमार के माता पिता के आसपास गल। तो अंधा माता पिता और लोग के चाहे लोग अंधार लन से पर लोग के एहसास हो गल कि लोग के बेटा नहीं आल पानी लेके दूसर कोई पानी लेके आल बा। तो लोग पूछलक कैसे तू के हवा, तब बोलक हम राजा दशरथ हैं हमार हाथों

लड़का के खून उगलबा माफी चाहता है, पर पानिया नहीं पिए के तभी राजा दशरथ के श्राप मिलेला। श्रवण कुमार के माँ बाप बोलेला, जिससे हमने अपन पुत्र के वियोग में हमने के मरनी हुआ था, ऐसे ही तू भी एक दिन अपन पुत्र के वियोग में तरप तरप के मरबा। तो यही कहानी जो है रामायण में दर्शाला, जब राम भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास जाला तो राजा दशरथ जो है वो बिस्तर पर लेटल लेटल और प्राण जाला, जो दुख से प्राण जाला तेगो श्राप रहल, जैसे कि श्रवण कुमार के माँ बाप राजा दशरथ के श्राप देने रहल, ते श्राप के कारण का प्राण ऐसे निकल अपन बेटा के वियोग में। इसी खातिर बोला सर कि कोनो भी काम करब तो सोच समझ के करिए, और कोई की श्राप, कोई की मालिदीक्षो, कोई के बदुआ कबो नहीं दिया, ठीक बा। चला अब गीत सुनब जा, कृषि भाई संगी गावत हवन आव भैया। गीत चलावती स बुनमाली शास्त्री बुनमाली खातिर, ओकर पत्नी, ओकर बेटा, ओकर बेटी, दामाद और सब बुनमाली परिवार के नाम। आओ भैया।

0: तड़का।
1: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। कमट, धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी

संगचालक पूर्णिमा फकीरा के गावल गीत हे गंगा मैया ये गीतों के संगे भोजपुरी तरकर प्रोग्राम ये बड़ी समाप्त हुआ था। रात के साढ़ के 6:30 से अभिनय के साथ दिलाजा बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करम मेहरबानी। हमारे बाद सुने पर प्रोग्राम सुनबा नीतू शाह के साथ रात के 11 बजे से 12 बजे ले और रात के 12 बजे से कल फजर के 6 बजे ले सुनबा नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तलों के मुलाकात हुई कल बुधवार के रात के 9 से 11 बजे ले भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस पर। तब तक हमने की इजाजत दा अजय प्रताप सिंह सीतालू की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि लव यू ऑल नमस्ते बाय बाय टेक केयर गॉड ब्लेस।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। सर्दीली रात के इस खूबसूरत रात में आप सबका स्वागत करते हुए स्वीकार करें नीतुषा का करजोर प्रणाम श्रोताओं। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो एक और श्रृंखला सुनहरे पल कार्यक्रम का, और आज का ये सफर एक ऐसी एक्ट्रेस के नाम नजर करते हैं जो भले ही ना रही हो लेकिन उनकी यादें हमेशा आती हैं। आप थी मधुबाला।

मधुबाला हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और लेजेंडरी एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती हैं। उनका असली नाम मुमताज जहान बेगम दहलवी था, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें मधुबाला के नाम से जानती थी। उनकी मुस्कान में एक अजब सा जादू था, आंखों में मासूमियत थी और उनकी अदाएं इतनी दिलकश थी कि लोग उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा तक कहने लगे थे। 1950s और 60s के दौर में जब बॉलीवुड अपने गोल्डन एरा में था, तब मधुबाला का नाम हर दिल पर राज करता था। वैसे आज भी उनकी फिल्में और उनका अंदाज लोग बड़े प्यार से याद

मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता अतौला खान काफी स्ट्रिक्ट नेचर के थे और घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसी वजह से उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। बचपन से ही मधुबाला बहुत खूबसूरत थी और कैमरा उन्हें बहुत पसंद करता था। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में भी उनकी पहली पहचान फिल्म बसंत से बनी। फिर धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री को एहसास हुआ कि ये लड़की तो सिर्फ सुंदर ही नहीं थी बल्कि बहुत टैलेंटेड भी है।

0: मधुबाला की एक्टिंग स्टाइल बहुत नेचुरल थी। उस जमाने में जब एक्टिंग थोड़ी थिएट्रिकल हुआ करती थी, तब मधुबाला हर इमोशन को बहुत सिंप्लिसिटी और ग्रेस के साथ स्क्रीन पर लाती थी। उनकी आंखें ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह जाती थी। रोमांस हो, कॉमेडी हो या इमोशनल सीन, हर जगह उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्म मुगले आजम में उनका अनारकली का रोल आज भी अमर माना जाता है। प्यार किया तो डरना क्या, गाने में उनकी खूबसूरती और रोल अंदाज ने लोगों को दीवाना बना दिया था। इतनी भारी कॉस्ट्यूम्स और मुश्किल शूटिंग कंडीशंस के बावजूद उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में कभी कमी आनी नहीं।
1: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

खूबसूरत तो थी लेकिन उनके रिश्ते भी काफी चर्चे में थी। दिलीप कुमार के साथ उनका रिलेशनशिप बॉलीवुड की सबसे फेमस लव स्टोरीज में से एक माना जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और उनकी केमिस्ट्री स्क्रीन पर साफ नजर आती थी। फैंस चाहते थे कि दोनों असल जिंदगी में भी एक हो जाएं, लेकिन फैमिली इश्यूज और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से उनका रिश्ता टूट गया। कहते हैं कि इस जुदाई ने मधुबाला को अंदर से बहुत दुखी कर दिया था। उनके दिल में दिलीप कुमार के लिए प्यार जिंदगी भर रहा। बाद में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी की। किशोर कुमार अपनी मस्ती और हंसी मजाक के लिए मशहूर थे, जबकि मधुबाला उस वक्त अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उन्हें दिल की एक सीरियस बीमारी थी जो उस जमाने में ठीक करना मुश्किल था। किशोर कुमार ने उनका बहुत साथ दिया, लेकिन धीरे धीरे मधुबाला की तबीयत और खराब होती गई। कई बार उन्हें बहुत दर्द और तकलीफ भी सहनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपनी मुस्कान नहीं छोड़ी।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

वैसे मधुबाला की ड्रेसिंग स्टाइल और पर्सनालिटी बहुत एलिगेंट थी। उनका चेहरा इतना फोटोजेनिक था कि ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर भी वो किसी परी जैसी लगती थी। उनकी स्माइल को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत स्माइल्स में से एक माना जाता है। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि फॉरेन मैगजीन्स में भी उनकी ब्यूटी की चर्चा होती थी। कहते हैं कि हॉलीवुड तक में उनके लुक्स के फैंस थे, लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद वो बहुत ही हम्बल और सिंपल नेचर की थी।

0: से चलती का नाम गाड़ी, हावड़ा ब्रिज, तराना, काला पानी, मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसे सुपर हिट फिल्मों में काम किया। कॉमेडी टाइमिंग हो या रोमांटिक एक्सप्रेशंस, हर जगह उन्होंने कमाल कर दिया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि जब वो स्क्रीन पर आती थी तो नजरें उन पर ही टिक जाती थी।
1: Hi.

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: बहुत दुख की बात है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस की जिंदगी बहुत छोटी रही। सिर्फ 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को उनका देहांत हो गया। लेकिन आज भी मधुबाला सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि बॉलीवुड की एक अमर याद है। जब भी हिंदी सिनेमा के गोल्डन एरा की बात होती है, मधुबाला का नाम बहुत इज्जत और मोहब्बत के साथ लिया जाता है। उनकी खूबसूरती, उनकी अदाएँ, उनका दर्द और उनकी फिल्में आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: She likes to drop it low, man.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

मेरे भाई तू मुझसे कुछ कहना चाहता है, कह देना, ये अधूरी बात मुझे समझ नहीं आती। कोई तो बड़ी बात है भाई, अपने छोटे भाई से क्यों छुपाता है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस,
0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो